मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 45 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

की चहचहाट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में

0: हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज मालाबार नीम के साथ हल्दी की सह फसली खेती इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राम सबेरे वर्मा, और आपसे इस विषय पर बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, फसल उत्पादन के साथ साथ वानिकी प्रजाति के पौधों का रोपण कैसे करें? बहुत सारे कृषि वानिकी की पद्धतियां हैं जिनके तहत वानिकी प्रजाति के पौधे भी रहें और बीच में आप फसल उत्पादन भी कर सकते हैं। इसी पद्धति के तहत मालाबार नीम के साथ हल्दी की सफसली खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व अपर कृषि निदेशक RS वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। वर्मा साहब, ये बताएं कि कृषि वानिकी और खास करके मालाबार नीम के साथ हल्दी की सहफसली खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: किसान भाइयों नमस्कार। सहफसली खेती जो है उत्तर प्रदेश में पहले से की जा रही है, लेकिन मालावरी और हल्दी की खेती का ये प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। चूँकि हम उत्तर भारतीय इस विधि को अपनाते नहीं थे, लेकिन अब किसान भाई लोग जब इससे मालूम हुआ कि क्या फ़ायदा हो सकता है और उसकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है जो अन्य फसलों से शायद संभव नहीं है, तो उसके कैसे कैसे किया जाए इसको मैंने एक प्रयोग शुरू किया कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी कैसे बढ़ जाए और उसकी लागत कैसे कम हो जाए। तो जो गन्ना क्षेत्र है कुछ और दूसरी फसल को लेते थे, लेकिन वो आमदनी उस स्तर की नहीं होती थी जिस स्तर की आमदनी आपको मालावरी नीम और हल्दी या कोई दूसरी क्रॉप के रूप में साथ जब लेंगे, फसल के रूप में लेंगे तो उससे जो फ़ायदा होगा
2: जी।
3: जैसे मालावरी नीम है, ये दक्षिण भारत में इस काम के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर राय को लगाया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्लांट कुछ तैयार कर दीजिए कि जिससे हमारे किसानों की आमदनी फसल से ज़्यादा अच्छी हो अगर ये एक साथ की जाए।
2: तो इसकी क्या खासियत महसूस कर रहे हैं आप?
3: जो हमने इसका ट्रायल किया तो इस ट्रायल में 1000 प्लांट्स हमने मालावरी नीम का साउथ इंडिया से मंगाया, और वो लगाने के बाद में सबसे अच्छी बात है कि ये 20 साल में जिस प्रकार से सागौन का पौधा तैयार होता है, सागौन के पौधे में बहुत टाइम लगता है लेकिन इसको 20 साल में तैयार हो जाता है और किसान इसको बेचते हैं, वही पैसा मिलता है जो टीक से मिलता है।
2: हाँ,
3: आमदनी एक बहुत बड़ी बात,
2: यानी जो सागौन से आमदनी होगी ठीक आमदनी मालाबार नीम से भी हो सकती है।
3: नीम होगी, ऐसी होगी, क्योंकि हमने जो प्लांटेशन किया हुआ है इसको रोड साइड में किया है, और जो कि जब ये तीसरा साल है आज, तो तीसरे साल में लोगों को देख करके ये लगता है कि वास्तव में कोई बहुत ऐसी चीज़ है जिससे हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। मालावरी नीम को आप 3 बार कटिंग कर सकते हैं, हर 6 साल में बेच सकते हैं प्लाई इंडस्ट्री को, और अगर आप उसको टीक के रूप में देखना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, आजकल एक वर्मा टीक आता है मार्केट में, सब लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वो 20 साल में काटते हैं। फर्क क्या है कास्ट में, ये 20 साल में तैयार होता है और जो हमारी प्रजातियाँ हैं वो 50 साल 60 साल उसमें जाके सागौन तैयार होता है। तो ये की व्यवस्था है, और इससे कि हमारी किसान भाइयों की आमदनी हर हाल

0: में बढ़ती है, पूरे देश में इसकी डिमांड है आज की डेट में।
1: तो इसका रोपण कितने अंतरण पर करते हैं?
0: हाँ, एक पौधे के लिए जो इसको इसकी कैनोपी है उसको 100 स्क्वायर फीट चाहिए।
1: अच्छा,
0: और 100 स्क्वायर फीट का मतलब ये हुआ कि 10 × 10
1: फीट पर
0: हाँ, 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई।
1: हाँ,
0: तो ये 10 फीट की जो लंबाई होगी तो इसमें जितने पौधे आप लगा सकते हैं, एक एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, 400 पौधे को रोपण करेंगे। और अब चूंकि ये पौधा इतना फास्ट ग्रोइंग है कि इस समय मेरे पास 3 साल का पौधा है।
1: हाँ,
0: और वो 3 साल का पौधा 40 फीट का हो गया।
1: वर्मा साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मालावार नीम के साथ हल्दी की सफसली खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94150-22362 94150-22362 94150-22362। किसान भाई बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी आमदनी बढ़

0: फसली खेती के बारे में अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 94150-22-362 94150-22-362 94150-22-362। किसान भाई बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी आमदनी बढ़े तो उसके लिए आप अगर जरवल जाते हो तो उधर जाके देखिए, निश्चित रूप से जितनी आपकी कृषि की आमदनी है उससे 4 गुने से कम पैसा नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए किसान भाइयों, हमारे साथी भाइयों, आप सभी लोग इसकी खेती करिए और अपने आर्थिक जीवन को संभालिए।
0: आर.एस. वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मालावार नीम के साथ हल्दी की सफसली खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मालाबार नीम के साथ हल्दी की सह फसली खेती, इस विषय पर अभी कृषि चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जानकारी दे रहे थे राम सबेरी वर्मा, और आपसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का सुविचार दान।
3: स्वेच्छा पूर्वक पात्र व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार निस्वार्थ भाव से दिया गया धन दान कहलाता है। दान में दातापन का भाव नहीं होना चाहिए। मानव जीवन में दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। दान देने से आत्मिक शांति एवं प्रसन्नता मिलती है। इससे समाज में सहानुभूति, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। दान देने से व्यक्ति का मानसिक तनाव भी कम होता है, ऐसी मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है। हमारे शास्त्रों में दान को मनुष्य का परम कर्तव्य और संस्कार माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। आवश्यकता और उपयोग के आधार पर दान के कुछ अन्य प्रकार भी प्राप्त होते हैं, यथा अन्नदान, विद्यादान, औषधि दान, वस्त्रदान, श्रमदान, समयदान इत्यादि। भूखों को भोजन और अनाज देना अन्नदान के अंतर्गत आता है। किसी को शिक्षित करना या विद्या प्राप्त करने में सहायता करना विद्यादान है। रोगियों के इलाज व उनकी औषधियों का प्रबंध करना औषधि दान है। पात्र व्यक्ति को कपड़े, कंबल आदि उपलब्ध कराना वस्त्र दान के अंतर्गत आता है। अपना समय निकालकर किसी की निस्वार्थ रूप से सेवा शुश्रूषा करना समय दान कहलाता है। इनमें से अन्न दान को महादान कहा गया है, किंतु विद्यादान उससे भी बढ़कर है, क्योंकि अन्न से तो क्षणिक तृप्ति होती है, किंतु विद्यादान से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तृप्त हो जाता है। अन्नदानम महादानम विद्यादान मतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया। शास्त्राध्ययन से ज्ञात होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा शिवी, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज रघु इत्यादि राजाओं ने दान की महिमा को भली प्रकार समझा था। आज भी इन सब का नाम अत्यंत आदर एवं श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। महाराज रघु तो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने विश्वजीत यज्ञ में अपना संपूर्ण धन ही दान कर डाला था। उसी समय वर्तंतु के शिष्य कौश उनके पास गुरु दक्षिणा हेतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की याचना लेकर उपस्थित हुए। महाराज रघु ने कौश को दक्षिणा देने का निश्चय करके कुबेर पर आक्रमण करने का विचार किया, किंतु उनके आक्रमण के पूर्व ही कुबेर ने उनके खजाने को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया, जिससे महाराज रघु ने कौश को संपूर्ण खजाना दे दिया। किंतु कौश ऐसा त्यागी था कि वह आवश्यकता से अधिक धन लेने से मना कर दिया। ऐसा दिव्य दाता और ऐसा अद्भुत गृहीता भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलता है, जो आज भी सबके चित्त को आह्लादित करता है। दान की इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। दान की महिमा का ही एक अन्य उदाहरण श्लाघनीय है। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों तक का दान जगत कल्याण के लिए सहर्ष कर दिया था।

0: इस प्रकार दान प्रत्येक युग एवं काल में महत्वपूर्ण रहा है। इसकी महिमा का ख्यापन अनिर्वचनीय है।
1: दान। डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है। प्रभु अपने भक्तों का सदैव हित करते हैं। यदि प्रभु की कृपा दृष्टि पानी है तो आइए चलते हैं प्रभु के धाम और लगाते हैं प्रभु की जय जयकार।

हे ईश्वर, इस सृष्टि को तूने बनाया है, इसे अपने हाथों से सजाया है और हम प्राणियों को ये जीवन वरदान में दिया है। हमें इस जीवन के हर पल का ज्ञान तूने ही कराया है। हे प्रभु, अपनी इस कृपा को बनाए रखना, हमें सही और गलत में भेद करने की समझ देना, हमें शिष्टाचार, शांति, संयम व सहनशीलता की भावना प्रदान कर, जिससे हमारे द्वारा कोई भी किसी को भी कभी दुख न पहुँचे।

अखंड ज्योति का दिया मर्यादा पुरुषोत्तम सीआरपी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। प्रभु आप जगत के पालनहार हैं, दुखों को हरने वाले हैं। जब जब अंधकार ने धरती पर अपने पांव पसारे हैं, तब तब आपने अवतार लेकर हमें दुखों से बचाया है। हे प्रभु, पृथ्वी पर अवतार लीजिए और हम भक्तों का कल्याण कीजिए।

माता रानी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माता रानी उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाती। किस्मत के मारों का माता रानी ही बेड़ा पार लगाती हैं। हे माता भवानी, आप संपूर्ण जगत की जननी हैं, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।

श्रोताओं, हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ भाग 218।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद

साधु मत, लोक मत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्रीराम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे चतुर सेन और राजेंद्र करचू के। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अस्य प्रत्यग्रतन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दोस्तों, हमारी दिनचर्या और हमारी रोज़मर्रा की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है, ये रोज़ हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं समाज में डॉक्टर का महत्व और उनकी भूमिका के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज का दिन और आज का विषय दोनों ही अत्यंत विशेष हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके होने से जीवन में एक सुरक्षा की भावना जुड़ी होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से रोग में भी विश्वास और राहत महसूस होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की। आज विश्व चिकित्सक दिवस है, एक ऐसा अवसर जब हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उस अदृश्य सेवा को पहचानते हैं जो वे हर दिन हमारे लिए करते हैं। कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में, कभी इमरजेंसी रूम में, कभी ओपीडी में और कभी हमारे गांव के किसी कोने में जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन सेवा का जज्बा असीमित होता है। श्रोताओं, डॉक्टर्स केवल दवाएं देने वाले लोग नहीं होते, वे उस विश्वास के स्तंभ होते हैं जिन पर हम अपने और अपनों के जीवन की रक्षा की उम्मीद टिकाए रहते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रोग के लक्षण नहीं, रोगी की पूरी कहानी समझने का प्रयास करता है और ये समझ, ये संवेदना, ये करुणा, यही डॉक्टर को एक सामान्य पेशेवर से ऊपर उठाकर एक सामाजिक हीरो बना देती है। एक ऐसा हीरो जो न ताली बजाने से दिखता है, न मंच पर खड़ा होकर भाषण देता है, बल्कि अपने सफेद कोट में चुपचाप हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। डॉक्टर बनना कोई एक दिन का सफर नहीं होता है, इसके पीछे होता है एक लंबा संघर्ष, वर्षों की पढ़ाई, न जाने कितनी नींद रहित रातें, असंख्य इम्तिहान और फिर रोगियों की सेवा में डूबा एक समर्पित जीवन। ये पेशा केवल ज्ञान नहीं, सहानुभूति की भी मांग करता है। हर दिन न जाने कितनी भावनात्मक स्थितियों से होकर गुजरना होता है, किसी को बुरी खबर देना, किसी को उम्मीद देना, किसी को असहनीय दर्द में देखना और फिर भी शांत रहकर समाधान की दिशा में काम करते रहना, ये केवल एक कुशल चिकित्सक ही कर सकता है। आपको याद होगा जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई थी, तब पूरे विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, लेकिन डॉक्टर ही थे जिन्होंने पीपीई किट में कई कई घंटे बिना आराम किए ड्यूटी की। कई बार उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी, संक्रमित रोगियों के बीच खुद को जोखिम में डाला, लेकिन मरीजों को छोड़ना नहीं चुना। ये त्याग, ये सेवा का भाव, यही डॉक्टर्स की असली पहचान है और आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि डॉक्टर होना महज एक पेशा नहीं, ये एक जीवन की तपस्या है। हमारे भारत देश में तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसे हर गांव, हर कस्बा, हर घर महसूस करता है। वो बूढ़ा पिता जो अपने दिल की दवाई समय पर लेकर फिर से खेत में काम करने लगता है, वो माँ जो अपने बच्चे को तेज बुखार में डॉक्टर के पास ले जाती है, वो नवयुवक जो एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ता है, हर एक को एक डॉक्टर की उपस्थिति उसका आत्मविश्वास जीवन देती है और उसकी सेवा शक्ति देती है। आज के दिन आइए हम ये भी समझें कि डॉक्टर का सम्मान केवल फूलों से, भाषणों से या एक दिन की सराहना से नहीं होता। डॉक्टर का असली सम्मान तब होता है जब हम उसकी सलाह को गंभीरता से लें, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद उठाएं, दवाओं का पालन करें और झूठी अफवाहों से दूर रहें। डॉक्टर तभी बेहतर सेवा दे सकता है जब समाज भी जागरूक और सहयोगी हो। एक और बात श्रोताओं, जो आज के दिन हमें सोचनी चाहिए, वो ये है कि मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों के अलावा भी कई ऐसे सहायक कर्मी होते हैं जैसे नर्स,

0: सी पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस जो पूरी टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर उस टीम का वो ध्रुव तारा होता है जिसके निर्णय, मार्गदर्शन और नेतृत्व से पूरा इलाज संचालित होता है। इस टीम भावना को समझना और डॉक्टरों के परिश्रम को समाज में उचित मान्यता देना बहुत आवश्यक है। आज के दिन हम अपने बच्चों को ये भी प्रेरणा दे सकते हैं कि वे डॉक्टर बनने की ओर सोचें, क्योंकि ये न केवल करियर का एक श्रेष्ठ विकल्प है बल्कि समाज की सेवा का एक सीधा रास्ता भी है। अगर हमारे युवाओं में सेवा का भाव हो, दूसरों के दुख को समझने की संवेदना हो और समर्पण का मन हो, तो डॉक्टर बनकर वे दुनिया को वास्तव में बदल सकते हैं। श्रोताओं, डॉक्टर का काम केवल शरीर का इलाज नहीं बल्कि आत्मबल को भी पुनर्जीवित करना है। जब कोई कहता है डॉक्टर साहब ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, तो ये वाकई ही आधा इलाज होता है। यही कारण है कि डॉक्टर को केवल शारीरिक चिकित्सा का ही नहीं बल्कि मानसिक संबल का भी स्रोत माना जाता है। तो आइए आज के इस विशेष दिन पर हम डॉक्टरों को दिल से धन्यवाद दें, उन्हें सम्मान दें और अगर संभव हो तो धन्यवाद का एक संदेश भी भेजें। कभी कभी ये छोटा सा भाव भी उन्हें और आगे सेवा करने की प्रेरणा दे सकता है और डॉक्टरों के इस अमूल्य योगदान को न भूलें, क्योंकि जब हम थकते हैं, टूटते हैं, बीमार होते हैं, तब यही होते हैं जो बिना शोर के हमारे लिए लड़ते हैं। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: समाज में डॉक्टर का महत्व और उनकी भूमिका, इस विषय पर हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब आइए डालते हैं एक नज़र आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे भदोही और हाथरस जिलों के हलचल। 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। इसमें आज की पेशकश होगी मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। मकाला निगार होंगी डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलाम शायर होंगे असलम आदिल। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। कानून की बात, हमारे केंद्र से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 से, जिसमें आज आप सुनेंगे भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग। इस विषय पर विशेषज्ञ कुंवर शशांक एडवोकेट हाई कोर्ट से भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे आतिश कुमार श्रीवास्तव। मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंतर्गत 1:15 से चर्चा होगी सुरक्षित गर्भावस्था, संस्थागत प्रसव, आयरन और पोषण अपनाएं, खून की कमी को दूर भगाएं, स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत बनाएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित भोजन के नियम, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इस विषय पर। साथ ही आज की भेंटवार्ता का विषय रहेगा महिलाओं में हड्डियों का स्वास्थ्य जोखिम व रोकथाम के उपाय। इस विषय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निर्मेश भल्ला से भेंट करेंगी नीना सोनकर। लोकगीतों के लोक माधुरी कार्यक्रम में आज 2:40 से आप आने

लेंगे हरीश चंद्र गिरी व साथियों का आल्हा गायन। इन्हीं के गाए आल्हा गायन आप सुन सकते हैं लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:50 पर भी। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा।

नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव सेवा, समर्पण और जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे।

दोस्तों, हर साल 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस देश के महान चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि संयोगवश उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुआ था। डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि सेवा, संवेदना और समर्पण का दूसरा नाम है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, अपनी बीमारी, पीड़ा या संकट से जूझ रहा होता है, तब एक चिकित्सक अपने ज्ञान, अनुभव और मानवीय संवेदनाओं के माध्यम से उसे नया जीवन देने का प्रयास करता है। यही कारण है कि चिकित्सकों को समाज में अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

कहा जाता है कि चिकित्सक के हाथों में केवल दवा नहीं होती बल्कि विश्वास और उम्मीद भी होती है, और यही विश्वास रोगी के मन में जीने की एक नई इच्छा जगा जाता है।

दोस्तों, सदियों से भारत की चिकित्सा परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक, महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े अनेक भारतीय चिकित्सकों ने चिकित्सा जगत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है।

दोस्तों, कोरोना महामारी का समय तो शायद हम कभी नहीं भूल सकते, जब पूरा विश्व भय और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। तब हमारी डॉक्टरों ने, नर्सों ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने परिवारों से दूर रहकर अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों लोगों की सेवा की। कई सारे डॉक्टर्स ने तो स्वयं अपने प्राणों की परवाह किए बिना मानवता की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन मानवता का एक बेहतरीन उदाहरण दिया। उनके इस त्याग और समर्पण को देश सदैव सम्मान के साथ याद रखेगा।

और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए भी प्रेरित करता है। आज की बदलती जीवन शैली के कारण अनेक नई स्वास्थ्य चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी को अब समझना होगा, अपने चिकित्सक द्वारा दी गई सलाह का पालन करना होगा, समय पर दवाइयां लेना, स्वच्छता बनाए रखना और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस केवल डॉक्टरों का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और स्वस्थ जीवन जीने का भी संदेश देता है। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चिकित्सक केवल जीवन नहीं बचाते, बल्कि टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जीने का विश्वास भी देते हैं। आइए इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम सभी अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, डॉक्टरों के प्रति सम्मान व्यक्त करें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना बेहतरीन योगदान देने का संकल्प लें। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम उन सभी डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें जो दिन रात लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में लगे रहते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर महानगर का आधुनिक चिकित्सा संस्थान। हर स्थान पर चिकित्सक समाज की सेवा में निरंतर कार्यरत हैं। एक चिकित्सक केवल रोग का इलाज नहीं करता, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, रोगों से बचाव

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जैसे जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों

0: के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील

0: अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोग माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
1: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
3: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
1: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, कहा सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर

0: बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसमें आज सुनिए कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन। राग है बसंत मुखारी।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वर्दन। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध थी और राग था बसंत मुखारी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: अमेरिका के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेशकियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों

0: के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के तरवर। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी

0: फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16.

0: फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि इस कानून से जिसमें हर माली साल में 125 दिन के उजरत वाले रोजगार की गारंटी दी गई है, देही भारत बाइख्तियार बनेगा। हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
1: VBG रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून MG नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाइख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी काम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निज़ाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपए रोजाना की उजरत आरजी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। MG नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपए थी, जिसे अब VBG रामजी के तहत 327.40 रुपए रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
0: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरमू जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करें।

0: वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अदा करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अदा करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़िशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगु के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदामात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज़ नीज तिजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेज़िशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मुहतरमा तकाईची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरका अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
1: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपये फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपये होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपये था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपये से कम करके 7.5 रुपये कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी इसलाहात और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम और इख्तियार का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहाइश

0: पर इंतकाल हो गया, वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजुर्बाती थिएटर के कैदीन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से किलियान एम्बापे ने 2 गोल किए, इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1-2 गोल से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेरे कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। यह बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनू मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैनुल अक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनकिद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आजम।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं की मेल और फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो जल्दी से करें हमें मेल और भेजें हमें अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश और नोट करें हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत।

@gmail.com. तो श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आप हमें मेल कर सकते हैं आपके मेल आपके गीत @gmail.com पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस मेल के साथ जो हमें आया है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। तो आप सबने सुनना चाहा है अनजाना फिल्म का ये गीत, तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अनजाना मूवी का ये प्यारा सा गीत, जिसके गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रही थी अनजाना फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत, जिसमें आप हमें भेज सकते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को सुनने के लिए मेल, और हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गीत।

तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगला मेल जो कि हमें भेजा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह ने। इन्होंने ये मेल हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, आपने भी ये मेल हमें भेजा है और आप सब ने फरमाइश की है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। जी हाँ, ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ससुराल फिल्म से ये गीत है, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। तो आइए आपकी पसंद पर सुनवाते हैं ये गीत।

चश्मे बद्दूर। ससुराल फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत। तो हमें करें जल्दी से मेल और सुने अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को। तो चलिए श्रोताओं अगला मेल शामिल करते हैं। ग्रामो पोस्ट पेंटेपुर सीतापुर से आया हुआ इसे लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं बसंत जी। बसंत जी ने फरमाइश की है पत्थर के सनम फिल्म के इस गीत की। तो आइए इनकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ।

जी हाँ, पत्थर के सनम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में आइए अगला मेल शामिल करते हैं। ये मेल हमें भेजा है मोहसिन रजा जी ने, साथ ही इनके साथी हैं सनावत शेख, मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। आप सबने सुनना चाहा है साजन का घर फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आइए आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

समीर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे नदीम श्रवण की बनाई तर्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं आइए कार्यक्रम में अगला मेल शामिल करते हैं जिसे हमें लिखा है सुधीर नूतन किरण ठाकुर नरेंद्र तनेजा और पंकज शर्मा ने। आपने हमें मेल भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 9:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख है संजय कुमार का।
2: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना

0: बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIUS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चक सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहां प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगरपालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जन प्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान, ग्राम पंचायत रायक, नगला लच्छी, सैनपुर, अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री

0: तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अतीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाली इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोरा चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मुड़ा बाली माता मंदिर दावजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा कार गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वसरा तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर स्वर्ग आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
3: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
4: तुमने दी आवाज लो मैं आ गया।
3: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर, और साथ ही न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से है। आइए सुनते हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। मकाला निगार हैं डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलाम शायर हैं असलम आदिल। आइए सुनते हैं।
1: हर रोज एक नया समा बंधता है, आवाज की इस महफिल में हर रोज एक नया समा बंधता है। बात पहुंचती है जो आप तक, वो दिल को छू जाती है। इन्हीं खूबसूरत अल्फाजों और जज्बातों के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं आपकी मेजबान निकहत सिद्दीकी। कबूल करें मेरा आदाब। सामिन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, और कलाम शायर के तहत सुनिएगा जनाब असलम आदिल से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर नीलोफर हफीज से मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार।
2: वालिदैन की तवज्जो और रहनुमाई बच्चों की अखलाकी दुरुस्तगी, किरदार साजी और समाजी सलाहियतों के फ़रोग में हमेशा ही अहम रही है, लेकिन दौरे हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियां पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा हो चुकी हैं। और इसकी वजह यह है कि अब बच्चों की तालीमी और तफरीही ज़राए में बड़ी हद तक तब्दीलियां आ चुकी हैं।

0: इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के अंदर वो सलाहियतें पैदा करें जो किसी भी मकसद के हुसूल के लिए ज़रूरी हैं। माँ और बाप के दरमियान का मजबूत तावुन और मुश्तरका कोशिशें ही बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे सकती हैं। इसलिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए और वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी औलाद को बेहतरीन और आला तरीन तालीम व तरबियत देने की कोशिश करना चाहिए।
1: बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, इस मौजू पर अभी आप मकाला समाप्त फरमा रहे थे। मकाला निगार थी डॉक्टर नीलोफर हफीज। और अब समाप्त फरमाइए जनाब असलम आदिल से उनका कलाम।
2: गजल का मतलब समाप्त फरमाएं।

पर बर्क सी गिरा देता अहले दिल के दामन पर।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं अमित कुमार की आवाज में अनु मलिक की बनाई तर्ज पर। फैज अनवर का गीत और फिल्म है इम्तिहान।

0: हम है राही प्यार के। इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 10:10 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। तो बने रहिए हमारे साथ और ट्यून करके रखिए आकाशवाणी लखनऊ।
1: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तापमान के बढ़ने और भीषण गर्मी से कृषि खाद्य प्रणाली में खाद्यान्न उत्पादन और आय में कमी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको अंतिम 16 में पहुंचा। इक्वाडोर 2-0 से पराजित। फ्रांस ने भी स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में बना ली है जगह। और 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी।
2: ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री

मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहरा

0: आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक विरासत और परस्पर आदर सम्मान पर आधारित हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाकर भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ग्रीस के आर्थिक और वित्त मंत्री किरियाकोस पियरकाकिस के साथ मुलाकात में दोनों पक्षों ने साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और ग्रीस के संस्थानों के बीच गहरे सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने ग्रीस के अवसंरचना और परिवहन मंत्री क्रिस्टोस डिमास के साथ भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने अवसंरचना, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, विमानन और सतत मोबिलिटी में भारत ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा

0: श्री गोयल ने ग्रीस के अवसंरचना और परिवहन मंत्री क्रिस्टोस डिमास के साथ भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने अवसंरचना, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, विमानन और सतत मोबिलिटी में भारत ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कल संयुक्त रूप से भीषण गर्मी और कृषि नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता तापमान और भीषण गर्मी कृषि खाद्य प्रणालियों में खाद्यान्न उत्पादन और आय को कम कर रही है। इस प्रणाली पर 1 अरब 23 करोड़ लोग निर्भर हैं। साथ ही इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जब गर्मी के साथ साथ सूखा जैसी अन्य आपदाएं जुड़ जाती हैं तो कृषि उपज का नुकसान 3 गुना तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रही है। वेनेजुएला में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,943 हो गई है। लगभग 10,571 लोग इस त्रासदी में घायल हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि भूकंप के बाद पहले 2 दिन में 5,380 लोगों को बचाया गया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों को केवल 4 लोग ही जीवित मिले। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25,000 से अधिक दमकलकर्मी, बचावकर्मी, पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी लगे हैं। दक्षिण अमरीका के वेनेजुएला में 25 जून को भूकंप के 2 तेज झटके आए थे और इन झटकों के बाद काराकास में कई इमारतें गिर गईं, जिनका असर वेनेजुएला की आबादी के एक बड़े हिस्से पर पड़ा है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावरे पानलचोक में 40,000 से ज्यादा बत्तखों और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। धुलीखेल स्थित जिला पशुधन कार्यालय ने व्यावसायिक फार्मों में 40,000 से ज्यादा पक्षियों को मारे जाने की सूचना दी है। ये प्रकोप अब वहां 11 से अधिक जिलों में फैल गया है। रोकथाम के प्रयास के बीच पशुधन अधिकारी मुर्गी पालकों और आम लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हुसैन अली मुविनेई ने कल तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप डे के साथ भेंट में जंजीबार के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जंजीबार में स्टेट हाउस में उच्चायुक्त विश्वदीप डे का स्वागत किया। उन्होंने विशेषकर निवेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की अहम भूमिका की सराहना भी की। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको इक्वाडोर को हराकर अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। अब रविवार को नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। उधर मोरक्को, पैराग्वे और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे स्टर्ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पराजित किया। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। कल ओवल में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। हॉकी की बात करें तो भारत ने बेल्जियम दौरे के लिए 21 वर्ष से कम उम्र की पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। ये मुकाबले 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये दौरा इस वर्ष के आखिर में होने वाले FIH जूनियर एशिया कप हॉकी से पहले तैयारियों का अहम चरण होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति

0: डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र धड़कन देश की। श्रोताओं, सुबह के 10:20 और 23 सेकंड हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी तराने। श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 से कार्यक्रम हेलो किसान प्रसारित किया जाएगा, जिसके प्रायोजक हैं इफको।

0: भूत बंगला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक और आरवन के आवाज में। गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत था प्रीतम का।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं वरुण जैन, सचिन जिगर, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की आवाज में। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं, संगीत है सचिन जिगर का और फिल्म जरा हटके जरा बचके।

0: जरा हटके जरा बचके। इस फिल्म के गीत को आप सुन रहे थे सचिन जिगर, वरुण जैन, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की आवाज में।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से, और प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफको।

0: शिवम पाठक और साहिल हाडा की आवाज में अभी आप सुन रही थी पद्मावत फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे एम तुराज ने और संगीत था संजय लीला भंसाली का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
4: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
0: कार्यक्रम चित्रपट से, इसमें आइए अब आपको सुनवाते हैं नकाश अजीज और अंतरा मित्रा की आवाज में ये गीत प्रीतम की बनाई तर्ज पर। फिल्म है आर राजकुमार।

शाश्वत सचदेव, मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस की आवाज में अभी आप सुन रहे थे धुरंधर फिल्म का ये गीत। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त प्रसारित किया जा रहा है कार्यक्रम चित्रपट से। और अब आइए आपको सुनवाते हैं गदर 2 फिल्म से उदित नारायण, आदित्य नारायण और मिथुन की आवाज में ये गीत उत्तम सिंह की बनाई तर्ज पर।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रही थी उत्तम सिंह की बनाई तर्ज पर। फिल्म थी गदर 2 और आवाजें थी उदित नारायण, आदित्य नारायण और मिथुन की।

और श्रोताओं, चित्रपट से कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं राजा मेहंदी अली खां का लिखा ये गीत अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की आवाज में। फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं मुंजिया फिल्म का ये गीत, सचिन जिगर और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है सचिन जिगर का।

श्रोताओं, चित्रपट से कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आइए आपको सुनवाते हैं रुस्तम फिल्म से आतिफ असलम की आवाज में। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत है आरको का।

श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं।

जी हाँ, अब चुप रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि शुरू हो गया है आपका अपना कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में बोलने के लिए आपको मिलाना होगा हमें फ़ोन। हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं उन्हें तो हमारा फ़ोन नंबर रटा हुआ है, लेकिन नए कॉलर्स अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो मिलाएं हमें फ़ोन। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे।

0: तो हमारे पहले कॉलर हमसे क्या बोलना चाहते हैं, आइए जान लेते हैं। हेलो
1: जी दीदी नमस्ते। बिल्कुल
0: जी, नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
1: दीदी जी, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह जी, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमें लगता है कि आपको फोन नंबर भी रट गया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी जी, फोन तो
0: जी
1: हमेशा जो भी है रटा ही रहता है, मन में जो भी है
0: जी जी
1: बताने की जरूरत है नहीं, बस जो नए नए कॉलर रहते हैं उनके लिए आप बता देती तो इसलिए अच्छा लगता है।
0: जी

0: और बेटा सिंह जी क्या कर रहे थे इस समय?
1: अभी तो इस समय घर बनवा रहे थे, तो जो भी है उसका भी काम चालू रहता है, और बगल में रेडियो भी रख लेते हैं, तो वो भी सुनते रहते हैं कार्यक्रम भी, और घर का भी काम होता रहता है। दीदी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा मन, और गीत की बोल रहेगा चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, और दो चार मेरे मित्र हैं जैसे कि हमारे मांगीलाल चंदेल साहब हो गए, फूलचंद मनकारी हो गए, जितेंद्र हो गए, दिनकर हो गए, और जितने हमारे अन्य श्रोता सुने सभी लोग के लिए।
0: जी चलिए फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: और अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जम्मू कश्मीर से पंछी राम शर्मा जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी, हेलो दीदी, नमस्कार
0: जी, नमस्ते, क्या हाल हैं आपके?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, आप सुना?

0: ये बहुत अच्छे है और आपके कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छे रहते हैं हम, और काम करते करते रेडियो जब सुनते हैं तो काम का पता ही नहीं लगता है काम कैसे खत्म होता है।
1: जी हाँ पंछी राम जी, आप क्या काम करते हैं?
0: दीदी हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो जहाँ अगर खेत में काम करने को जाते हैं तो रेडियो साथ में ही रहता है।
1: बहुत अच्छी बात है कि इससे काम करने का, आप खुद ही कह रहे हैं कि पता ही नहीं चल पाता। तो बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: दीदी जी आज मैं नास्तिक फिल्म का गाना सुनूंगा, कभी प्रदीप जी की आवाज में, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा गाना है। और इसके पीछे कोई खास वजह है कि बस ऐसे ही आपको पसंद है ये गाना?
0: नहीं, ये मैं पुराने पुराने गाने सुनता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं
1: जी, बहुत अर्थपूर्ण
0: और होता
1: गाना
0: भी ऐसा
1: है।
0: ही है, तो मुझे ये पुराने पुराने जो फिल्मी गाने हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपके केंद्र से मैं सुनता रहता हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमें सुनाते हैं और हमारा मनोरंजन भी होता है और जानकारियां मिलती है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपकी पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा दे रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सचमुच इंसान कितना बदल गया है। लेकिन इस बदलाव में कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी, लेकिन हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्ते प्रेम सिंह जी, क्या हाल हैं आपके?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ। ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है आपकी।

0: लाओ में कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी, लेकिन हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी नमस्ते
0: जी, नमस्ते प्रेम सिंह जी, क्या हाल हैं आपके?
1: जी। मैं बहुत अच्छा हूँ, ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है आपकी।
0: हमें तो आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, और हमने अपना आवाज़ का लेवल भी बढ़ा ही रखा हुआ है।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है गाने के बोले तुमसे, जब से देखा तुमको यारा।
0: अच्छा, तो चलिए सुना देते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे, और हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं विजय पांडे जी। हेलो।
1: खुशी नहीं थी मेरी किस्मत में तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझ पर हंसता है जमाना, ये जमाने का दस्तूर है। आदरणीय शिखा दुबे साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्ते विजय जी, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने बोली, और दुनिया का तो काम ही है थोड़ा सा, अब आप क्या कहा जाए उस बारे में, लेकिन अपनी राह हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए, है ना
1: जी?
0: जी तो बताइए।
1: कहा गया है कि कामयाबी के दामन में खुशियां नहीं हसरतें छुपी रहती है।
0: जी बिल्कुल, जब हम अपनी हसरतें रखते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कोशिश भी करते हैं, और जब कोशिश अच्छी तरीके से करते हैं तो कामयाबी भी मिलती है ना
1: जी
0: जी। बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का नाम है जीने की राह,
0: जी
1: और गीत के बोल हैं एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, और ये गीत सभी सुनने वालों के लिए समर्पित करना चाहूंगा।
0: जी बहुत अच्छा गीत है विजय जी, आप आनंद लीजिए इस गीत का, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब लाइन पर हमारे साथ हैं पूनम जी। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं?
0: गुड मॉर्निंग, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: मैम मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और सच में आज का दिन मेरे लिए इतना खास है कि मैं क्या ही बताऊँ।
0: तो बता ही दीजिए।
1: मैं बताएं मैम, आज मैंने जैसे ही फोन उठाया, जस्ट अभी अभी फ्री हो पाई थी, मैंने कहा चलिए अब आकाशवाणी लखनऊ में कॉल करती हूँ, और जैसे ही कॉल नंबर डायल किया वैसे ही कॉल लग गया।
0: अच्छा, अपनी ये ट्रिक सबको बता दीजिए कि आपका फोन तुरंत लग जाता है, और कुछ हमारे कॉलर्स हैं वो बहुत मायूस रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं कि उनका फोन लग जाए, है ना?
1: जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मैम, बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे हैं जो कि प्रयास इतना करते हैं लेकिन फिर भी कॉल नहीं लग पाता, उनके लिए तो बस यही कहेंगे कि उनका भी कॉल लगे ताकि आकाशवाणी लखनऊ में वो भी जुड़े और अपनी मन की बात कहें।
0: बिल्कुल, आप कह रही थी आज का दिन बहुत खास है आपके लिए, क्या है?
1: मैम हमारे भी आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज मैं जहाँ पर जिस रेडियो चैनल पे काम करती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ, फोन इन प्रोग्राम रेडियो आर एन का आज है जन्मदिन।
0: अच्छा,
1: तो हमारे लिए बहुत खास है, और आज आकाशवाणी लखनऊ में कॉल लग गया है तो और भी खास हो गया है।
0: बिल्कुल पूनम जी, तो बताइए कि गाना कौन सा सुनवा दें आपको?
1: मैम आज मुझे गीत सुना दीजिएगा, फिल्म तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, और ये गीत मैं सुनना चाहती हूँ सभी को, जितने भी लाइव सुन रहे हैं, कुछ तुम कहो कुछ हम कार्यक्रम, सभी को और रेडियो आरएन को ये गीत मैं डेडिकेट करूंगी।
0: अच्छा,
1: मैम
0: और जिनके और, जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए भी है ये, बोल दीजिए, बहुत से लोग होंगे।
1: ये जन्मदिन है मैम, बिल्कुल, जहाँ पे मैं कार्यक्रम करती हूँ ना, रेडियो आरएन चैनल का नाम है, उन्हीं का जन्मदिन है आज।
0: नहीं तो हमारे

0: जो सुनने वाले जो श्रोता हैं जिनका जन्मदिन आज है, पूनम जी की तरफ से उनको भी ये गीत हम समर्पित कर रहे हैं, ठीक है
1: जी हाँ
0: जी?
1: बिल्कुल, सभी को इसी गीत में शामिल करते हैं।
0: हाँ
1: और मैम थोड़ा सा
0: हाँ
1: और जानना चाहेंगे, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
0: जी, हमारे यहाँ मौसम बस ठीक ही ठीक है, अभी बदली है, पानी नहीं गिरा है
1: अच्छा जी,
0: तो।
1: तो मतलब ज्यादा बारिश वारिश अभी नहीं हुई है?
0: हाँ, अभी बारिश नहीं हुई है तो
1: अच्छा
0: अब।
1: जी, चलिए तो कोई बात नहीं मैम। हम तो चाह रहे हैं जैसे कानपुर में बारिश हुई है कल, वैसे ही आपके यहाँ भी आज
0: बिल्कुल
1: बारिश हो
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: होगी, पड़ोसी पड़ोस में जब पानी गिर रहा है तो हमारे यहाँ तो आना ही आना है उसको बादल हमारे
1: बिल्कुल
0: यहाँ आएंगे,
1: आएगा,
0: ठीक
1: बिल्कुल मैम
0: है?
1: सही
0: तो
1: कह रही हैं
0: पूनम जी,
1: जी।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनिए ये अपनी पसंद का गीत।
1: थैंक यू मैम, बाय बाय।
0: बाय बाय।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं वारिस अली जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो
0: जी वारिस अली जी, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ईसाद नगर पोस्ट महमूदाबाद जिला बाराबंकी से।
0: जी बाराबंकी से वारिस अली जी बोल रहे हैं, स्वागत है करते हैं हम आपका कार्यक्रम में। और बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: हमको गाना सुनवा दीजिएगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है
0: इंसान बनेगा। धूल का फूल फिल्म का ये गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
1: मैडम थोड़ा आवाज बढ़िया, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
0: कैसे कम आ रही है? हमारे यहाँ तो हमने अपना वॉल्यूम बढ़ा के ही रखा है। हेलो।
1: हाँ जी
0: जी वारिस अली जी, आपको आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवा देते हैं, ठीक है?
1: जी सुनवाइए।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ, खाली चचा को बतौर खास और मौजी भैया और छोटू को।
0: चलिए सब लोग सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्म।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं राकेश जी। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्ते राकेश जी, अपना पूरा परिचय दीजिए।
1: मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: शिमला से बात कर रहे हैं?
1: जी जी जी जी।
0: अच्छा, कैसा मौसम है शिमला का?
1: शिमला का मौसम बारिश हो रही है झमाझम।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बारिश हो रही है तो थोड़ी सी बारिश हमारी तरफ भी हो जाती।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ भी हो जाएगी, हमारी तरफ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा मौसम है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप मौसम का आनंद ले रहे हैं। और बताइए,
1: और इस मौसम में आपका प्रोग्राम भी सुन रहे आकाशवाणी लखनऊ का।
0: जी जी, तो बताइए इस अच्छे से मौसम में कौन सा अच्छा सा गीत हम आपको सुनवा दें?
1: इम्तिहान मूवी का गाना सुनना है, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
0: चलिए राकेश जी, सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी जी।
0: फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ हैं भगवान सिंह परमार जी। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, क्या हाल हैं आपके?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान सिंह परमार जी, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं।
1: जी हाँ दीदी।
0: जी आप लोग के नाम हमको रट गए हैं बिल्कुल।
1: जी जी बिल्कुल दीदी, आपसे बहुत ज्यादा बात हुई है मेरे लिए, आप बहुत लकी हो, आपके पास भी कॉल लग जाता है और विवाह श्रीवास्तव जी के पास भी लग जाता है।
0: नहीं, कॉल तो आप लोग की
1: लगती जी के पास भी लग जाता है, मंजरी निगम जी के पास भी लग जाता है, आप चारों के पास बहुत आसानी से लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दें
1: दीदी? फिल्म का नाम है मोहब्बत की आरजू और गाने का बोले तुम हमसे प्यार कर लो।
0: चलिए सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: दीदी कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं क्या?
0: आप हर बार तो दोस्तों को याद कर ही लेते हैं।
1: डेलिकेट रहेगा दीदी।
0: जी जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद दीदी।

0: और अब हमारे साथ एक नए कॉलर जुड़े हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार
0: जी, हमने सोचा आपने, आप कह रहे थे ना कि पहली बार आपकी कॉल लगी है, तो ऐसा तो नहीं हमने कहा कि आपने कॉल काट
1: नहीं,
0: दी
1: नहीं,
0: हो।
1: नहीं, मैडम, मैं लाइन पे हूँ।
0: जी जी, अपना नाम बता दें सबको।
1: हाँ जी, मैं टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: मध्य प्रदेश से बहुत सारे हमारे श्रोता जो हैं मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ते हैं। और
1: जी
0: टेकचंद जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम, आज तो कहना चाहिए काफी प्रयासों के बाद आज सफलता मिली है। और कहते हैं ना कि लखनऊ की एक कहना चाहिए कहावत है कि पहले आपके चक्कर में मैडम हम सबसे बाद में हो गए।
0: नहीं नहीं बाद में नहीं हो गए, जब से शुरुआत हो जाए तभी से आप पहले नंबर पे हैं, है ना?
1: मैडम, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, लगभग मुझे 6 साल हो गए हैं कोल इंडिया से रिटायरमेंट हुए।
0: अच्छा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप इतने एक्टिव हैं।
1: हाँ मैडम, 6 साल हो गए हैं और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करता था, तो आज भी कहना चाहिए मैं काम के मामले में वैसा ही हूँ,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मेरा जो रोटेशन है वो मेरा एक रोजमर्रा की जो दिनचर्या रहती है वो बनी हुई है।
0: जी,
1: तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं अभी फिर से जो है अपना जॉब में जाकर के कर सकता हूँ।
0: कर सकते
1: लेकिन
0: हैं।
1: जो कानून एक बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है 60 साल के बाद रिटायरमेंट का,
0: जी जी
1: तो उसके कारण मैडम एक कहना चाहिए रिटायरमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले बच्चों को भी उनको मौका मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल, एक नियम है उसका, तो रिटायरमेंट उसके तहत तो होता ही है। लेकिन टेकचंद जी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है पूरा जोश लग रहा है कहीं से, ये थकी हुई आवाज नहीं है।
1: मैडम, आप जैसे मातृ शक्तियों का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है।
0: जी बिल्कुल, ईश्वर की कृपा हमेशा।

0: पर बनी रहे और बता दीजिए कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
1: बस मैडम क्या है, पुराने जो साथी है वो हमारे से बिछड़ चुके हैं, मतलब ऐसे दूर हो गए हैं कि कभी काल पहले डेली फोन आते थे, अब थोड़ा रुक रुक करके कभी आते हैं।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: वो यादें हमारे को बहुत आती हैं जो पुराना समय था।
0: जी बिल्कुल आती
1: बाकी
0: होंगी।
1: तो और ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है घर परिवार में।
0: चलिए
1: तो मुझे आज सुनवा दीजिए आप मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म है आदमी। आज पुरानी राहों पे कोई मुझे आवाज ना दे।
0: अरे वाह, बहुत चुनिंदा गीत आपने सुना, मतलब सुनने के लिए फरमाइश करी है। तो चलिए हम आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं और आप इसी तरह कॉल लगाते रहिए।
1: जी,
0: फोन
1: जी
0: करने
1: मैडम,
0: के लिए
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत धन्यवाद,
0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं फूलचंद जी। हेलो हेलो
1: हेलो शिखा जी, राधे राधे।
0: राधे राधे, कहाँ से बोल रहे हैं फूलचंद जी?
1: शिखा जी, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, मनकारी से।
0: जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: बिल्कुल, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: तो
1: फिल्म का नाम है अजूबा। गीत के बोले के एक रजूमी से पूछा था मैं किसकी हूँ महबूबा।
0: अच्छा,
1: वह बोला तेरे आशिक का होगा नाम अजूबा।
0: अच्छा, अजूबा फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी, बेटा सिंह यादव जी, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी को भी डेडिकेट रहेगा। और हमारे जो है मांगीलाल चंदेल जी हो गए, दिनकर सिंह चित्रकोट धाम से हो गए।
0: तो चलिए सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: हाँ बिल्कुल, और पूनम सिंह जी हैं कानपुर से, उनको भी डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: चलिए, जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको फूलचंद जी की तरफ से ये गीत डेडिकेट है, ठीक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू। चलिए, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, और आपने अगर अभी तक हमें फ़ोन मिलाना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से हमें फ़ोन मिलाइए। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं हमारी एक रेगुलर कॉलर शबनम अब्बासी जी। हेलो।
1: हेलो दीदी, आदाब।
0: नमस्ते, क्या हाल हैं शबनम जी?
1: हमारे अच्छे हाल हैं, और बारिश पड़ रही है, ठंडा मौसम हो गया दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा,
1: लोगों का कार्यक्रम सुनते हुए।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ से वो खुशी भी छलक रही है।
1: जी दीदी,
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: दीदी उससे पहले कहना चाहती हूँ, सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिल की दवा मिलती है, बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर में, सुना नखलों में दिल लगाने की भी सजा मिलती है।
0: अरे सजा देखिए ये मत कहिए, जब भी आप कॉल लगाती हैं आपसे बात हो ही जाती है ना?
1: दिल लगाने की सजा मिलती है, फिर भी हम मानते नहीं है, कॉल लगा लेते हैं।
0: नहीं नहीं ये सजा नहीं है। देखिए शबनम जी, ये सज़ा नहीं है। और देख, बहुत से हमारे कॉलर्स रहते हैं जिन वो अगर ये बात कहें जिनका फ़ोन नहीं लगता है, तब तो समझ में आता है।
1: दीदी हाँ, ये बात तो है दीदी। एक बात कहना चाहूँगी, मैंने पीछे कार्यक्रम सुना था, लोगों ने कहा था कि मेरी 7 साल में कॉल लगी हो, मैंने दीदी उनका इतना सम्मान करा था कि दीदी 7 साल के बाद उन्होंने इंतजार करके कॉल लगाई, और मेरी तो जिस दिन मैं लगाने बैठी हूँ मेरी कॉल इंशाल्लाह लग जाती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी खुशनसीब हैं, तो अब ये मत कहिएगा ठीक है। चलिए सुनवा दें आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: दीदी
0: चलिए जल्दी से ले लीजिए। अच्छा अच्छा फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू दीदी।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं विजय लक्ष्मी जी। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं सांगली जनपद हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा बात कर रही हूँ।
0: जी विजय
1: कैसी हैं आप?
0: जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। और आप सुनाइए, क्या कर रही थी?
1: मैं कुछ नहीं कर रही थी, अभी कॉल लगा रही थी, अभी बाग गई थी मैं अपने। हाँ
0: अच्छा, तो आप कॉल लगा रही थी और कॉल लग गई आपकी।
1: हाँ अभी यहाँ मेरा प्रोग्राम आज छूट गया था।
0: अच्छा, कोई बात नहीं।
1: हाँ
0: चलिए, लेकिन आपने
1: क्योंकि
0: कॉल
1: मेरे
0: लग,
1: मम्मी पापा घर पे नहीं थे, बाहर थे किसी काम से।
0: अच्छा तो चलिए बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
1: मैम जीत मूवी का वादों से नहीं,
0: अच्छा
1: और
0: चलिए।
1: मैम मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है।
0: बहुत अच्छी बात है, बारिश का आनंद लीजिए, ये मौसम जो है बहुत खुशगवार रहता है। तो आपकी
1: जी
0: पसंद का
1: मैम,
0: गाना हम आपको सुनवा दे रहे हैं। ठीक है विजयलक्ष्मी जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के हमारे अंतिम कॉलर हैं रूप सिंह जी। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्ते रूप सिंह जी।
1: कहाँ? नंगला काचान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। और बताइए क्या
1: और मैम कैसे हैं आप और आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: हम सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आपकी तरफ भी क्या बारिश हो रही है?
1: जी बारिश हो रही है, 9:30 बजे से स्टार्ट हुआ है सुबह से आज।
0: अरे वाह, तो इसका मतलब हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि लखनऊ में भी अब बारिश आने ही वाली है।
1: अच्छा, अभी आई नहीं है?
0: नहीं आई है, लेकिन ऐसी नहीं आई है कि दम हम लोग मतलब कह सकें कि बहुत तेजी से पानी गिर रहा है।
1: अच्छा,
0: तो बताइए रूप सिंह जी, कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: फिल्म है नमक हलाल, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
0: हाँ भाई, बारिश हो रही है तो ये गाना तो सुनना बनता ही है, क्यों? चलिए आनंद लीजिए आप इस गीत का, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्ते।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: జర్రపట్ట.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है. आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न

0: खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
0: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
0: जी।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
0: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए
0: जी।
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है
0: जी। जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
1: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं, लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है
0: जी।
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या

0: इसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम।
5: जी मैम, हमेशा याद रखें।

0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
2: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
1: सचिन जी, ये

0: श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
3: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
6: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया।

0: बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, चलो
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी, मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
2: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। और अब आप सुनेंगे दिल की आवाज बने नगमों को कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। कार्यक्रम का आगाज करते हैं खामोशी फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने और बोल हैं गुलजार के।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है सूरज फिल्म से। बोल हैं हसरत जयपुरी के, धुन बनाई है शंकर जी जयकिशन ने और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

पगला कहीं का, जी हाँ, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल हैं हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।

आप सुन रहे हैं संगम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना है हसरत जयपुरी की, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की 747 किलोहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है यकीन फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, बोल हसरत जयपुरी के और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है, ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। संगीत से इस गीत को संवारा है ओपी नयन ने और शब्द रचना है SH बिहारी की।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा की 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहले जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है।

उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। राम केवल सिंह पुत्र रामबख्श निवासी ग्राम पूरे रामदीन बहरामपुर थाना लालगंज जनपद बरेली ने सूचित किया है कि सीमा देवी दिनांक 31 मई 2026 से लापता हैं। सीमा देवी की आयु 20 वर्ष कद 5 फीट रंग गोरा चेहरा गोल है। गुमशुदगी के समय इन्होंने चॉकलेटी रंग का सलवार सूट व पैरों में हवाई चप्पल पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9913291242। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9913291242। संजय कुमार शर्मा निवासी थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली ने सूचित किया है कि सानिया प्रजापति पुत्री उमरेश कुमार निवासी ग्राम घनेही मजरे मवई दिनांक 21 अप्रैल 2026 से लापता हैं। सानिया प्रजापति की आयु 17 वर्ष कद 4 फीट 5 इंच रंग गोरा चेहरा गोल है। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9454404147। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9454404147। गया प्रसाद निवासी ग्राम सकतपुर मजरे बसंतपुर थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली ने सूचित किया है कि सीमा दिनांक 2 जून 2026 से लापता हैं। सीमा की आयु 24 वर्ष कद 5 फीट 3 इंच रंग गोरा चेहरा लंबा है। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 8840457

0: 7771। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8840457771। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक्किद हो रहे UP TET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी ज़ोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UP TET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तिहानात में बेहतरीन कारगर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद वज़ीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG Ramji Act 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्क गिर नफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तियाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतादी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अजला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतादी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम

0: जी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फ़ोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएँ और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज़ से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत अमरोहा कानपुर अंबेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अज़ला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:15:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता पंचन का पंचे नीना सोनकर बहनी के नमस्कार, जय हिंद। पंचे आज है 1 जुलाई और हर बरस आप सबे का मालूम है, देखो जितनी कितनी सारी होर्डिंग लगी है शहर भर में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो वहाँ भी देखो बैनर पोस्टर लगे हैं कि आज है डॉक्टर दिवस, यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, चिकित्सक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन जौन सेवा जो करत हैं डॉक्टर, मतलब दिन रात कहा जाए ज्ञान सेवा समर्पण से अनगिनत लोगों के जो जीवन बचात हैं ना, उनका याद करे के आज दिन है, उनका सम्मान करे के दिन है। ये दिन पंचे केवल ये याद नहीं दिलाते कि चिकित्सा पेशा से जुड़े लोगों का हम धन्यवाद दई या आज ही अवसर है, बल्कि समाज में उनके योगदान का याद करे के लिए और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करे के भी विशेष अवसर है। अब चिकित्सक कौनों हो, चाहे डॉक्टर बहनी हो, डॉक्टर भैया हो, या फिर जो भी पूरी टीम करत थी डॉक्टर के साथ काम, केवल बीमारी के इलाज नहीं करते हैं बल्कि कठिन परिस्थिति में जो मरीज हैं उनके परिवार का मानसिक शक्तियों देते हैं। महामारी हो, प्राकृतिक आपदा हो या कौनों संकट आए जाए स्वास्थ्य केयर, तो इस दौरान डॉक्टर ये साबित करें हैं कि उनके पेशा केवल नौकरी नहीं बल्कि मानव सेवा के सर्वोच्च पेशा है। तो डॉक्टर का मतलब कहा जाए कि सम्मान करो, सत सत प्रणाम करो, कहे से कि जरको मनई बीमार होत है तो ई न दिन देखत है न रात अपन सेवा देते हैं। और हर बरस की तना देखो, हर बरस एक नई नई बात आती तो उनका कहा जाता है एक विशेष संदेश, मतलब थीम कहा जाता है। तो ई बरस जौन चिकित्सक दिवस की जौन थीम है, हैं जो थीम हवा उका है कि इसके माध्यम से समाज का संदेशों दिन जाते हैं कि डॉक्टर केवल इलाज नहीं करते बल्कि उम्मीद विश्वास और जीवन के संबल भी बनते हैं। 2026 की जौन थीम है इसके उद्देश्य डॉक्टर की निस्वार्थ सेवा, मरीजन के प्रति उनकी जिम्मेदारी और आधुनिक स्वास्थ्य सेवन में उनकी भूमिका का सम्मान देखा है। और आज के दिन आप देखे भी हुई हो, जगह जगह देखा हो कितने स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं चिकित्सा संस्थान द्वारा, अस्पताल द्वारा, सामाजिक संगठन द्वारा। ये सम्मान समारोह के साथ स्वास्थ्य शिविर भी लगाए ने जागरूकता बदे। कौन कौन सा शिविर लगा हुआ है ये देखो, रक्तदान शिविर लगा हुआ है और तना तना के कि मतलब एक जागरूक करे के लिए कि कौनो बीमारी हारी का पाले का नहीं ना शरीर में, उके जल्दी से

जल्दी इलाज कराए का है। तो आज के दिन बहुत महान दिन है, हर बरस आते है। अगर भूल गए हो तो अपने डॉक्टर का मतलब कोनो संदेश नहीं भेजे है वो, तो आप उनका संदेश भेजो, उनके प्रति कृतज्ञ रहो। और ये धूम तड़ाका ये जो न मतलब कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा करत हो ना, तो ये ना करे। कहे कि समय पे तो मनाई जात नहीं ना मरीज कौनो है, और जो बीमारी का बिल्कुल घर बना लेते हैं तब जात है। तो यूँ ना करे, समय पे जाओ तब है आपके सही तरीके से इलाज होई। और अपन हर डॉक्टर का, चाहे हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे हुए CHC पे, PHC पे, सब जगह जाओ और उनका फूल देओ, उनके पैर छुओ और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। यही है आज के दिन के सही संदेश। ऐस गर्मी ऐस घाम हुई रहा कि मनई छटपटाए रहा कि इंद्रदेव कब बरसियो है। तो इंद्रदेव बरसिए आए, और जो उन माटी की सोंधी सोंधी सुगंध है ना, खुशबू जी का कहा जाते, उके छीटो मनई का मिलियो। हम तो छीटा से अब की कह दिए हन कि ऊपर वाले से अब की छीटा नहीं, फूल बरसात होए का चाही। तो मौसमी फुहार के आपो ले आनंद और प्रार्थना करो कि जल्दी जल्दी बरसाओ।

0: गर्मी के बीच रहा दिनवा आए बरखा। अरे राम हम तो का बताई, बरखा के कौन नहीं इंतजार कर रहा। इतना घाम कि कौनो मन ही निकल रहा कौनो काम से। अब काम धंधा तो मन ही करे का निकलत है ना, तो बिल्कुल जैसे जीव जान वही बिल्कुल लहू लुहान जैसे। लहू लुहान केवल चोट पे नहीं होता मन ही, ये जौन सूरज की किरणें आइस तपाए रही कि कुछ पूछो ना, बिल्कुल खाल वाल सब झुलसाए दे रहे। तो हमका पूरी उम्मीद है बंचे की आपका जौन गौनाई है। अंजू उपाध्याय बहनी की गाई नीक लागी होई। और देखो ये का संदेश दीन जाए रहा कि सतर्क रहो भैया।
1: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: पंचे एक बार फिर से आप सबके स्वागत है। आप सुन रहे हो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आंगनबाड़ी। जी के रहा था आप सब का इंतजार। और देखा हम आपकी इंतजार घड़ी खत्म करा था बुधवार का आए के नहीं, तो आज जौन भेंट वार्ता हम आपका सुनवाई बे। बड़े बड़े संस्थान से आते हैं डॉक्टर और अपन कीमती समय देते हैं ना था रिकॉर्डिंग कराए खातिन। और आज जौन डॉक्टर साहब की रिकॉर्डिंग हम आपका सुनवाए रहें, यह जाने माने अस्थि रोग यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मेश भल्ला जी और ई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ में कार्यरत हैं। और बहुत नीक तरीके मनई का जौने कोई मनई पहुंच जाए तो मनई का बड़े प्यार से इत्मीनान से देखत हैं। और कहा जात है कि हड्डी के हैं मास्टर, मतलब मनई के हड्डी में हाथ लगाते साथी उके जान जात हैं कि का है उके तनमा और का है मतलब उकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता। तो ये आपका बताइए। और बहनी लोगों के कार्यक्रम में बहनी और बच्चा लोगों के तो हम जौन कार्यक्रम आपका प्रसारित करके प्रस्तुत करे जा रहे हैं उके विषय है महिलाओं में हड्डियों का स्वास्थ्य जोखिम और रोकथाम के उपाय। अब डॉक्टर साहब काका बताई ने नीक तरीके सुनो और हमका मेल वेल करके भेजे कि कई लागा और इनसे बतकही करें न नीना सुनकर।
4: श्रोताओं आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निर्मेश भल्ला जी को। और आज हमारी चर्चा का विषय है महिलाओं में क्यों होता है कमर और जोड़ों का दर्द। डॉक्टर निर्मेश भल्ला जी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू
4: जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि महिलाओं में कमर और जोड़ों का दर्द इतना आम क्यों है और इसके पीछे मुख्य कारण कौन से हैं?
5: देखिए आपने दोनों अलग अलग चीजें कही, एक कमर का दर्द और दूसरा जोड़ों का दर्द।
4: जी
5: देखिए जोड़ों का दर्द जो होता है इसको हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं और जो कमर का दर्द होता है इसे हम लोग बोलते हैं लो बैक एक बोलते हैं इसको।
4: जी
5: तो ये दोनों अलग अलग चीजें रखी है। लेकिन ऐसा है कि अगर आर्थराइटिस है
4: जी,
5: आर्थराइटिस भी कई तरीके की होती है, तो महिलाओं में जो आर्थराइटिस कॉमन है वो है रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, यही महिलाओं की पीठ में भी कमर में भी हो सकती है
4: जी।
5: क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस तो जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और ऑटोइम्यून डिजीज है। ये किसको होगी, कब होगी, कैसी होगी, क्यों होगी, ये किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोग कहते हैं हेरिडिटरी भी होती है
4: जी,
5: मतलब आनुवंशिक वो भी होता है, माँ को है तो उसको भी होगा, बच्चों को भी होगा। एक तो ये कारण हो गया, दूसरा एक लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। पेन लो बैक एक जो होता है कि डाइट हमारी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा जो है वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है अनयूजुअल स्ट्रेन पड़ता है कमर के ऊपर। कमर की जो आपको मालूम होगा कि 33 रीढ़ की हड्डियां होती हैं, 33 वर्टिब्री होती हैं, तो सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर पड़ता है, सारा बॉडी वेट उन्हीं के थ्रू जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है वियर एंड टियर होने लगती है। जब वियर टियर होने लगती है तो रीढ़ की हड्डी से जो है हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, उससे चारों तरफ जो हमारे पैरों को जो नसें सप्लाई करती हैं उन पे भी प्रेशर पड़ जाता है, अनयूजुअल प्रेशर। तो एक तो ये कारण हो गया, दूसरा ये इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो होती हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गई या और दूसरी तो किस्म की आर्थराइटिस जो जांच करने पे ही पता चलती है कौन सी आर्थराइटिस है क्या है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये तो कमर का हो गया
4: जी।
5: और जो जॉइंट्स है उसमें भी आप जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी ऐसा होता है, देखा गया है कि फैमिली में भी रन करता है, लेकिन इसके कारण यह है कि कभी चोट लग गई हो, पुरानी चोट लग गई हो, या हमारी लाइफ स्टाइल गलत हो, हम उठते बैठते ज्यादा दूसरे तरीके से हो, तो अनयूजुअल प्रेशर पड़ता है, या पैरों में कोई डिफॉर्मिटी हो, घुटनों में कोई डिफॉर्मिटी हो, इसकी वजह से जो है वेट बियरिंग जो है

0: लाइन ऑफ वेट बियरिंग जो है चेंज हो जाती है, तो उस जगह का कार्टिलेज घिसने लगता है, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाती है। दूसरा मैंने बताया जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है। देखिए आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन टर्म है, लेकिन इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। जब मरीज आता है तो हम जांच कराते हैं उसकी, फिर हमें पता चलता है किस टाइप की आर्थराइटिस है। तो ये आर्थराइटिस जब हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सी आर्थराइटिस है, तो उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरी चीज, महिलाओं में एक और ज्यादा कॉमन चीज जो पुरुषों में भी होती है, लेकिन पुरुषों में बहुत ओल्ड एज में होती है, लेकिन महिलाओं में क्या है कि 45 की एज के बाद जो आपने टर्म सुनी होगी ऑस्टियोपोरोसिस,
1: बिल्कुल
0: है ना, जिसमें जो है पोरोसिस मीन्स जब हड्डियों के जो क्षरण होता है तो उसकी वजह से छिद्र जो होते हैं हड्डियों में, क्योंकि लिविंग थिंग है, बोन्स जो है लिविंग होती हैं, उसमें जो है जो छेद होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। तो ये किस वजह से होता है, जैसे प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। एक आपने सुना होगा ऑस्टियोमलेशिया होता है ओल्ड एज में, है ना, तो इसमें भी जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी कमर में और जोड़ों में दर्द होता है। यही चीज बच्चों में हम लोग रिकेट्स बोलते हैं
1: जी।
0: जब बच्चों में ये कमी होती है विटामिन डी की, तो उसकी वजह से क्या होता है, बोन तो बन रही है लेकिन उसमें कैल्शियम नहीं डिपॉजिट हो पा रहा है, तो जो है टेढ़ापन आने लगता है जोड़ों का, तो वो बच्चों में जो है रिकेट्स बोलते हैं, फीमेल्स में मतलब एडल्ट्स में हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोल देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे प्रकार बताए कि महिलाओं में जोड़ों और कमर का दर्द क्यों होता है, आपने पुरुषों की भी बात की, आपने बच्चों की भी बात की, आपने कुपोषण की भी बात की कि विशेष रूप से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी इस तरह के दर्द को जन्म देती है। महिलाओं को अपने आहार में अच्छी चीजें यानी कैल्शियम युक्त चीजें, प्रोटीन युक्त चीजें और विटामिन डी युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए। अब जो मेरा सवाल है, क्या उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और ये भी एक कारण है जोड़ों और कमर के दर्द का, तो इसको कैसे रोका जाए?
0: देखिए मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया है कि एक टर्म एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। असल में प्रॉब्लम यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस का पता तब चलता है जब ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डीपली सेट इन कर जाती है बॉडी में, जब उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जब सिम्टम्स आने लगते हैं, इसका मतलब आपकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं। और एक चीज मैं और बताऊं, मतलब श्रोताओं के ज्ञानवर्धन के लिए
1: जी,
0: कि हमारी जो बॉडी में जो बोन्स हैं, बोन मास जो है ये 30-32 की एज तक बनता है, इसके बाद इसका क्षरण ही होता है। आप फिर जो बन गया 30 की एज तक, उसके बाद वो डिप्लीट ही करेगा, वो उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं
1: जी।
0: तो इसलिए अगर आप शुरू से ही, जैसे घर में लड़कियां हैं बच्चे हैं, तो उनको आप बढ़िया डाइट दीजिए जिससे उनको एक्सरसाइज करें, वो बच्चे खेलें कूदें, थोड़ा जो है फिजिकल एक्टिविटी करें, तो और अच्छी डाइट जिसमें कैल्शियम हो प्रोटीन हो, तो उनका जो है बोन मास बनेगा। जब वो बोन मास जो है 30 की एज तक जो है इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद जो है फिर वो उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे होती है। महिलाओं में जैसे मैंने आपको बताया जब मीनोपॉज हो जाता है तो उनके हार्मोन्स में कमी आने लगती है
1: जी।
0: जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन जो बोन बनाने में सहायता करते हैं
1: जी।
0: तो होता क्या है, फीमेल्स वैसे भी हमारे, देखा होगा आपने हमारे घरों में सबसे बाद में खाना खाएंगी, जो बचा खुचा होगा वो खा लेंगी, पहले उनके लिए पति है उनके बच्चे हैं। जबकि एक फीमेल किसी भी घर में अगर फीमेल है तो पहला हक उसका होना चाहिए खाने के ऊपर, क्योंकि उस वो पूरे घर की सेवा वही करती है।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि फीमेल्स का पूरा हक है और उन्हें अपने शरीर का पूरा ख्याल रखना चाहिए
0: जी।
1: और आपने बहुत सी अच्छी बातें भी बताई। अब हम जिन महिलाओं की बात करेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, यानी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं दिन भर खेतों में भी काम करती हैं, घर में भी लगी रहती हैं, तो क्या अत्यधिक शारीरिक श्रम इस तरह के जोड़ों के दर्द या कमर के दर्द को जन्म दे सकता है?
0: देखिए दोनों आपने अलग अलग बातें पूछी। श्रम जो है, श्रम करने से जो है आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा
1: जी,
0: लेकिन जब जोड़ों में दर्द हो तो आपको श्रम नहीं करना चाहिए, कंसेप्ट ये होना चाहिए। अगर आप जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है, कोई तकलीफ शुरू हो गई, उसके बाद भी आप श्रम करने में लगे हैं, तो आपके डैमेज होने के चांस जो है, जोड़ों के जो डैमेज की स्पीड है वो बढ़ जाएगी
1: जी।
0: और आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं उसके ऊपर। एक भ्रांति में और आपकी वो दूर कर दूं इसी बहाने कि हमारा ये रहता है कि हम धूप में काम करते हैं तो विटामिन डी सन रेज से बन जाता है, तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें विटामिन डी आपको आपके बॉडी की जरूरत के हिसाब से मिल जाए, ये वेजिटेरियंस के लिए है। नॉन वेजिटेरियंस में भी जो लोग फिश वगैरह खाते हैं तो उनको विटामिन डी मिल जाता है
1: जी
0: डाइट से, लेकिन वो भी इतना नहीं होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट

0: डेली की उसको पूरा करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि सप्लीमेंट्स लेने ही होंगे और आपने 30 की उम्र का जिक्र भी किया कि 30 साल के बाद बहुत जरूरत होती है और धीरे धीरे जो पोषक तत्व हैं हड्डियां उन्हें जज्ब कम कर पाती हैं और वहीं से शुरू होती है दरअसल हड्डियों की सही तरीके से देखभाल। अब ये बताइए, महिलाएं अक्सर दर्द को नजरअंदाज कर देती हैं और इलाज नहीं कराती हैं, उन्हें इस विषय में आप जागरूक करने के लिए क्या सलाह देंगे?
0: मैं यही सलाह दूंगा महिलाओं को कि जैसे ही कोई परेशानी शुरू होती है किसी भी जॉइंट में या बैक में, अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो आप तुरंत अपने जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हो, आर्थोपेडिक सर्जन या हड्डी का डॉक्टर हो या आपका फैमिली डॉक्टर हो, आप उसको ये तकलीफ जरूर बताएं और उसको कायदे से इन्वेस्टिगेट करें। और कायदे से जो महिलाएं जो 40 की एज क्रॉस कर चुकी हैं उनको तो मैं जरूर ये राय दूंगा, एक देखिए जांच होती है बीएमडी टेस्ट
1: जी।
0: जब एक बार मीनोपॉज हो जाए, मीनोपॉज के बाद अगर ये बीमारी परेशानियां शुरू हो रही हैं 4-5 साल बाद, तो अपना ये जांचें बीएमडी टेस्ट करा के अपनी जो है हड्डियों की ताकत का पता लगाएं और वैसे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जो महिलाएं शॉर्ट स्टेचर होती हैं या जिनके घर में पहले से ही मदर्स की तरफ से हड्डियां टूट रही हैं या उनकी हाइट कम हो रही है या उनका पॉस्चर जो है काइफोटिक होता जा रहा है, आपने देखा होगा कमर आगे झुकती जाती है धीरे धीरे, लोग उनकी हाइट कम होने लगती है, तो जिनको घर में ये हुआ हो तो उनको तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तो फैमिली में रन करती है। और जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल वगैरह लेती हैं तो उनको ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बॉडी में जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनता है या खत्म हो जाता है, महिलाएं मेनोपॉज से गुजर रही होती हैं, तब उन्हें इस तरह की तकलीफ ना हो इसके लिए सही समय पर सही जांचें करवाना बहुत जरूरी है।
0: ये तो बात मैं उनके पतियों से भी कहना चाहूंगा कि अपनी बीवी का अपनी वाइफ का ख्याल बहुत कायदे से रखें।
1: अब आखिर में एक सवाल कि क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय है, योग है या कोई ऐसी टेक्निक जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि कमर और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद मिल सके या फिर अगर शुरू हुआ है तो डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है?
0: देखिए, दर्द अगर हो रहा है तो आपको जो है अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ही जरूर लेनी चाहिए
1: जी।
0: लेकिन जो महिलाएं जिनको नहीं है, जो एक नॉर्मल लाइफ अपनी व्यतीत कर रही हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि अपनी डाइट में कुछ ऐसे आइटम जरूर लें जैसे दाल हो गया
1: जी।
0: चना एक बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है, चना जरूर खाएं, दलिया जरूर अपने आहार में लें, एक गिलास दूध, घर में जितने सदस्य हैं सबके लिए एक गिलास दूध, मिनिमम 500 ml दूध जरूर होना चाहिए
1: जी।
0: और दूध को चाहे फॉर्म में लेना चाहे दूध की फॉर्म में लें, वो दही की फॉर्म में लेना चाहे दही की फॉर्म में लें, जो नॉन वेजिटेरियन है कम से कम एक एग पर डे जरूर लें, और जो नहीं है जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मेरी सलाह ये है कि वो दालों का और दूध का, दही का, इन सब का अच्छा इस्तेमाल करें और हरी सब्जियों को बढ़ावा दें, हरी सब्जियां जरूर खाएं और वो फल फूल लें जिसमें कैल्शियम हो। विटामिन डी तो मैंने आपको बता दिया नहीं मिलता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट सबको लेने चाहिए। अगर आप देखिए, अगर आप सबकी जाँच करा लें, 70-80% लोगों को विटामिन डी की सीवियर कमी निकलती है, कमी नहीं
1: जी,
0: सीवियर कमी।
1: डॉक्टर निर्मेश भल्ला, आपके कहने का ये मतलब है कि अगर विकल्प के तौर पर आप मांसाहारी हैं तो अनेक विकल्प हैं, और अगर मांसाहारी नहीं है, आप केवल शाकाहारी हैं, शाकाहार का सेवन करते हैं, तो भी आपके पास सैकड़ों विकल्प हैं, लेकिन आपको सही समय पर सही डॉक्टरी परामर्श, सलाह और खाद्य पदार्थों का सेवन बचा सकता है हड्डी के किसी भी रोग से। आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना कीमती समय आपने आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे डॉक्टर निर्मेश भल्ला, रिकॉर्डिंग तो किया रहा लेकिन फिर से एक बार तनी ध्यान पूर्वक सुनें कि और काका बताइन है कहा से कि महिलान के तो यही है कि घर परिवार का संतुष्ट रखो, घर परिवार का सुखी रखो, घर परिवार की सेवा भाव से सेवा शुश्रूषा करो, लेकिन आपन बिल्कुल खोए जाती हैं जब अपन टाइम टेम आत है ना, तो आई सोचती हैं कि हमारे पास तो टेम है नहीं ना। अब देखो डॉक्टर साहब इतनी सारी बात बताई कि कैसे आपका काका खाए का है, अब तो थोड़ी बात तब यहू हमऊ जोड़ दे कि आयरन और पोषण जरूरी है अपनाना, कहे से कि अगर आयरन और पोषण ना अपनाइए तो खून की कमियाँ हो सकती, और खून की कमी एक बार हुई जाती ना तो बहुत मुसीबत हो जाती, तो इका कहा जाता है एनीमिया, सुने भी हुई हो, और देश में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा समस्या मासा एक है ही जिमा एनीमिया जी का कहा जाता है। और महिलान की अगर बात करी तो महिलान मा, गर्भवती महिलान मा और किशोर व बच्चियां जौन है, लड़का है छोट छोट, इनके बहुत जल्दी खून की कमी हो जाती है, और कई बार लोगों का लगता है कि यदि शरीर बहुत अधिक कमजोर नहीं ना तो खून की कमी नहीं ना, लेकिन ये सोच सही नहीं ना,

कई जौन मेहरिया हैं बरस बरस तक, मतलब बरसा बरस तक नहीं समझ पाती हैं कि वो अनीमिया से पीड़ित हैं, यानी उनके शरीर में खून की कमी है और इनका पता हो नहीं लगता है, और धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ही समस्या गंभीर हो जाती। इसलिए कहा जाता है कि खून की कमी का यानी एनीमिया का पहचाने का है और समय रहते के उपचार कराना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो ये समझो कि शरीर में का होता है, खून की कमी मतलब कैसे हो जाती। शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती ना, जिसका कहा जाता है लाल रेड ब्लड सेल, तो ई जौन है ई कणिका अंदर से हीमोग्लोबिन नाम के एक जिससे खून बनत है ओके निर्माण करत ही। अब ये सब बातें ऐसी हैं कि विस्तार पूर्वक हम बताब ना तो आपका लगी कि और बताओ कौछो ना छूटे और बताओ, तो ई और तो हम बताइबे, लेकिन उनके साथ साथ यहू है कि अपन डॉक्टर से बात जरूर करे, नहीं तो खून की कमी का कौनो रोक नहीं सकत है। वही बात है कि हम आपका बताते हैं कि देखो ई सब खाओ वो सब खाओ, लेकिन आप जो हो कि मतलब कार्यक्रम का सुनत हुई हो, हम ही मानत हन कि आप कार्यक्रम का सुनत हो, लेकिन कभी कभी यहू होता है कि कार्यक्रम सुने हो मनोरंजन करे हो गौनाई बजी और डॉक्टर साहब की बातचीत सुने हो, और के बाद मन ही सोचत है कि अब जौन है सब सही है। तो आयरन और कैल्शियम की गोली ये आपका मिली सीएससी पे पीएससी पे, और जो नियमित प्रसवपूर्व जांच होती ये उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती जो गर्भवती हो जाती खून की कमी के दौरान। और यही लिए कहा जाता है कि जो संस्थागत प्रसव है वही आपके लिए सुरक्षित है। और जब मतलब ये कहे की बात नहीं ना कि हम आपका बार बार मतलब याद नहीं दिलावा है, हम बार बार ही कार्यक्रम के माध्यम से कहा थन कि जौन बहनी लोग मेहरिए हमरे कार्यक्रम सुन रही हैं कौनों गर्भवती हुई जाए, यानी कि जैसे महीना महीना कहा जाता ना कि चढ़ गवा है, तो तुरंत सीएससी पे पीएससी पे जाए का है और आपकी मदद करिए एएनएम बहनी आशा बहू, और आप अपन रजिस्ट्रेशन कराओ और अपन सारी जाँचें निःशुल्क करवाओ। और देखे भी हो कि आशा कार्यकर्ता जो उन्हें घर घर जाए के मेहरिन के समझौती हैं, नियमित दवाई कैसे लीन जाए, समय पर जांच कैसे करवाई जाए, पोषण के कैसे ध्यान रखे का है। कई बार केवल जानकारी के अभाव में महिलाएं दवा नहीं ले पाती हैं, जैसे फॉलिक एसिड है और ये जो लोहा जिससे शरीर में लौह तत्व बढ़त है मतलब जिससे खून के निर्माण होते हैं, आयरन की टैबलेट ये लेके सही तरीका बतावा जाता है। तो ये छोट छोट बातें हैं जिनके ध्यान रखना आप पंचे का बहुत है जरूरी है। अब गर्मी तो से तो मनाई देखो हाल बेहाल है मनाई के, बिल्कुल ऐसा लगा था कि कौनो आसपास ना बैठे और कौनो जरा सा लड़का बच्चा जैसे कौनो मेहरिया के आसपास आए के चपके लगत हैं तो मार कहाँ थी अरे दूर हटो। और कब कब तो ये होता है कि आई सख्त मेहरिया हो थी कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, रसोई सोइया में काम करें लेकिन कहा थी अपन मतलब मन से दूसरे कि अब जरा हमका हवा दे, जरा बेना हिलाए डुलाए दे, जरा बेना झुलाओ तो थोड़ा हमरे तन का जौन है वो लागे हवा। तो ऐसा ही एक गीत है कि गर्मी से जेरा है बेहाल।

0: आई गे
1: तो बिनिया डुलाए के ई जौन गौनई रही हमऊ ध्यान पूर्वक सुनत रहन और देखो स्टूडियो से मुस्की तो मारन लेकिन यहू सोच रहन कि कहीं ऐस ना होए कि पंचे अपन नाम सुने के लिए बेताब हुए कि कार्यक्रम कैस लागत है ये हमका लिखत है हमेशा ग्राम व पोस्ट ललौवा जिला लखीमपुर खीरी के पंच हैं विजयपाल यादव शुभम यादव ऋचा गुड़िया शिखा और इनके साथ राजेश कुमार और विजय पांडे इनका कार्यक्रम नीक लागत है आंगनबाड़ी सुनत है सबके साथ मिलजुल के और एक और है हमारे श्रोता पंच दुर्गेश नागनपुरे राधे श्याम नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम बाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से

लेकिन परदेश से, मतलब कि अपन स्टेट से अलग, मतलब मध्य प्रदेश के खंडवा से, ग्राम जसवाड़ी जिला। और लिखी है कि बहुत नीक नीक गाना गौनई बजौती हो, जानकारी भी बहुत उपयोगी देवती हो। सतीश मिश्रा भैया हैं उनका वो अच्छा लगा था ये कार्यक्रम। और देखा कुछ ऐसे हमारे पंच हैं जो हाथ जोड़ के नमस्कार करें हैं, बधाई दीन हैं, और ढेर सारा लड्डू लड्डू बनाए के बड़ा बड़ा भेजे नहीं मोजी मोजी माँ हैं। तो हम लड्डू थोड़ी कहा भैया, ज़्यादा मीठा वीठा खाए से वैसे ही देखो मधुमेह हो जाते। और ये हैं ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा, आशा अवनीश विनीश अक्षत गरिमा और रजनी। लेकर आते हैं कि बहुत उपयोगी जानकारी देती हो, करुण राय के कार्यक्रम जो उन्हें नीक रोचक ज्ञानवर्धक लगत है। भैया यू बताए थे कि देखो कार्यक्रम के समाप्त हुए के समय वैसे आएगा है, और आप लोग सोचे तो यू कि जवानन के लिए कार्यक्रम जल्दी से आरंभ हुए, लेकिन यू बताए थे कि गर्मी का जौन मौसम है और बरसात नगीचे है, जब बरस जाए पानी तब समझो, तो भोजन की सुरक्षा के लिए भी व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी होती। नाखून में गंदगी हो तो सफा कर ले, भोजन दूषित ना हो साफ पानी से बनाओ, और पानी मतलब जो उन साफ पानी है भोजन बनाए के समय भी और खाए के समय भी, और बार बार हाथ से पसीना के मतलब अपन फेस पे, जैसे गौनई में रहा ना कि फेस पे हाथ ना लगाओ, मतलब जब बहुत सारी बातें रही गौनई में, मज़ेदार रही गौनई, तो बार बार यार बार हाथ ना लगाओ जब भोजन बनौती है। कुछ ऐसी मेहरियाँ हैं जौन अपन आचर से जौन है थरिया पोस देती हैं, वहीं से पसीना पूछती हैं। तो बहनी देखो याद रखो कि ये सब जौन है संक्रमण के, मतलब कहा जाते हैं कि उद्गम स्थान बन सकते तुमरे अचरा बचरा यहार बहार जौन है, यान है मतलब पहले पसीना पूछती है, फिर यहार बहार अचरा मतलब छुअत वत है, यहार बहार तो जौती हुई हो ना, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वही आचर से आप सफा करे लगती हो थाली वाली। और जौन रसोई के फर्श है, खाना बनाए की मेज है, या फिर बैठ के बनौती हो, बर्तन है, चाकू है, और पानी, सब कुछ सफा होए का चाहिए, बर्तन साफ होए का चाहिए। रसोई में ललपत्ता मक्खी मच्छर ये सब कौनों ना होए का चाहिए, चूहा हुआ सूक्ष्म जीव जो उनसे मतलब भोजन खराब हो सकता है, ये सब कुछ ना होए, और साफ सुथरा भोजन पकाओ, साफ सुथरा पानी पियो, और ऐसे ही जीवन का अपन खुशहाल बनाओ। और जल्दी जल्दी पता नोट कर लो, कार्यक्रम में आंगनबाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन संख्या है 226001। अब करो अगले बुधवार के इंतजार, देवनीना सुनकर बहनी का अनुमति सभी का नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है और अब फौजी भाई सुनेंगे पत्र और ईमेल पर आधारित अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद। आप सबका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। पत्र और ईमेल पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आप सबके पत्रों और मेल को शामिल करने की कोशिश करते हैं। और ये पत्र हमारे पास आया है मोहल्ला दुर्गापुर बीसलपुर ज़िला पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्यारी बेटी प्राची वर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में कश्मीर की कली फिल्म का गीत। और ये मेल हमारे पास आया है रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा का। इसी के साथ ही ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं अनजाना फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

अगला मेल हमारे पास आया है ग्राम व पोस्ट बिरखेरा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल का, और आप सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

और ये पत्र मेरे हाथ में है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान का, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास बरेली से। आप सुनना चाहते हैं खलनायक फिल्म का गीत अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ में।

0: इस गीत के साथ ही जवानों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फौजी भाइयों, जय हिंद।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों।

अभी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: 15 मिनट होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
3: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीनी स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality

0: education reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंच

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार बिशेन से की गई भेंटवार्ता का विषय है मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक। भेंट करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में तिलहनी फसलों में जहां मूंगफली उत्पादन की योजना है तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट जमुनाबाद गोला लखीमपुर खीरी से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर पीके बिसेन साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां मूंगफली उत्पादन की योजना है किसान भाइयों बहनों की, तो क्या सलाह है?
2: किसान भाइयों को भी मेरा सादर नमस्कार। किसान भाई हमारे पहले से बहुत सारी प्रजातियों के बारे में जानते ही हैं, प्रकाश है, अंबर है, चित्रा, ये सब तो हैं हमारी, लेकिन ये पुरानी प्रजातियां थी। लेकिन अब नई प्रजातियों में अगर आप देखें तो उत्कर्ष है हमारे पास, दिव्या है, जीजे जी 31 है, जीजे जी 9 है और अवतार है। इस तरह की प्रजातियां अब इसमें उपलब्ध हैं।
1: तो इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
2: इनमें जो कुछ हमारी जो नई वाली प्रजातियां हैं, इसमें जैसे उत्कर्ष है वो फैलने वाली है, उसमें एक से दो दाने हैं। दिव्या है वो अर्ध फैलने वाली है, इसमें भी एक से दो दाने हैं। जीजे जी 31 है, ये भी फैलने वाली है। जीजे जी 9 जो नंबर है ये गुच्छेदार है। और ICG भी 93468 जिसको कि अवतार के नाम से जानते हैं, ये पछेती लीफ स्पॉट एवं रस्ट से सही सुन प्रजाति हमारे पास इस समय उपलब्ध है।
1: देख सब, खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
2: किसान भाई हमेशा ये ध्यान दें कि जो हमारा मृदा का चुनाव हो जिसमें हम ये खेती करने जा रहे हैं मूंगफली के लिए, मिट्टी का जो प्रकार है वो बलुई दोमट हो या बलुई हो या हल्की दोमट हो, और ये हमारे लिए मिट्टी अनुकूल होता है जिसमें कि पानी लगने की संभावना कम से कम होती है।
1: और जल निकास का?
2: जी हाँ, जल निकास का जरूर प्रबंध, क्योंकि ये मिट्टी हल्की होती है इसलिए पानी इसमें रुकता नहीं, और अगर रुकता भी है तो इसके लिए हमें एक उपाय कर लेना चाहिए कि पानी किसी तरीके से निकल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा कितना लगेगी प्रति एकड़, और बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन भी करना होगा?
2: जरूर करना होगा, क्योंकि हम किसान भाइयों से पहले तो मैं बता दूं कि इसका बीज दर जो हमारा लगेगा वो बीज के प्रकार या बीज का हमारा जो जिस तरह का उसका आकार प्रकार होता है उस पर आधारित होता है।
1: दाना छोटा?
2: जी हाँ, दाना छोटा है। इसके हिसाब से मैं इसको एक तरह से रेंज में बताऊंगा कि 28 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ जो गिरी दाना है ये आपका एकड़ के हिसाब से इतना लगेगा। अगर आप बोने जब जा रहे हैं तो कृपया करके बोने से पहले बीज को उपचार जरूर कर लें अपने, और बीज को उपचार करते वक्त ये ध्यान रखें कि हम कौन कौन सी दवाएं या किस तरह की चीज़ों का हम उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है थीरम, जिसको कि हम किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। थीरम का 2 ग्राम और कार्बेंडाजीम का 1 ग्राम इसको ले लीजिए, और ये 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने के लिए 3 ग्राम इन दोनों दवाओं का जो है मात्रा आपको मिला के इसको उपचारित कर लेना है। इसके अलावा मूंगफली के लिए भी राइजोबियम कल्चर आता है, तो इस राइजोबियम कल्चर को जो है आप ले लें, और एक पैकेट जो है 10 किलो बीज के लिए काफी होता है। और इसको तैयार करने के लिए आधा लीटर पानी में आप 50 ग्राम गुड़ मिला लीजिए और उसमें इसी पैकेट को आप मिला दीजिए। पैकेट को मिलाने के बाद अच्छी तरीके से उस मूंगफली के ऊपर आप छिड़क दें, इससे एक कोटिंग बन जाएगी। और पहला वाला जो शोधन होगा जो थीरम और कार्बेंडाजीम से, इसके 5 से 6 घंटे बाद ही आप उपचारित कर ले राइजोबियम से, तो इसको जो है 2 से 3 घंटे छाए में सुखा लें, या तो सुबह के वक्त इसको बुआई करें उस हमारे उपचारित करने के बाद, या जो है फिर 4 बजे के बाद शाम में करें आप।
1: और भूमि शोधन में?
2: जी हाँ, भूमि शोधन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे मृदा जनित बहुत सारे रोग आ जाते हैं, इसके लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनम या ट्राइकोडर्मा विरिडी जैविक जो पदार्थ उपलब्ध हैं,
1: फफूंदी नाशक।
2: जी हाँ, फफूंदी नाशक के रूप में है, इनका जो है 1 किलोग्राम आप ले लीजिए, और 30 किलोग्राम जो है गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद उसमें अच्छे से मिला लीजिए। ये मैं आपको एकड़ की दर से बता रहा हूँ, 1 किलोग्राम लीजिए, फिर 30 किलोग्राम आप गोबर खाद में अच्छे से मिला लीजिए, उस पर पानी छिड़क लीजिए, और उसके बाद 8 से 10 दिन उसको किसी छायेदार स्थान पर रखिए, और जब अंतिम आप खेत की जुताई कर रहे हैं उसी समय जो है आप छिड़क सकते हैं, या जब आप बुआई करने जा रहे हैं उस समय भी आप खेत में डाल सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मूंगफली में कई बार दीमक की समस्या होती है, तो इसके लिए भी कोई भूमि

0: इसके लिए भी उपलब्ध है हमारे पास बवेरिया बैसियाना के नाम से जैविक जो पदार्थ, इसका भी एक किलोग्राम वही दर होएगा, एक किलोग्राम इसकी मात्रा ले लें और 30 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला के उसको रख दें छाए में, इसके बाद फिर उसको खेतों में डाल दें तो इससे दीमक है, सफ़ेद गिडार है, इस तरह की जो हमारी जड़ की सुंडी और कटवर्म, इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बुआई में क्या बारीकी है, अंतरण क्या होगा, लाइन से लाइन की दूरी क्या होगी?
0: जी हाँ, बुआई की दूरी के लिए डॉक्टर साहब 30 से 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 10 से 20 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी जरूर रखें। इससे हमारे पौधों को अच्छा जो है एक जगह मिलेगा, स्थान मिलेगा और उनके बढ़वार में भी उनको बढ़ोतरी होगी।
1: यानी जैसी प्रजातियां अगर फैलने वाली हैं तो वो लगभग आधा मीटर
0: करेंगे, और जैसे कि हमारे गुच्छेदार है तो उसके लिए थोड़ा सा और बढ़ा ले, फिट पे रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई बार घने पौधे हो जाते हैं तो उनको क्या विरलीकरण की जरूरत?
0: जी, विरलीकरण कर दीजिए ताकि ये पौधों को बढ़वार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ज्यादा हमारे घने हो जाएंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी, उसमें दाने अच्छे नहीं बनेंगे जो है हमारे।
1: डॉक्टर साहब, मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय क्या है?
0: इसके लिए सबसे उपयुक्त समय जो है हमारा जून का अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक, ये किसान भाई हमारे जो है मूंगफली की बुआई कर सकते हैं।
1: यानी एकदम सही समय है?
0: एकदम सही समय है ये बोले
1: का, इस पखवारे में जरूर बुआई
0: जी, जी जी इस समय कर लेंगे जो है बुआई।
1: डॉक्टर साहब, मूंगफली की फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब हो, कितना हो, कैसे हो?
0: जी जी, देखिए हमारे जो मूंगफली है इसमें जो है अगर हमारे पास खाद उपलब्ध हो तो उसमें जो उर्वरक, खास करके मैं बता दूं आपको, तो डीएपी एक बोरी अगर आप एक एकड़ में डाल देते हैं तो वो हमारी फसल के लिए इतना पर्याप्त है। इसके अलावा अगर हमारे पास एनपीके हो जो 12-32-16 के नाम से आती है, उसका 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर हम करें तो भी हमारी पौधे की जो भूख है वो मिटाई जा सकती है। इसके अलावा भी मैं एक और बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जिप्सम, जिसका कि बहुत ही ये सस्ता भी मिलता है, इसका 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका उपयोग करिए, आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा बुआई के 3 सप्ताह बाद जो है आप खेत में मिला दें। इसके साथ ही बोरेक्स आता है जो कि मूंगफली के दाने के लिए और मूंगफली के जो रंग है, दाना है, या हम कहें खूंटी बनते समय इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ती है,
1: यानी क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए,
0: क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। और बोरेक्स की जो मात्रा होती है वो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 3 सप्ताह के बाद खेत में मिला दें, और इसको अच्छे से मिला के तभी आप खेत में उपयोग में लाएं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं जो मूंगफली की फसल को प्रभावित करते हैं, तो खरपतवारों का प्रबंधन कैसे हो?
0: अगर किसान भाइयों के पास अगर उपलब्ध हैं जिस तरह की गुड़ाई की अगर हमारे पास मशीन है, या क्योंकि इतनी आप उसमें जो आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहती है तो उसमें आप निकाई कर सकते हैं, वो होना चाहिए। पहला जो हमारा होता है वो 15 से 20 दिन पे और दूसरा हमारा 40 से 45 दिन पे। लेकिन कभी कभी हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है मजदूर नहीं मिल पाते या हमारे पास उस तरह का संसाधन नहीं है, तब हम जो है एलाक्लोर नामक शाकनाशी होता है जो कि 50 cc का होता है, उसका 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में आप घोल के 2 दिनों के अंदर ही,
1: इसको बुआई के तुरंत बाद,
0: बुआई के तुरंत बाद 2 दिनों के अंदर आप इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर ये दवा नहीं भी है तो आजकल हमारे पास बाजार में इमेजेथ हाइपर नाम की एक दवा आती है जिसको कि हम 10 cc का आता है, इसकी जो है 400 मिली मात्रा को आप ले लीजिए और 200 से 240 लीटर पानी में घोलिए और प्रति एकड़ की दर से बुआई के 3 दिन के अंदर या बुआई के 10 से 15 दिनों पर आप छिड़काव कर दें। इससे आपके खेतों के जो खरपतवार हैं वो जो है धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे।
1: खड़ी फसल में कौन सी खास देखभाल है डॉक्टर साहब?
0: खड़ी फसल में ये ध्यान देते रहें कि हमारे खेत में सफ़ेद गिडार एक कीट आता है वो, और क्राउन रोट, चारकोल राट, इस तरह की भी हमारे पास जो समस्याएं आती जो कि व्याधि है हमारी, इसको जो है जरूर देखते रहें। और साथ ही साथ टिक्का रोग, एक बहुत ही व्यापक ये रोग आता है, उस समय किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक दवा है जो कि हम लोग बाज़ार में भी बहुत ईजिली वो मिल जाता है, वो होता है कार्बेंडाजिम, जिसका 50% होता है WP, उसका 90 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 से 240 लीटर में पानी में घोल बनाकर आप उपयोग में लाएं तो टिक्का रोग से आपका रोकथाम हो जाता है।
1: और ये जो भी फफूंदी जनित बीमारियां हैं इनसे बचाव के लिए बीज शोधन जरूर
0: जी,
1: करें
0: जी, बहुत जरूरी है, बीज शोधन भी करें और भूमि शोधन भी बहुत जरूरी है,
1: और संभव हो तो थीरम और कार्बेंडाजिम
0: जी जी जी
1: से बीज शोधन के बाद ट्राइकोडर्मा का
0: जी, ट्राइकोडर्मा से भी आप जो है इसको उपचारित कर सकते हैं, और ट्राइकोडर्मा का अगर उपचारण कर देते हैं तो एक हमारा जो है डबल, जो इसको कहा जाए कि द्विपक्षी जो है उसका जो है रूप हमको देखने को मिलेगा जो है,
1: यानी डबल कोटिंग हो जाएगी,
0: डबल

0: रक्षा कवच सुरक्षित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9453791558।
0: डॉक्टर पी के बिसेन साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर प्रदीप कुमार बिशेन ने मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक पर जो भी जानकारी आपको दी है उसे आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर साहब से जानकारी ले रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। अमरपाल ग्राम इंदेमऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव ने सूचित किया है कि शिव कृपा देवी दिनांक 2 नवंबर 2025 से लापता हैं। इनकी आयु 24 वर्ष, कद 4 फीट, चेहरा गोल, रंग सांवला, काले लंबे बाल हैं। गुमशुदगी के समय इन्होंने फूलदार साड़ी व हरे रंग की चूड़ियां पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 8960673705। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 8960673705। उदय प्रताप पाठक निवासी ग्राम तिगाई पोस्ट फखरपुर जनपद बहराइच ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी काजल उर्फ कांति दिनांक 30 मई 2026 से लापता हैं। काजल की आयु 28 वर्ष, कद 5 फीट, रंगोरा, चेहरा लंबा है। इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9452528160। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9452528160। राम छबीले निवासी ग्राम पिपरा कमाल थाना पयागपुर जनपद बहराइच ने सूचित किया है कि सहजराम दिनांक 30 मई 2026 से लापता हैं। सहजराम की आयु 23 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इन्होंने काली पैंट, काली शर्ट व पैरों में हवाई चप्पल पहन रखी थी। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9354095062। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9354059062। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें।

कि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मिट्टी की सौंधी महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिश्चंद्र गिरी व साथी का आल्हा गायन। प्रसंग है महोबा की लड़ाई।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में आपने सुना हरिश्चंद्र गिरी व साथी का आल्हा गायन। प्रसंग था महोबा की लड़ाई। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

0: पौधरोपण करिए और भविष्य को सुरक्षित रखिए, जीवन लंबा होगा आपका, यानी प्रदूषण से मुक्त रहेगा वातावरण तो निश्चय ही जीवन लंबा होगा ऐसा माना जाता है। तो पेड़ों के लगाने की स्थिति और कटाई की स्थिति में अगर दोनों को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कोई ना कोई अध्ययन आपके यहाँ जरूर होगा, तो वो क्या है और क्या लक्ष्य रखा गया है आगे के लिए?
1: देखिए, सरकार जो कर रही है, मैं आपको बताऊं, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो हमारा फॉरेस्ट कवरेज बहुत ज़्यादा था
0: जी।
1: आज देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश है। हम हर साल करोड़ों पेड़ लगाते हैं और लगाने के बाद ये नहीं देखते हैं कि उन पेड़ों को रख रखाव कैसे हो रहा है, क्या वो पेड़ जिंदा हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर भी मेरे मन में एक दिन ख्याल ऐसा आया कि हम लोग कारों में चलते हैं, सरकारी गाड़ियों में चलते हैं या पर्सनल गाड़ी में चलते हैं, सड़क के किनारे बंधों पे पेड़ लगे हैं, सूख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, क्या हम 10-15 लीटर 20 लीटर पानी अपनी कार में रख सकते हैं क्या? और रास्ते में चलते हुए जो पौधे मुरझाए हुए हैं या सूख रहे हैं, रोक करके गाड़ी अगर उनमें डाल दें तो अच्छा होगा। तो मुझे लगता है युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई पेड़ तो सरकार ने एक बार लगवा दिए
0: जी
1: लेकिन एक इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम युवाओं को लेना चाहिए, और 2-3 साल तक अगर उन पौधों को बचा दें तो निश्चित रूप से फिर उन पौधों को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप पनपेंगे। जैसे जंगलों में कोई खाद नहीं देता, कोई पानी नहीं डालता, अपने आप जंगल में पेड़ बने रहते हैं, ऐसे ही जो हमने वृक्षारोपण किया है हो ये रहा है। अगर आप देखिए रियलिटी में तो जितने पौधे लगाए जाते हैं आधे पौधे भी सर्वाइव नहीं करते, मर
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं। तो हर साल हम कई करोड़ पौधे लगाते हैं लेकिन बचते हैं उसमें से लाखों पौधे। तो इसके लिए युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा और जन जागरूकता करनी पड़ेगी कि भाई आप लोग पौधों को बचाओ, सिंचाई करो और जानवरों को भी मत खाने दो, ऐसी भी व्यवस्था की जाए कि उनको जानवर भी ना डिस्टर्ब करें।
0: सही बात है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, विशेष रूप से युवा जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि युवाओं की बात हम लोग इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि भविष्य उनका है,
1: जी
0: उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है, आज जो किया जा रहा है तो उसका उपभोग उन्हीं को करना है, उन्हीं को जीवन जीना है अपना, तो ऐसी स्थिति में उनका दायित्व भी बढ़ता है। अब इस दायित्व को कितना वो समझते हैं कितना नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं तो समझने की आवश्यकता है, और समझ लेंगे तो बात उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और स्थितियाँ सुधरेंगी। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय सीमित होता है हमारा, इसलिए आज आपको इतने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कभी मुलाकात होगी तो अन्य विषय पर पर्यावरण से जुड़े बातें करेंगे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: जलवायु कार्य और युवाओं की पहल, इस गंभीर विषय पर चर्चा की हरिकेश बहादुर जी ने, हम विशेषज्ञ ने हमें बहुत सी अच्छी सलाहें दी और भेंटकर्ता श्री नगेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने भी इस वार्ता में वार्ता की, और इससे हमें बहुत ही आशा करते हैं कि आप सभी को और हमें भी बहुत ही प्रेरणा मिली और बहुत ही जानकारी मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक गीत का, आइए सुनते हैं गीत।

0: अच्छा आयुषी, एक बात बताओ कि
1: हम्म,
0: जब भी तुम रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां देखती हो तो तुम्हें कौन सा शहर नाम या शहर का नाम याद आता है?
1: मुझे तो फिरोजाबाद शहर का नाम याद आता है।
0: भाई बिल्कुल सही बात है। साथियों, उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है अपनी खूबसूरत कांच की चूड़ियां और अन्य कांच उत्पादों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और यही वजह है कि एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत फिरोजाबाद का उत्पाद है कांच उद्योग। लेकिन आयुषी, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें अपने श्रोताओं को ODOP योजना से परिचय करा देना चाहिए।
1: ज़रूर, एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के उस पारंपरिक उत्पाद को पहचान और प्रोत्साहन देना है जिसके लिए वो जिला प्रसिद्ध है। इस योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों तक पहुँच सके।
0: यानी कि ये योजना केवल उत्पाद को पहचान नहीं देती बल्कि लोगों के जीवन में भी नई उम्मीद लेकर आती है।
1: बिल्कुल, फिरोजाबाद इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ लगभग 400 वर्षों से कांच उद्योग फल फूल रहा है। यहाँ बनने वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। शादी हो, तीज हो, करवा चौथ हो या कोई अन्य शुभ अवसर, कांच की चूड़ियों की खनक हर खुशी को और खास बना देती है।
0: लेकिन आयुषी, मुझे लगता है कि फिरोजाबाद की

0: चूड़ियाँ सिर्फ फिरोजाबाद सिर्फ चूड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ झूमर, फूलदान, मोमबत्ती स्टैंड, सजावटी वस्तुएं, कांच के बर्तन और मोती, कई तरह के खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जिनकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी है।
1: बिल्कुल, और ODOP योजना के माध्यम से कारीगरों को नई डिज़ाइन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आधुनिक मशीनों का उपयोग, बेहतर पैकेजिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग ने उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: जी दोस्तों, तो इससे आप लोग, स्थानीय युवा भी इससे लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाज़त
1: और मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से और प्रत्येक बुधवार को शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफको। आपको बता दें कि प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान। इसके प्रायोजक हैं इफको। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

किसी ने क्या खूब कहा है, पेड़ हों तो सांसों में सुकून रहता है और अच्छे डॉक्टर हों तो जिंदगी पर यकीन रहता है। और यकीन आपको हम पर रहता है कि कार्यक्रम नई उड़ान के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारियां, वो हर एक चीज़ जो आपके लिए होती है ज़रूरी। तो कार्यक्रम नई उड़ान के साथ आरती है आपके संग, नमस्ते, स्वागत है आपका। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो है अच्छी सेहत, और अच्छी सेहत की नींव दो चीज़ों पर टिकी होती है, एक प्रकृति और दूसरा चिकित्सा। ज़रा सोचिए, अगर पेड़ ना हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाए, और अगर डॉक्टर ना हो तो उन सांसों को बचाना भी आसान ना रहे। शायद इसलिए आज के दोनों विशेष अवसर एक दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुड़े हुए लगते हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। ये दिन भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो कि लंबे समय तक बंगाल के सीएम भी रहे हैं, उनकी जयंती है। उनकी जयंती पर सभी डॉक्टरों को ये दिन समर्पित है, जो अपने ज्ञान, अपने समर्पण और सेवा भाव से हर दिन अनगिनत जिंदगियों को नई उम्मीद देते हैं। वही वन महोत्सव सप्ताह हमें याद दिलाता है कि धरती का सबसे बड़ा प्राकृतिक अस्पताल अगर कोई है तो वो है हमारे पेड़ पौधे, हमारे जंगल। शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण और हरियाली, ये सिर्फ प्रकृति की देन ही नहीं बल्कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यानी एक हमें स्वस्थ होने का रास्ता दिखाता है तो दूसरा हमें स्वस्थ रहने का आधार देता है। एक सफ़ेद कोट पहनकर हमारी ज़िंदगी की रक्षा करता है तो दूसरा हरे रंग की चादर ओढ़कर पूरी धरती को जीवन देता है। तो आइए आज अपने डॉक्टरों के प्रति सम्मान व्यक्त करें, उनके बताए गए स्वस्थ जीवन के नियम को अपनाएं और प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प जरूर करें और उसकी देखभाल भी करें, क्योंकि स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार होगा जब सेवा और प्रकृति दोनों का साथ एक दूसरे से मिलेगा। और जब दोनों का साथ होगा तो सांसें भी मुस्कुराएंगी और दिल भी गुनगुनाएगा और कहेगा लव यू जिंदगी।

0: और घबराहट को बाय बाय करने में हमारी मदद करते हैं डॉक्टर्स। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज हम मना रहे हैं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरती। और ये जो दिन है ये अपने आप में बहुत खास है, और इस खास दिन पर अगर साथ किसी डॉक्टर से जुड़ाव हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, तो फिर क्या कहने। तो डॉक्टर नारायण प्रसाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी SGPJI से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इनसे खास बातचीत नीना सोनकर जी करने वाली हैं। ऊर्जा का उत्सव किस तरह से बनेगा, कैसे होगा, फिट युवा, फ्यूचर रेडी भारत कैसे होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे इनके साथ। तो सुनते हैं ये विशेष बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी चिकित्सकों को समर्पित है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से समाज को स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे बीच चिकित्सा जगत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित हस्ती, देश के प्रख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद उपस्थित हैं। वे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SGPJIMS लखनऊ में नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रसाद ने किडनी रोग, डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय तक उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके 370 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सा जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। वे भारतीय नेफ्रोलॉजी सोसाइटी सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा चुके हैं। चिकित्सा अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सेवियर द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में भी शामिल किया गया है। आज हम उनसे चिकित्सा सेवा, किडनी रोगों की बढ़ती चुनौतियां, अंगदान, आधुनिक चिकित्सा तकनीक और युवा चिकित्सकों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, आकाशवाणी लखनऊ के इस VIP स्टूडियोज में हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।
2: धन्यवाद आपको जी इस शुभ अवसर पर बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की

0: आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस का आपके लिए क्या महत्व है?
1: जैसा आपने बताया है, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी एक उत्कृष्ट चिकित्सक के अलावा बहुत ही अच्छे शिक्षक और बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ, और जैसा हम जानते हैं चिकित्सक होने के साथ साथ वो पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनका समर्पण जो जनता के प्रति होता है वो अविस्मरणीय रहा होगा। और यही कारण है कि भारत सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, नेशनल डॉक्टर्स डे हम बोलते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और इस दिन सभी डॉक्टर्स एक विशेष रूप से कुछ CMEs, कुछ अपने सेमिनार्स का आयोजन करते हैं, एक दूसरे को डॉक्टर्स डे का विश करते हैं, और इसे बहुत ही धूमधाम के तरह डॉक्टर कम्युनिटी के लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है। यह दिन किसी भी डॉक्टर्स के लिए भूलने वाली नहीं होती है। यह लोगों को याद दिलाता है कि चिकित्सा के प्रति समर्पण के बाद लोगों में क्या रिकॉग्निशंस होना चाहिए
0: जी।
1: और भारत सरकार ने इस दिन में डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के नाम पे एक उत्कृष्ट काम करने वाले डॉक्टर्स को एक अवार्ड दिया जाता है, BC राय अवार्ड हम बोलते हैं, जो टेम्पोरली डिसकंटिन्यू किया गया और फिर से सरकार इसको शुरू करने के लिए विचार कर रही है
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आप एक वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। अपने लंबे चिकित्सकीय अनुभव में डॉक्टर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है?
1: देखिए, डॉक्टर्स के जिंदगी का जो महत्वपूर्ण जो एम होता है वो होता है अच्छा स्वास्थ्य के लिए लोगों को गाइड करना
0: जी।
1: बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते हैं हेल्थ इज वेल्थ
0: जी।
1: स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कितनी भी धन रहे, कितनी भी संपत्ति रहे, कितनी भी आपके पास रिसोर्सेस रहे, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उससे जो सुख, जो भोगने की जो क्षमता होती है, उस चीज़ों को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोगों की जिंदगी में होती है, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी प्रेरणाएँ होती है वो डॉक्टर्स समय समय से लोगों को देते रहते हैं, और हर डॉक्टर्स का अटेम्प्ट रहता है कि लोगों का हेल्थ ऑप्टिमम रहे। लोग बोलते हैं हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड इन्फर्मिटी, बट इट इज ए स्टेट ऑफ सोशल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब इसका यह है कि केवल आपको शरीर में बीमारी नहीं है, यही हेल्थ नहीं है, आपको सोशली मेंटली आपका वेलबींग सब कुछ अच्छा होना चाहिए
0: जी।
1: तभी आप स्वस्थ हैं, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हर डॉक्टर्स को रहता है, एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्थ ही उसका वेल्थ है
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जान है तो जहान है, ये मतलब सोचने की बात है कि शरीर से ही सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी इंसान को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आज के समय में डॉक्टर मरीज के बीच विश्वास को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो आपकी नज़र में जरूरी हैं?
1: देखिए, आज का समय में इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी जनरल पब्लिक तक अवेलेबल होता है। हर व्यक्ति अपने बीमारी के लक्षणों के बारे में, अपने शरीर में जो उनको लक्षण आते हैं, जो साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, उसके बारे में पढ़ कर आते हैं। आजकल लोग बहुत सारे सोशल मीडियाज पे न्यूज चलती है, उससे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन रहता है, गूगल से आप ये पढ़ कर आते हैं। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर्स की एक मजबूरी होती है, और जो बताइए अच्छी भी बात है कि अगर बीमारी के बारे में पेशेंट को कुछ पता है तो एक ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए बीच में कम्युनिकेशंस का, आपको जो बीमारी है, जो हम आपको समझा रहे हैं, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है, आपकी क्या बीमारी है, इसकी क्या इलाज है, और इलाज के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इससे क्या आपको हानि है। लोगों को दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें डॉक्टर साहब ये एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, इससे तो टॉक्सिसिटी होती है, इसके तो एडवर्स इफेक्ट आते हैं
0: जी।
1: तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो एक ट्रांसपेरेंसी बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर्स रिलेशनशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने जो अनुभव किया है कि कुछ इधर नज़दीक में अगर आप देखें तो कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी सी गैप बढ़ गई है, पेशेंट्स और डॉक्टर्स रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं कि दैट वी शुड एस्टेब्लिश
0: जी।
1: ये हमारे बीच में बहुत ही मजबूत कड़ी होती है। जब तक ये एस्टेब्लिश्ड और ये फेथ ना बढ़े तो लोगों में पेशेंट को अपने डॉक्टर्स के प्रति विश्वास कम हो जाएगा
0: जी।
1: तो ये

0: डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर आज के दुनिया में जब AI हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है
1: जी,
0: जब हर जगह इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है
1: जी,
0: इसमें एक ट्रांसपेरेंसी हमें लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आपने पारदर्शिता की बात की, अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि भारत में किडनी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और आम लोग इससे कैसे बच सकते हैं?
0: आपने सही बताया, किडनी रोग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, स्टोन की डिजीजेज हैं, सिस्टिक किडनी डिजीजेज होती है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे ज्यादा कॉमन कारण है, वो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है और इस चीजों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हर 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को माना जाता है कि वर्ल्ड वाइड क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो इन सब कारणों से उनको हो जाती है। हमें जो ध्यान देने की बात होती है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज है, इसमें अगर बहुत अर्ली फेजेज में अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं
1: जी।
0: ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं अपने श्रोताओं को देना चाहता हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है और आपको ओबेसिटीज है, आपके फैमिली में अगर किसी को किडनी की डिजीज है, तो आप समय समय से अपने पेशाब की जाँचें कराएं, उसमें देखें कि एल्ब्यूमिन की एक्सक्रीशन तो नहीं है। उसको UACR बोलते हैं, एल्ब्यूमिन यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इसको दिखाएं। अगर एल्ब्यूमिन की एक्सक्रीशन आपके पेशाब में ज्यादा है तो अवश्य आप डॉक्टर से, ये फेज होती है जहां से इलाज शुरू होना चाहिए और यहां से रिवर्सल के चांसेस हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन आए हैं, तो ये बहुत अर्ली फेजेज होती है। ब्लड प्रेशर है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रखें, ब्लड प्रेशर का टारगेट 130-80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको डायबिटीज है तो HbA1c होती है, जो एक मानक होती है शुगर कंट्रोल होने का
1: जी,
0: उसकी मानक 7% से कम होनी चाहिए। ओबेसिटीज वाले जो लोग हैं, अपने BMI को कंट्रोल करके रखें, वो 25 से ज़्यादा एशियन लोगों का BMI ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इन सब पैरामीटर्स पे अपने ध्यान रखें और अपनी फिटनेस करें। ऐसा माना जाता है कि आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम 25-30 मिनट्स का एक्सरसाइज अवश्य करें
1: जी।
0: अगर आप आदि नहीं हैं तो आप योगा जैसे एक्सरसाइज को भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपको मानसिक और फिजिकल दोनों ही चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है
1: जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने जेनेटिक कुछ बातें बताई कि अगर मान लीजिए किसी की हिस्ट्री है, घर परिवार में किसी सदस्य को किडनी की बीमारी रही हो, तो ऐसे लोगों को, मान लीजिए माता पिता में से किसी एक को भी हो, तो संतानों को अपनी किडनी की बराबर से जांच करानी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर मधुमेह है, तो ये बात और भी जरूरी हो जाती है कि हम समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लें और उनके कहे अनुसार ही जांच भी कराएं। अब जो सवाल है वो ये है कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप किडनी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, नमक मैंने कम कर दिया और शुगर मैं लेता नहीं, लेकिन फिर भी अब किडनी की तो कंट्रोल हो गया होगा। तो क्या ऐसा होता है कि मधुमेह को कंट्रोल कर लिया, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, तो किडनी की कोई डिजीज जेनेटिक है तो भी नहीं होगी?
0: डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, देखिए जो ये डिजीज है जिनको होता है, तो उनको एक बात समझना चाहिए, ये डिजीज इनके शरीर में लाइफ लॉन्ग रहेगी, इस बात का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक कंट्रोल होता है या अनकंट्रोल्ड होता है
1: जी।
0: अगर BP आपका कंट्रोल्ड है मेडिसिन से, तो ये समझिए कि BP कंट्रोल होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्लड प्रेशर ठीक हो गई
1: जी।
0: आप जैसे ही मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करते हैं, आपकी ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ने लगती है
1: जी।
0: उसी प्रकार डायबिटीज जो है एंटी डायबिटिक मेडिसिन से कंट्रोल रहती है, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो ये फिर से बढ़ेगी। तो ये कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड की बात है
1: जी।
0: डायबिटीज रिवर्सल के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन डायबिटीज कभी रिवर्ट होकर के नॉर्मल नहीं हो सकती है। रिवर्सल का मतलब है कि आपका शुगर जो है, आपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करी, आपने अपनी वजन कम करी, आपने खाने में परहेज करना शुरू किया, चीनी मीठा बंद करा, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो गई। ऐसा Type 2 डायबिटीज में बहुत कॉमन है। रिवर्सल के चांसेस एक कम होते हैं, तो इस अंधविश्वास में लोग ना रहें। जहाँ तक जेनेटिक की प्रीडिस्पोजिशन की बात है, हर फैमिली में अगर किसी को हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है,

0: तो बच्चे को होने का चांस है,
1: जी
0: उनको भी होने का चांस है। तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री वाले उनको चाहिए कि अपना पीरियोडिकली, खासकर 30 ईयर्स के बाद
1: जी
0: जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं उसका जेनेटिक रिलेशनशिप है, वो फैमिलियर हो सकते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर हो रही है तो आप अपने सतर्क रहें।
1: जी
0: अगर 30-40 साल से पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपको कोई किडनी की डिजीज़ है, आपको कोई और बीमारी है जो इंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरएल्ड्रोस्टेरोनिज्म करके बीमारी होती है, इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है,
1: जी
0: तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को और सतर्क होना चाहिए जिनको 30-40 साल से पहले अगर ब्लड प्रेशर हुआ है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सुनने वालों को बताया कि किस तरह से कंट्रोल करना है ब्लड प्रेशर को और मधुमेह को भी। और आपने ये भी बताया कि अगर दवाओं से कंट्रोल है तो वो ये नहीं माना जाएगा कि शरीर से ये बीमारियां, ब्लड प्रेशर और मधुमेह, चली गई है, ये है शरीर में। आपके कहने का मतलब है स्वतः ही इन्हें सही रखना जरूरी है।
0: अगर आप दवाओं पे हैं तो दवा से कंट्रोल करिए। कुछ चीज़ें होती है जो लाइफ स्टाइल चेंज करने से कंट्रोल हो जाती है, जैसे
1: जी
0: हमने नमक की सेवन कम कर दी,
1: जी
0: हमने अपनी वजन कम कर ली। मैंने आइडियली ऐसा है कि अगर देखा जाता है कि आपने अपने वेट को 5-10 किलोग्राम से अगर कम कर लिए हैं तो आपको 5 मिलीमीटर मरकरी का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो आप इसको समझिए कि ये आपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके कंट्रोल करी है।
1: जी
0: आप जैसे फिर से आप अपने पुराने लाइफ स्टाइल पर आएंगे तो ये बढ़ जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं। आप इन्हें कैसे दूर करेंगे, किस तरह से हमारे श्रोताओं को सहज भाषा में समझाएंगे कि अगर ट्रांसप्लांट होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर की देखरेख बहुत जरूरी है।
0: देखिए, आपने दो बातें बोली है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन।
1: जी
0: डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन हम उन किडनी डिजीज के मरीजों को एडवाइस करते हैं जिनको इंड स्टेज किडनी डिजीज हो जाती है। इंड स्टेज किडनी डिजीज का मतलब ये होता है कि अब उनको बिना, इसको एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, कि किडनी को हम आर्टिफिशियली माने डायलिसिस करके उसके चलते जो किडनी खराबी के चलते जो शरीर में यूरेमिक टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो जहर जमा हो गए हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और बहुत सारे यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं, उसको हम डायलिसिस के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो पीरियोडिकली उसको आइडियली माना जाता है कि अगर साधारण हीमोडायलिसिस आप करा रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करनी पड़ती है, 12 घंटे की डायलिसिस होनी चाहिए। इससे ये कंट्रोल रहता है, इससे आपकी ज़िंदगी चलते रहती है,
1: जी
0: जिसका जो यूरेमिक टॉक्सिन का साइड इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं आता है। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग की ज़रूरत होती है जब तक आपका ट्रांसप्लांट ना हो जाए। ट्रांसप्लांटेशन इन बीमारी का, इंड स्टेज किडनी डिजीज का सबसे अच्छी इलाज होती है। वो इलाज हो जाने के बाद आप डायलिसिस से फ्री हो जाते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है, आप एक दूसरे व्यक्ति से किडनी लेकर उस पेशेंट से में प्रत्यारोपण किया जाता है। उस प्रत्यारोपण के बाद वो किडनी फंक्शन तो करती है, लेकिन वो दवाओं के माध्यम से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है कि शरीर उनको रिजेक्ट ना करे। तो इसमें इम्यूनो सप्रेशन यूज होता है जो इन्फेक्शन के रेट को बढ़ा देता है। उसकी जो दवाओं हैं उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स खाते हैं तो वैसे लोगों को कुछ डायबिटीज और ये सब बढ़ने के डर रहते हैं, लंबे समय में उनकी ओबेसिटी होने के डर रहते हैं। तो इन सब प्रक्रिया को चेक बैलेंस में रखने के लिए आप समय समय से अपने डॉक्टर्स के कंटैक्ट में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कभी भी कोई इन्फेक्शंस हुआ तो उसको समय से हम रोक सकते हैं, तो इससे लाइफ बढ़ती है। अभी
1: जी
0: आपको बताकर खुशी होगी कि आप ऑन एवरेज एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, लाइफ
1: जी
0: स्टाइल लगभग नॉर्मल हो जाते हैं, लोग अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 85% लोग जो है ना 10 साल या उससे ऊपर की ज़िंदगी आराम से व्यतीत करते हैं, और जब 10 साल की ज़िंदगी ऊपर निकल जाती है तो बहुत सारे लोग 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक के भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट जिंदा होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को डॉक्टरी परामर्श की लगातार में जरूरत होती है, कुछ और नहीं सोचना है इसके बारे में और डॉक्टर ही जो बताए वही करना है। अब आप ये बताइए कि हम किस तरह से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए समाज में या युवाओं को किस तरह से जागृत कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं।
0: अंगदान का बढ़ावा देना एक, हमें लगता है कि एक सामाजिक कर्तव्य है लोगों का, क्योंकि आप देखें तो काफ़ी गैप है डिमांड और सप्लाई का। आजकल छोटे छोटे फैमिलीज होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं।

0: हैं जिसमें ऑर्गन डोनेशंस के लिए लोग स्वस्थ लोग उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालत में ऐसा देखा जाता है कि कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन, एक डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसका ब्रेन डेथ हो जाता है, ऐसे लोग अपने अंग को दान कर सकते हैं और एक व्यक्ति 8 अंग तक को दान कर सकते हैं, 2 किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सारे अंगों को दान कर सकते हैं और इससे इतने ही लोगों को जिंदगी मिल सकती है। इसके अलावा अपने टिश्यूज, हार्ट के वाल्व्स, कार्टिलेज, बोन्स, ये सब भी डोनेट कर सकते हैं और इससे कितने लोगों को जिंदगी मिलेगी आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है, ये सामाजिक कर्तव्य है हम लोगों का और सबको कि इसके बारे में जाने। जो लोगों के मन में जो भ्रांति रहती है कि हमारा डेथ तो अभी हुआ नहीं, हमारा हार्ट तो चल रहा है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको ब्रेन स्टेम डेथ बोलते हैं, ब्रेन डेथ बोलते हैं। ब्रेन डेथ के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहा है, अजपन हो सकता है और इतने ही लोगों का जिंदगी बच सकता है। तो हम इस चीजों को भी देखें और अदरवाइज क्या होगा कि ये जो बॉडीज है उसको जला दिए जाते हैं और सारे ऑर्गन्स राख हो जाएंगे
1: जी,
0: और इसका कोई यूज नहीं बचता।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अंगदान महादान होता है, जाते जाते किसी के जीवन को अगर आप बचाते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। अब आप ये बताइए कि SGPGI लखनऊ में, जहां पर आप नेफ्रोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और प्रोफेसर भी हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं जब ऐसा कोई क्रिटिकल मरीज आपके विभाग में पहुंचता है, तो क्या वहां विश्व स्तर की सारी सुविधाएं मौजूद हैं?
0: SGPGI का जो गुर्दा विभाग है, जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आप मान सकते हैं
1: जी।
0: इतनी बड़ी सुविधाएं इंडिया में खासकर तो कहीं अवेलेबल नहीं है, वर्ल्ड के शायद ही किसी बिरले अस्पताल में होंगे। हमारे यहाँ 125 डायलिसिस स्टेशन हैं जिस पे 2 शिफ्ट में कंप्लीट होती है और एक हाफ शिफ्ट हम नाइट में भी डायलिसिस करते हैं, तो यह मशीन फुल इंगेज रहता है। 39 किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट्स के बेड हैं, 117 हमारे जनरल नेफ्रोलॉजी के बेड हैं, 10 क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी हम लोग रन करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी है, ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक्स जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं, और पूरे इंडिया में भी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक्स नहीं होता है, जो हम लोगों के यहाँ होता है। तो यह आप किडनी डिजीज के किसी भी रोग के बारे में सोच सकते हैं, वो सुविधाएं SGPGI के अंदर अवेलेबल है
1: जी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सर्वप्रथम तो मैं सबको राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के लिए मैं सबको बधाई दूंगा और मैं जो डॉक्टर्स का जो सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटीज है उसको हमें समझने की जरूरत है, और जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप गैप जो कुछ दिनों में बढ़ी है उसको कम करने की ज़रूरत है
1: जी,
0: और दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाने की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी विश्वास को दृढ़ करें और आगे की जो सोच है कि कोई डॉक्टर्स इनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं हमें देखने को अवश्य मिलती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि कोई भी सही डॉक्टर्स आपको हर एफर्ट से ही रहता है डॉक्टर्स का कि हम अपने मरीजों के लिए बेस्ट करें
1: जी,
0: और ट्रांसपेरेंसी डेवलप करना, पारदर्शिता होना, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत करना, ये एक हमारी संदेश होगी कि ये हमारे जो मरीज हैं वो भी समझे और हमारे जो डॉक्टर्स बंधु हैं वो भी समझे
1: जी। डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, आपके बहुमूल्य विचारों और अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके विचार निश्चित रूप से चिकित्सकों, छात्रों और आम श्रोताओं को प्रेरणा देंगे। एक बार फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए हम आपका आभार दिल से प्रकट करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर नीना सुनकर और डॉक्टर नारायण प्रसाद जी की ये खास बातचीत हम सब ने सुनी और बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिला इसके ज़रिए। फिलहाल मिला है नोएडा को नया उपहार प्रगति का, और ये उपहार है नए रेल ओवरब्रिज के रूप में। करीब 2 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला ये ROB ब्रिज जो न्यू दादरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन के पास बना है, ये अभी हाल ही में जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। अब रेलवे फाटक पर

लंबा इंतज़ार, ट्रैफिक जाम से बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है, समय बचाने वाला है बहुत ज़्यादा। वैसे रास्ता आसान एक और हो गया है, जो कि 5.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर है। 608 करोड़ की लागत से ये तैयार कॉरिडोर भी जनता के लिए ओपन कर दिया गया है, और ये वो कॉरिडोर है जिसका एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे नोएडावासी, और बहुत ज़्यादा राहत देने का काम ये करने वाला है। फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के कार्यक्रम से आरती आपसे अब ले इजाज़त, तो दीजिए अनुमति आज मुझे यहीं पर। नमस्ते, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOEP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, युद्ध का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अधोरेखितवान्यत् भारतीय सेनायाः उद्देश्यं प्रविधीयुतस्य भविष्यस्य कृते सज्जीभूतस्य सेनायाः निर्माणमस्ति। सहैव यश्च प्रत्येकस्मिन् विषये सशक्तं बहुविध क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं च समर्थं भवेत्।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारिका दूतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1% AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षड्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय अद्य सर्वकारेण अनुमतिः प्रदत्ता। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.1 किलोमीटर सुदीर्घस्य कानपुर कवराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगम नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि सर्वकारेण अनुमोदितमस्ति। यत्र संरचनाः षड्मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पनाः सन्ति।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीज की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: भारतीय ऋतु विभाग अवदत् यत् आगामि दिनेषु दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृत कालः अग्रे गमिष्यति। आगामि दिनद्वयोः उत्तर प्रदेशे बिहारे उत्तराखण्डे ओडिशा प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे च प्रचण्डतः अतिवृष्टेः ऋतु विभागेन नारंगवर्णीया पूर्व संचेतना प्रसारिता। फीफा विश्वकप क्रीडायां मेक्सिको देशः अद्य प्रातः मेक्सिको सिटी क्रीडांगणे राउंड ऑफ 32 क्रीडायां इक्वाडोर देशं 2-0 पराजित्य राउंड ऑफ 16 इत्यस्मिन् प्रविष्टवान्। नॉर्वे देश अपि टेक्सास नगरे आइवरी कोस्ट देशं 2-1 पराजित्य 16वें चरणे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान।

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: पंचो जय हिंद।
4: हिमांशु भैया।
3: हाँ ओम प्रकाश भैया।
4: देखो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है।
3: बिल्कुल भैया सही बात है।
4: आज कौन कौन दिन है तो बताओ
3: भैया। आज है जो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है, कृषि दिवस है और वन महोत्सव भी मनावा जा रहा है।
4: तो भैया देखो सब जो है जितने दिवस हैं ये एक प्रतीक होते हैं अपने पर्यावरण से संबंधित या अपने जो हम उत्पादन करते हो

0: उका बढ़ चढ़ के आगे बढ़िया करे के लिए एक संदेश होता है।
1: बिल्कुल भाई, आप जैसे फलै केर बात ले लो, आप सोचो अपने जीवन में यह जो है कितना महत्व रहा थे उनका, चाहे विटामिन केर हो या कोई भी पोषक तत्व उनके कमी हो, हमका लागत है हर तरीके के फल हैं और ऐसा कोई फल ना हो जो जहिमा जौन पोषक तत्व बढ़िया ना पावा जात हो, वो हर तरीके का फायदा हो जाता
0: है। भैया देखो, जहाँ पर फल की बात हो रही है, देखो इस समय आम के मौसम चल रहा है, फलन के राजा है
1: बिल्कुल,
0: और जहाँ पर आम की बाग लगी है वहाँ तो हम सबका आम मिल रहा है, लेकिन अब हम लोग अगर बाग न रोपे तो आगे आवे वाली अपनी जो पीढ़ी है उनका आम ना मिल पाई।
1: बिल्कुल भैया, और बहुत बढ़िया समय आएगा वह है, तो जो उन्हें अपने पंच बहन के यहाँ, किसान बहन के यहाँ बढ़िया वृक्षारोपण करे है, बाग लगावे को है, जिनका लगावे को अपन तैयारी कर चुके हैं हर तरीके के,
0: बस अब जरूरत बात ये है कि अपने निकट के उद्यान विभाग से या जो नर्सरी है जहाँ
1: बिल्कुल
0: पूरी तरीके से सर्टिफाइड है,
1: हुआ
0: हाँ। की नर्सरी से पौध ले लें
1: हाँ।
0: और अपने जो है वर्षा होने के बाद जो है बैठाए थे अपने।
1: बिल्कुल भैया, कोशिश करें कि अपने आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र है या आप बताए उद्यान विभाग है, हुआ जाके जानकारी कर ले कि भैया हमारे क्षेत्र में यहाँ ई फल के कौन वैरायटी बहुत ज्यादा सफल रही,
0: एकदम
1: वही का अगर रोपित करते हैं वृक्ष तो आगे चल के उनका बहुत ज्यादा लाभ मिले।
0: और देखो आज कृषि दिवस भी है।
1: हाँ भैया,
0: भैया कृषि दिवस अपने किसान पंजन के लिए एक बहुत बढ़िया दिवस के रूप में हम लोग समझे थे का।
1: बिल्कुल,
0: है कि अपने किसान पंजन की ही मेहनत है जो अपने भारत देश का आर्थिक उन्नत में आगे बढ़ाए रहा।
1: हाँ हाँ,
0: तो अब जरूरत ये बात की है कि अगर अपनी खेती का करक है तो उसका व्यवसायिक दृष्टि से उनका खेती करक है।
1: बिल्कुल भैया, और अपन किसान भाई वही का अपना ही हो रहे हैं। अब है हम ख्याते गांव के यहाँ गए रहन तो देखे रहन अपन किसान भाई, देखो अब ड्रोन से नहीं देखो कोई छिड़काव करे बहुत बढ़िया करते हैं, और कोई कटाई छटाई या वो है तो अब यू ने की बहुत ऊपर तक आदमी चढ़त जा रहे हैं। ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिनमें नुकसान कम होते हैं और
0: फायदा
1: काम हो जाता है।
0: यानी कुल मिला के बात यह है कि अपनी खेती में यहाँ यंत्रीकरण जो होगा है,
1: नए
0: नए यंत्र आए गए हैं, उससे अपनी खेती आसान हो गई है।
1: और सबसे बड़ी बात भैया यू है कि सरकार उनका बढ़िया सहयोग भी कर रही है,
0: अनुदान दे रही है, और अनुदान की वजह से तमाम छूट मिल जाती है।
1: बिल्कुल,
0: और अपने जितने पंच हैं जो सीमांत किसान है या जो FPO बना है उनके माध्यम से नए नए कृषि यंत्र के माध्यम से नई खेती कर सकता है।
1: बिल्कुल भैया,
0: और भैया देखो साथ साथ जो वन महोत्सव शुरू होगा है, एक वन महोत्सव का एक उद्देश्य ये है कि अपने धरा पर जितने वृक्ष हैं उनकी एक उनका जो क्षेत्रफल कम हो रहा है उसका फिर से उतना बढ़ावा जाए, काहे कि आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो जहां शहरीकरण बढ़ रहा है वहां प्रदूषण की संभावना या समस्या शुरू हो जाती है, तो वो प्रदूषण की समस्या का खत्म करने के लिए अपने विरवाही जो है ऐसे सक्षम है जो अपने प्रदूषण का खत्म कर सकते हैं, खासतौर पर वायु प्रदूषण।
1: हाँ भैया, काहे का मतलब यू है एक बिरवा जरूर लगाओ वही का देख रेख अच्छे से करो
0: एकदम। और यही सब काम यहाँ अपने किसान पंच हम लोग लगे हैं, और अपने किसान पंजन की ये मेहनत का यहाँ अपनी जो सरकार है वो पूरी तरीके से सराहना करती है।
1: बिल्कुल,
0: और यही पाए एक सम्मान के रूप में यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी चला रही है, और उसके माध्यम से अपने पंचन के यहाँ साल में यहाँ 3 बार जो है 2-2 हजार रुपए की किस्तें मिलती है। देखो जो रुपया मिलता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम किसान पंचन की जो सम्मान है वो अपने भारत सरकार का रख रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो देखो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका उपयोग हम पंचन का करें चाहिए, लेकिन आज की जब बात की जाए तो आज विशेष दिन है अपने पंचन के लिए भी, चाहे कि अपने पंच जो है अपनी समस्या के समाधान अपने स्टूडियो में बैठे जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो आज के विशेषज्ञ के परिचय कराए दो।
1: भैया आज अपन विशेषज्ञ आ चुके हैं जो हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला भैया, प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवाड़ी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ,
0: और अपने कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया,
1: और आज का विषय है भैया फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, फलदार पौधों की सघन बागवानी, खरीफ में सब्जी उत्पादन और फूल उत्पादन।
0: तो इन विषयों पर जो है कोनो समस्या है या कोनो जिज्ञासा है या कोई जानकारी चाहते हैं तो अपने स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से फोन से बात कर सकते हैं। अपने स्टूडियो के फोन नंबर वही पुरान वाला है, नहीं फिर भी बता दी 0522-2238-825 फोन नंबर है, और अपने पंचन से निवेदन है जो विषय बताए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न करें और उनके समाधान प्राप्त करें।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो चला जाए बैठक में।
2: धन्यवाद हिमांशु, ओम प्रकाश भैया, नमस्कार किसान भाइयों बहनों, हर बुधवार की तरह एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला साहब जो प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन के हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से

0: हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में आपका।
1: धन्यवाद राय साहब, सभी किसानों को मेरा शुभ शुभ संध्या।
0: अब से लेकर के 7:20 तक आप हमारे साथ होंगे स्टूडियो में, और लगातार किसान भाइयों बहनों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, और जो किसान भाई बहन नंबर नहीं नोट कर पाए उनको बता दें कि आज का फ़ोन इन का नंबर है 0522-223-8825, यानी 0522-228-825। डॉक्टर साहब आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है, और आज से वन महोत्सव भी शुरू हो गया है, और आज कृषि दिवस भी है, अषाढ़ चल रहा है, तो खेती का काम भी अषाढ़ यानी किसानी कैलेंडर की भी शुरुआत है। तो और इस बीच में किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो,
2: हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते भैया, अपना नाम बताएं।
2: डॉक्टर साहब विजय बहादुर सिंह पोखरा हैदराबाद चीनी मिल बाराबंकी से बोल रहे हैं।
0: बहुत स्वागत है विजय बहादुर सिंह भैया, आप पहली बार लगता है फोन किए हैं क्या?
2: नहीं डॉक्टर साहब, आपसे कई बार बात हो चुकी है। डॉक्टर साहब हमारे बेल के पेड़ है पांच छह,
0: हाँ,
2: उसमें जो है ऊपर ही रहते हैं, बड़े होते हैं कुछ, जहाँ कालापन हो जाता है उसके बाद सड़ जाते हैं।
1: देखिए सबसे पहली बात यह है कि बेल में ये समस्या आती है, बेल में ये समस्या आती है, और कई बार हम लोगों को ध्यान
0: रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है कि बेल में भी कई बार ये दिक्कत आती है, और ज्यादातर ये फल गिरने की समस्या जाड़े में रहती है, उसपे सूट जो होती है, जो शाखाएं होती है तो काली पड़ती है, और काली पड़ती है पत्तियां, काली पड़ती है बाद में फल गिर जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कुछ तो हमारी ऐसी किस्में हैं जिनमें कि ये समस्या नहीं रहती, क्योंकि ठंड के प्रति जो है कुछ वैरायटीज में ज़्यादा गिरती हैं, जैसे B1 B2 में ज़्यादा गिरती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी किस्में हैं जिनमें बिल्कुल नहीं गिरती हैं, अब ऐसी किस्में भी हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन प्रयास ये करें कि जाड़े, पहली बात तो बोरान का एप्लीकेशन करें जो भी हमारे डालते हैं, और साथ ही साथ जो थोड़ा सा जो है क्या नाम अचानक ठंडा गर्म होता है जो पानी में
0: परिवर्तन, जो
1: क्योंकि बरसात के बाद एकदम से कोई पानी देता नहीं है, तो थोड़ा सा अगर नमी बनी रहे उसका भी फर्क पड़ेगा। मल्चिंग करें पेड़ों में, बोरान का एप्लीकेशन करें, और जब आपका बरसात खत्म होता है उसके बाद एक दो बार 10-15 दिन के अंदर पर फंजीसाइड का स्प्रे कर दें।
0: अच्छा, यानी फफूंदी,
1: तो कई बार फफूंद जो है क्या नाम प्रभावित करती है उसको, तो आप जो है क्या नाम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसकी स्प्रे कर दें।
0: बहुत धन्यवाद विजय बहादुर सिंह भैया पोखरा बाराबंकी से। डॉक्टर साहब क्या बोरान की कमी से ही फल गिरने की समस्या होती है?
1: कई बार क्या होता है बोरान की कमी से फल हल्का सा क्रैक होता है
0: जी,
1: क्रैक होने के बाद उसके अंदर सड़न शुरू हो जाती है, वो फल गिर जाता हाँ फफूंद, क्योंकि बेल में ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए जब आप बेल तोड़ते हैं अगर उस समय मौसम बदली वाला है
0: जी,
1: तो फल को बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत जल्दी सड़ जाता है,
0: यानी फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप होता
1: बहुत
0: है,
1: बढ़ जाता है।
0: एक दूसरे किसान भाई टेलीफोन लाइन पर है। हेलो,
3: नमस्कार डॉक्टर साहब,
0: ये विपिन कटारे सागर मध्य प्रदेश के हमारे जागरूक किसान है, एक सवाल पूछिए।
3: जी बिल्कुल, सवाल एक ये सर, गोभी की नर्सरी लगाना चाह रहे हैं, अभी नहीं लगाई है तो उसके बारे में जानना था, और अभी मानसून तो आ ही चुका है, अभी से बारिश भी हो रही है, तो पिछले साल सर बहुत ज्यादा खराब भी हो गया था अधिक पानी के कारण, तो ऊंचाई वाली जगह पे तो लगाते हैं, लेकिन और क्या विशेषता?
1: देखिए बरसात में नर्सरी डालने का मतलब है एक तो ऊंचाई पर डालें, दूसरा बात बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा से उसको ट्रीट कर लें, मिट्टी को भी और बीज को भी ट्रीट कर लें, और थोड़ा सा पानी अगर ज्यादा हो तो उसको कुछ ऐसा करें आप लो टनल टाइप की बना के बचा लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप नर्सरी बड़े अच्छे से बचा सकते, कभी कभी जब ज्यादा पानी बरसता है ऊंचाई पर और मिट्टी में थोड़ा अगर भारी हो तो बालू या उस तरह को मिला लें जिससे पानी ड्रेन कर सके उसको
0: जी,
1: इसका ध्यान रखेंगे फिर कुछ नहीं होगा।
0: और लो टनल पाली हाउस जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ऊंचे स्थान पर ही नर्सरी डालें जहां से जल निकासी सुविधाजनक से हो जाए। बहुत धन्यवाद विपिन कटारे सागर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर साहब हम लोग लगातार फोन आते रहेंगे किसान भाइयों बहनों से, और बीच बीच में हम लोग आपस में भी संवाद करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है और किसान की आमदनी बढ़े, पोषण सुरक्षा बढ़े, इसके लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे?
1: देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कहते हैं कि फल और सब्जियां मिलाए कि एक किसान को कम से कम एक व्यक्ति को 400 ग्राम खाना चाहिए, जिसमें से कम 160 ग्राम फल जरूरी है।
0: हाँ।
1: हमारा फल का उपभोग पहले से काफी बढ़ा है, लेकिन मैं बताऊं कि आने वाले समय में हम लोगों की डाइट ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है।

0: गेहूं और चावल बेच उसको चेंज होने की जरूरत है, फलों का सेवन बढ़ाने की जरूरत
1: है। एक किसान भाई इस बीच टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर साहब। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ भैया, अपना नाम बताएं, कहाँ से?
2: जी विवेक तिवारी, कानपुर नगर से।
1: बहुत स्वागत है विवेक तिवारी भैया, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं और अपना गांव और ब्लॉक भी बता दें।
2: मेरा गांव है उत्तरीपुरा तहसील बिल्लौर।
1: बहुत स्वागत है, क्या सवाल है?
2: सवाल ये है कि हमने गुड़हल का लाल फूल वाला पेड़ लगाया है, तो उसमें सफेद सफेद कीड़ा लगा हुआ है।
1: हाँ,
0: सफेद सफेद कीड़ा जो है, कई बार उसमें स्केल इंसेक्ट या गुजिया लग जाती है
1: जी, मिलीबग का प्रकोप,
0: मिलीबग
1: मिठास के वजह से।
0: वो उसके लिए, उसके लिए देखिए सबसे अच्छा चीज, अगर आपके पास एक दो पौधा है तो सबसे अच्छा है जो साबुन का घोल होता
1: जी,
0: है
1: नीम के साबुन का,
0: नीम आयल को साबुन के उसके साथ मिला लेंगे तो अच्छे से घुल जाता है, उसको कर दें।
1: डॉक्टर साहब, अगर नीम का साबुन बाजार से खरीद लें और उनका भी घोल बना के छिड़काव कर,
0: उसका भी छिड़काव, मैं आपको सिंपल सा साबुन का जो आप कपड़े धोते हैं उसको भी कर देंगे तो उससे ठीक हो जाएगी। कई बार इंसेक्टिसाइड इफेक्टिव नहीं होते, ये इफेक्टिव होती है। नीम का तेल साबुन के घोल के साथ शैम्पू के साथ मिलाते हैं, उससे आराम से वो मैनेज कर सकते हैं। बाकी लोग क्लोरपाइरीफास स्प्रे करते हैं, कर सकते हैं आप, लेकिन हो सकता है एक दो या तीन बार करना पड़े। ध्यान रखिए तीनों चीजों में,
1: सबसे अच्छा साबुन से शुरुआत करिए। धन्यवाद विवेक तिवारी भैया, उत्तरी पूर्वा कानपुर नगर से, बिल्लौर से। आप अपने गाँव में किसान रेडियो क्लब जरूर बनाइए और अपने गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम हेलो किसान सुनवाइए। अगर उनकी भी खेती किसानी बागवानी और पशुपालन से जुड़ी समस्या है तो हेलो किसान तक जरूर पहुंचाइए। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और लाइन पर हैं। हेलो
3: हेलो
1: भैया, नाम बताएं। हेलो
3: किसान,
1: अच्छा शिखा यादव, देखिए कितने जागरूक किसान रेडियो क्लब ललुहा लखीमपुर खीरी का क्लब कितना मजबूत है। शिखा यादव, क्या सवाल है?
3: ये है सर, अमरूद के दो पेड़ लगे 5-6 साल के हैं।
1: हाँ,
3: उसमें फल तो अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, पीले भी हैं।
1: हाँ अच्छा, कीड़े हैं,
0: देखिए अब मैं बता रहा हूँ,
1: बड़ा जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी थी उस विषय पर सवाल कर दिया शिखा यादव ने।
0: देखिए शिखा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरसात की फसल होती है उसमें कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा रहती है,
1: फल मक्खी की
0: समस्या रहती है। और इस समय जो है जो छोटे छोटे फल लगे होंगे हरे हरे, कई बार आप देखिएगा, अगर आप कर सके तो आने वाले समय में जो बरसात में सबसे अच्छा रहता है, छोटे छोटे बैग आते हैं, कपड़े के भी आते हैं, जैसे आप सामान खरीदते हैं जो कपड़े वाला जो सफेद सफेद देते हैं बैग, उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, वो बैगिंग कर दें उन फलों,
1: यानी कागज का ही हो,
0: कागज का हो या उसका कपड़े का आता है, पॉलीप्रोपाइलीन टाइप का भी आता है, वो जो पॉलीप्रोपाइलीन टाइप का भी आता है, बटर पेपर का भी आता है बैग, और जो है क्या नाम, जो आपका सामान्य जो सामान खरीदते हैं उस पर, उससे क्या होता है कि फल मक्खी बैठ नहीं पाएगी उस पर, अपना वो अंडा नहीं दे पाएगी, तो आपके बरसात के फल अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं,
1: फल मक्खी ट्रैप
0: लगाते हैं। तीसरी चीज, अगर आप गुड़ का घोल बना के उसमें थोड़ा मेलाथियन मिला के जगह जगह कहीं कहीं स्प्रे कर देंगे तो
1: अमरूद के चारों तरफ,
0: हाँ अलग स्प्रे कर देंगे तो उस पर वो आएगी, बैठेगी, मर जाएगी। फल मक्खी को अगर बचा लेंगे किसी तरह से तो आपके अमरूद अच्छे हो जाएंगे, और बैगिंग भी बहुत जरूरी है।
1: बहुत धन्यवाद शिखा यादव, किसान रेडियो क्लब ललुहा लखीमपुर खीरी से। और अगले किसान भी लाइन पर हैं डॉक्टर साहब, आज लगातार किसान भाई लगे हुए हैं।
4: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, ये संतोष कुमार मौर्य हैं, हरदोई के किसान, क्या सवाल है आपका?
4: सर मेरा ये सवाल है, मैं लिप्टिस की बोना चाहता हूँ, तो इसमें क्या बहन सही समय है क्या?
1: लिप्टिस बोना नहीं, लगाना चाहते हैं, रोपना चाहते हैं।
4: नहीं, बीज लगाएंगे वो बहेंगे फिर लगाएंगे उसके बाद।
1: अच्छा, नर्सरी डालना चाहते हैं।
0: आप डाल सकते हैं, डाल सकते हैं,
1: एकदम
0: समय आ रहा है, बिल्कुल सही समय आ रहा है,
1: एकदम सटीक समय।
0: हाँ, बस ये देखिएगा कि अच्छी किस्म का बीज, अच्छी जहाँ प्रमाणित, जहाँ अच्छी नर्सरी से ही लें बीज,
1: या वन विभाग से लें
0: सबसे अच्छा रहेगा,
1: या जो कृषि विश्वविद्यालय का कृषि वानिकी विभाग,
0: हाँ वो कृषि वानिकी विभाग के माध्यम से लें तो आपको अच्छी किस्म का बीज मिलेगा, क्योंकि यूकेलिप्टस में भी ऐसी प्रजातियां
1: फास्ट ग्रोइंग
0: जो कि फास्ट ग्रोइंग भी है, और दूसरी चीज जो है थोड़ा सा कम पानी में भी अच्छी चलती है, इसका भी ध्यान रखते हैं।
1: बहुत धन्यवाद संतोष कुमार मौर्य हरदोई से। डॉक्टर साहब, हम लोगों की बात चल रही थी।

0: कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है, एक जमाना था कि आधा खेती आधा बारी, क्या आज फिर उसकी जरूरत आ गई?
1: आने वाले समय में बहुत जरूरी है, केवल गेहूं धान से काम नहीं चलेगा, जब तक हम फसल विविधता के द्वारा फलों का समावेश, सब्जियों का समावेश, ऐसे पौधों का समावेश जिससे कि आपके जमीन की उर्वरता भी बनी रहती है, तब तो हमारी खेती वास्तव में लाभकारी होगी।
0: फूल, फूल उत्पादन भी,
1: फूल उत्पादन में तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, अगर आप शहर के आसपास हैं कहीं भी तो बहुत से सारे फूलों को, कुछ लोग गेंदा की खेती करते हैं, कुछ लोग गुलाब की खेती करते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि ऐसे हैं लोग बानिकी के पेड़ों के बीच में, एक किसान यहाँ मलियाबाद में ऐसे हैं जो बानिकी के पेड़ों के बीच में ट्यूबरोज की खेती करते हैं और बड़े आराम से वो एक बार बो देते हैं, फुर्सत होती है आराम से, ट्यूबरोज रजनीगंधा की,
0: अच्छा रजनीगंधा,
1: तो उसको आराम से बेच लेते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, लेकिन बहुत अच्छे से किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो,
2: हेलो, हाँ सर
0: भैया, अपना नाम बताएं।
2: मैं बबलू यादव, मोहनलालगंज ब्लॉक ग्राम धनवासन लखनऊ से।
0: बहुत स्वागत है बबलू यादव भैया, आज क्या सवाल है आपका?
2: डॉक्टर साहब, मैं आम की बात के लिए तैयारी करना और अभी जुलाई में या अगस्त में लगाए डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल सही बात,
0: बहुत सटीक सवाल है,
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत जल्दी तुरंत जुलाई में नहीं लगाना चाहिए बगीचा,
0: थोड़ा तर हो जाए,
1: क्योंकि जमीन जब गर्म होती है, इतनी गर्मी हुई है अभी तक, जब तक वो अच्छे से संतृप्त ना हो जाए पानी बरसात से, तब तक जुलाई के अंत में या अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक में,
0: यानी 15 जुलाई के बाद ही तैयारी।
1: हाँ बिल्कुल सर।
2: डॉक्टर साहब, मैं आम की पौध लूं कहां से भाई?
1: आम की पौध आप हमारे संस्थान में, केंद्रीय उप बागवानी संस्थान की पौधशाला से लें, और आप जो है कहना, या अगर आपको, हाँ क्योंकि आप लखनऊ में है, रहमान खेड़ा से लें, आपके पास तो सबसे, आप सबसे अच्छा तेलीबाग कैंपस भी आपके पास है, मोहनलालगंज से पास में है, वहाँ संपर्क रखें जी।
0: बहुत धन्यवाद बबलू यादव भैया, धनुआसाण मोहनलालगंज लखनऊ के जागरूक किसान है, और अक्सर बस ये है कि अपने गांव में किसान रेडियो क्लब बनाइए, और गांव के सभी किसान भाइयों बहनों को कार्यक्रम जरूर सुनवाइए। देखिए, एकता में ही शक्ति
1: है।
0: और डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अंतराल है, उसके बाद कार्यक्रम के अगले चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस।

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: कार्यक्रम हेलो किसान के दूसरे चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। आज हेलो किसान के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला साहब, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं फसल उत्पादन के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से। डॉक्टर साहब इस चरण में भी आपका स्वागत है, और एक किसान भाई काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं लाइन पर। हेलो।
2: हाँ नमस्ते सर।
1: नमस्ते भैया, नाम बताएं पहले।
2: सर मैं गंगाधर हरियापुर बिस्वा सीतापुर से बात कर रहा हूँ।
1: गंगाधर भैया बिस्वा कौन सा गांव है
2: जी सर?
1: कौन सा गांव है आपका?
2: ये सर ग्राम हरियरपुर जमरखा पड़ता है, बिस्वा सीतापुर।
1: बहुत स्वागत है गंगाधर भैया, क्या सवाल है आपका?

0: महोदय, कई बार हम पेड़ वहाँ मलियाबाद से मंगवा रहे हैं तो सर कुछ पेड़ में ऐसे हैं तो उसमें सर फल नहीं आ रहे हैं, और कुछ पेड़ जो है कहा जाता कि जो है लंगड़ा है या फिर दशहरी, उसके बाद में दूसरा पेड़ निकल गया है, तो उसके बारे में क्या करें, दूसरा पेड़ लगाए या फिर
1: क्या प्राइवेट नर्सरी से आपने लिया है या संस्थान की? हेलो,
0: आम का पेड़ है?
1: नहीं, प्राइवेट नर्सरी से आपने लिया है, उद्यान विभाग से लिया है या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान से लिया है?
0: नहीं सर, प्राइवेट नर्सरी से लिए थे, जानकारी नहीं थी।
1: यही तो ठोक बजा करके ही, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से अनुमोदित नर्सरी है वहीं से लेना। डॉक्टर साहब क्या करना?
2: ये बिल्कुल आपकी सही बात है, कई बार ये दिक्कत आ जाती है प्राइवेट नर्सरी में, कई बार हम लोगों को सही चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हम लोग प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है या जो प्रोजनी आर्चर्ड, वहाँ पर भी एक सरकार का है
1: उद्यान विभाग,
2: वो अदरवाइज क्या होता है, कई बार लोग वो बाद में निकलता है, 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो किस में, वो जो हम चाह रहे थे वो नहीं है, ये दिक्कत आती है। लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, देखिए, और अगर नहीं हो तो कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं माली की मदद से, आप अगर पेड़ बड़ा हो गया हो तो उस पर कलम बनवा सकते हैं, आप जो चाहें
1: या डॉक्टर साहब
2: हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं,
1: या डॉक्टर साहब खुद प्रशिक्षित होकर के
2: बहुत अच्छे से कर
1: क्या सकते? प्रशिक्षण आपके यहाँ उपलब्ध?
2: प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ मिल जाता है। आप समझते हैं, पुराने पेड़ों को, देसी पेड़ों को, जो खराब पेड़ होते हैं उनके ऊपर भी कलम बांध के हम उनकी किस्मत बदल देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो भी ऐसे पेड़ भी बनाए गए, जहाँ भी हमारे मंत्री जी आए थे, और एक पेड़ पर हमारे यहाँ 240 किस्में बांधी गई हैं
1: आपके संस्थान में।
2: हाँ, हमारे संस्थान में भी बांधी गई हैं। तो इस तरह से आप, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में आप ध्यान रखें, कहीं जहाँ से विश्वसनीय जो पौधशालाएं हैं वहीं से पौधे लें।
1: बहुत धन्यवाद गंगाधर भैया, हरिहरपुर बिस्वा सीतापुर से। आप अपने गांव में किसान रेडियो क्लब जरूर बनाइए, और जो सवाल हो जरूर हेलो किसान में पूछिए। एक किसान भाई लाइन पर और हैं डॉक्टर साहब। हेलो,
0: हेलो
1: भैया, नाम बताएं। नाम एक बार फिर बताएं भैया, अपना नाम बता दें।
0: रामदास वर्मा।
1: अच्छा, रामदास भैया, बहुत स्वागत है, सवाल पूछें।
0: हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि रहमान खेड़ा से हमें जैसे बेल है, बैर है, अमरूद है, कम से कम 5-5-6 पेड़ लेना चाहते हैं
1: जी,
0: वहाँ से मिल जाएंगे सर?
2: कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे। आप किसी से करके ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते
0: हैं। आ रही है
2: ऑनलाइन, आप कंप्यूटर के माध्यम से भी किसी को बताएंगे तो अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो हमारा नंबर बताएंगे भी राय साहब, तो उनको भी आप लिख लीजिए। हमारे यहाँ नर्सरी से पौधे 5-5-6 पौधे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। जुलाई अगस्त में आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि 15 जुलाई के बाद, क्योंकि जो पहले से अप्लाई करते हैं उनको पहले मिल जाता है, फिर बाद में और जो लोग आते हैं 5-5-6 पौधे मिलने में दिक्कत नहीं आती।
1: आप केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की जो वेबसाइट है उस पे ऑनलाइन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी मांग पत्र भर दें। और डॉक्टर साहब का नंबर है, इनके संपर्क में रहिएगा, ये आपकी मदद करेंगे, आपको जो भी पेड़ चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। बहुत धन्यवाद रामदास वर्मा भैया। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम की तुड़ान हो रही है, तो वो मार्केटिंग अच्छी हो उसके लिए भी तो कुछ कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सही बात है, इस समय आम की तुड़ाई चल रही है और दशहरी धीरे धीरे पानी बरसने के साथ कम हो रहा है, लेकिन लंगड़ा चौसा सभी का समय आ रहा है। तुड़ाई में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जहाँ तक संभव हो आम को डंठल के सहित तोड़ें, तोड़ने के बाद कम से कम 1 सेंटीमीटर डंठल छोड़ते हुए उसको उल्टा के रख दें, जिससे कि चेप निकल जाए, चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर आप अच्छे से पैकिंग करके आप बहुत अच्छा दाम पा जाते हैं। अब तो लोग इतने जागरूक हो गए,
1: ग्रेडिंग और पैकेजिंग महत्वपूर्ण है।
2: ग्रेडिंग पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब पैकेट में कोई भी चोट वाला आम रख देते हैं तो उसकी वजह से और
1: सड़न हो जाती
2: है, धीरे धीरे काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं। जो लोग इस बार आम के फलों में बैगिंग किए थे उनके आम की कीमत सब लगभग
1: 2-3 गुना
2: ये हो रही, जो 400 की पेटी जाती थी
1: उसकी चमक अलग है,
2: चमक अलग है,
1: क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है,
2: वो बहुत अच्छा है, चोट भी नहीं पहुंचती है, बैगिंग होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का आम हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि जब जहाँ फलत टूट रही है तो टूटने के बाद तो फसल, जो भी आम के वृक्ष होंगे वो भूखे हो जाएंगे।
2: बिल्कुल सही बात है, जैसे ही हमारी तुड़ाई शुरू हो जाएगी, तुड़ाई जब ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद बिल्कुल सत्य बात है कि किसान को अपने, पहली बात तो एक

0: किसी प्रूनिंग भी करनी चाहिए,
1: साफ सफाई,
0: मतलब जहाँ वो डंठल जो होता है, डंठल जो आप तोड़ लेते हैं लगा रहता है, हाँ? वो न लगा रहे, इसके थोड़ा नीचे से अगर प्रूनिंग कर देंगे तो अच्छा।
1: लेकिन काम तो कठिन है।
0: काम कठिन है, लेकिन आम्रपाली इन सब किस्मों में बड़ा अच्छा असर पड़ता है। आम्रपाली में
1: तो क्या उसके लिए हंसुआ बांध के लग्गी में
0: हल्का सा करके उसके थोड़ा नीचे से कर दें, और एक फंजीसाइड का स्प्रे भी करें जब आप कटिंग करेंगे, उसके कॉपराक्सी क्लोराइड का स्प्रे मार दें। दूसरी बात, कोई कीड़ा उड़ा अगर हो कहीं, जाला कीट या वो, तो
1: टेंट कटर
0: लैम्डा साइलोथ्रिन का स्प्रे जरूरी है, 1 ml का
1: जी।
0: कीड़े और ये दोनों इस समय ध्यान रखने की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़े हैं इस बीच। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ, श्रावस्ती से अपना नाम बता दीजिए।
2: हाँ, ग्राम ग्राम विकास जिला हरदेव से अमरदीप बोल रहे हैं।
1: अमरदीप
2: जी,
1: सवाल पूछिए अमरदीप।
2: हमारा कनाल का पौधा है,
1: हाँ,
2: उसमें फूल आते हैं और फूल गिर जाते हैं।
1: कई साल का पेड़ है आपका?
2: 2।
1: अच्छा, 2 साल का, तो जल्दी फूल आ रहा है डॉक्टर साहब।
0: अनार का पौधा है,
1: हाँ।
0: देखिए, अनार में के पौधे में फूल तो मान लीजिए ठीक है आ जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अनार के पौधे में अभी छोटी स्टेज का पौधा है। पहली बात तो, हेलो, आवाज आ रही है?
1: रेडियो सेट पर सुनिए।
0: अगर आप जो है अनार का पौधा जब लगाते हैं, पहली बात शुरू में ही, पहली बात किस्म कौन सी लगाए हैं, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सी किस्म है। देसी टाइप का हो सकता है, भगवा या अच्छी किस्म का हो सकता है, जहाँ से भी आप लाए होंगे, तो ध्यान ये रखना चाहिए शुरू से कि उसके 2-3 स्टेम नीचे से चलने दें, बहुत सारा झाड़ी नुमा ना होने दें पेड़ को
1: जी।
0: दूसरी बात, जब फूल आता है, फूल के बाद ही उसमें एक कीड़ा लगता है।
1: अच्छा,
0: और वो कीड़ा ऐसा अनार बटरफ्लाई ऐसी लगती है कि उसी समय अगर आपको लगता है कि फूल में हमारा कीड़े की वजह से भी बाद में नुकसान हो सकता है, तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने में कोई बुराई नहीं,
1: यानी सुरक्षात्मक
0: छिड़काव कर दें उसको, उस समय से तो आपको लगेगा कि हाँ फल लगेगा, फल जैसा आएगा उसके हिसाब से आप आराम से उसका केयर करिए, खाद पानी दीजिए, तो आपको बचा लेंगे। हालांकि नॉर्थ इंडिया में आम अनार में काफ़ी समस्याएँ आती हैं, बरसात में विशेष रूप से बैक्टीरिया ली ब्लाइट लगता है, तो थोड़ा सा समय समय पर आपको स्प्रे की जरूरत पड़ेगी।
1: क्या नीम का तेल भी फायदेमंद?
0: नीम का तेल स्प्रे कर सकते हैं, नीम का तेल स्प्रे कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और जुड़े हैं। हेलो,
3: हेलो
1: भैया, नाम बताएं। श्रावस्ती से। देखिए हिमांशु, आपका नाम पहले ही हमने बोल दिया कि श्रावस्ती से फोन आने वाला है, और बात हो गई अमरदीप से, सवाल जल्दी से पूछिए।
3: नींबू का पेड़ है,
1: हाँ,
3: फल आ गए हैं, लेकिन सर फल का कोई विकास नहीं हो रहा है, तो छोटे छोटे हैं।
1: ये बताइए, फलदार जो नींबू का पेड़ है,
0: ऐसा है, बढ़िया से, हाँ, बढ़िया से उसको जो है क्या नाम, खाद पानी दीजिए,
1: खुराक
0: गोबर की खाद दीजिए, अगर हो सके तो NPK का स्प्रे कीजिए, NPK 19-19-18-18-18 आता है, 5 ग्राम प्रति लीटर के साथ 0.5% का स्प्रे करिए।
1: डॉक्टर साहब, 5 से 10 ग्राम भी हो जाएगा?
0: 10 ग्राम भी कर सकते हैं, 1% तक जा सकता है, 0.5 से 1% तक जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि आप जो गोबर की खाद दीजिए, थोड़ा सा यूरिया DAP पोटास जो आता है उसको भी थोड़ा सा दीजिए, मतलब फास्फोरस डालिए नहीं डालिए, थोड़ी सी यूरिया, थोड़ी सी पोटाश जरूर डालिए, तो फल का साइज भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, और अगर हो सके तो बोरेक्स भी डालिए, जिससे आगे चलते
1: ताकि बोरान की कमी दूर हो जाए,
0: कमी हो, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट, फल बहुत लगते हैं, 2-3 बार फूल आते हैं, तो कई बार फल छोटे छोटे दिखते हैं, आप केयर करेंगे अच्छे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घना है तो उसको थोड़ा सा छांट भी दीजिए जगह जगह से जहाँ हो, और थोड़ा सा बरसात में कीड़े मकोड़ों का विशेष ध्यान रखें,
1: यानी अगर भूख मिटेगी तो निश्चित रूप से फलेगा,
0: फल लग चुका है।
1: और डॉक्टर साहब, एक किसान भाई टेलीफोन पर इंतजार कर रहे हैं। हेलो,
4: हेलो,
1: हाँ भैया, नाम बताएं।
4: नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते, सीतापुर से।
4: दिलीप कुमार बोल रहे हैं, ग्राम आशापुर पोस्ट रामगढ़ चिनी जिला सीतापुर से।
1: हाँ दिलीप कुमार भैया, आज का सवाल क्या है?
4: जी सवाल ये सर के आम के पेड़ हैं, देसी है मेरे,
1: हाँ,
4: तो अपने कटवा देते हैं तभी बांदा हो जाता है।
1: अच्छा, बांदा की समस्या है डॉक्टर साहब, बांदा की समस्या जो दिलीप कुमार भैया की समस्या है, ये ढेर सारे बागवानों की समस्या है, तो आज समेकित प्रबंधन कैसे हो बांदा का, इसके बारे में जरूर बता दीजिए।
0: बिल्कुल सही बात है, देखिए बांदा अक्सर उन्हीं बगीचों में आता है जिनमें हम कोई भी काट छांट नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा

0: ध्यान दे के पहली बात तो अपने पेड़ों का कैनोपी प्रबंधन, छत प्रबंधन करिए, क्योंकि बांधा तो आप केवल बांधा काट रहे होंगे, मैं तो कहता हूँ पेड़ आपके पुराने होंगे, पुराने होंगे, और इसको जो है क्या नाम, जैसे ही आपका छत प्रबंधन जाड़े के समय में आप करिए, आप अक्टूबर के बाद भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर तक आप आराम से काट छांट कर सकते हैं। पेड़ों को इस तरह रखिए कि अंदर तक धूप जाए, और जहां भी बांधा वाली गांठ है उसके नीचे से काटना जरूरी है। हाँ। कहीं से भी बांधा है, खत्म करना है उसको, वहां से खत्म कर देंगे, थोड़ा सा छांट देंगे साइड से, अगर शाखाएं आपस में एक दूसरे में घुसी हैं तो उनको छांटिए, ऊपर भी करीब आप 16-18 फीट के ऊपर आप उसको छांटिए, इस तरह से पौधे को कम से कम एक दो शाखाएं बीच की तो निकाल ही दीजिए।
1: छिड़काव भी फायदेमंद होगा,
0: छिड़काव क्योंकि जो है क्या नाम, नहीं उसके लिए छिड़काव, उसको आपको एक बार काट के निकालना पड़ेगा, गांठ से जो अंदर होता है वो उसको काट के निकाल देंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा।
1: उसको जलाना पड़ेगा,
0: उसको आप जो है नष्ट करना है, उसको वहां से अलग करके नष्ट कर देना है।
1: किसी फफूंदी नाशक का छिड़काव,
0: फफूंदी जब भी आप कटिंग करते हैं कोई भी, तो आपको जो है आप ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप जो है 2-3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करिए।
1: एक किसान भाई और हैं। हेलो,
2: हेलो
1: भैया, नाम बताएं।
2: राम प्रकाश शुक्ला, ग्राम बखरावा।
1: स्वागत है राम प्रकाश शुक्ला भैया, क्या सवाल है?
2: सर ये मेरा है कि हमारे पास नींबू का पेड़ मीठा है।
1: हाँ, मीठा नींबू
2: जी, मीठा नींबू है।
1: हाँ,
2: तो वो उसमें जब फल पकने वाले होते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं।
0: देखिए कीड़े तो स्वाभाविक रूप से,
1: क्या डॉक्टर साहब फल मक्खी है?
0: फल मक्खी नहीं, उसमें भी एक तो लेमन बटरफ्लाई आती है, वो भी लगती है,
2: पड़ता है। हाँ? फल जब पक्के सूख जाता है
0: तो लेमन बटरफ्लाई वो है उसी का, वो सूड़ी आ जाती है उसके अंदर ना देती है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब छोटा छोटा फल होता है उसी समय।
1: उसी समय
0: नंबर एक पॉइजनस बेट भी आप कर सकते हैं, चारा आप छिड़केंगे तो उससे भी उसका
1: जहरीला चारा,
0: जहरीला चारा उसका भी स्प्रे करते हैं, तो उसी से मैनेज करना पड़ेगा उसको। कीड़ों का प्रॉपर नियंत्रण करें हर स्टेज पर, क्योंकि जब फल जैसे फल मक्खी लगती है वैसे उसमें वो लेमन बटरफ्लाई है, काम वही करती है।
1: नींबू की तितली,
0: हाँ वो जो वो भी उसमें जो है, तो उसके लिए आपको पहले से ही स्प्रे प्रॉपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। आप जो है क्या ना इमिडा क्लोरपीड कर सकते हैं, या क्विनाल्फास डाइमेथोएट कोई हो सकता है, उसी समय स्प्रे करें जो छोटे छोटे फल होते हैं, बाद में वो अंडे उसमें
1: जहाँ प्राकृतिक खेती के रूप में करना चाहते हैं, कोई जैविक उपाय करना चाहते हैं वहाँ भी?
0: जैविक उपाय के लिए सबसे अच्छा है आप अपने पास 10 पर्णी अर्क, या जो है क्या नाम, जैसे हम कई तरह के पौधे होते हैं जो जानवर नहीं खाते हैं,
1: जहरीले,
0: इसमें हमारे मदार भी है, ये जो
1: धतूरा भी है,
0: धतूरा है, कनेर है आपको, ये इसकी शरीफा की पत्ती है, या आपकी नीम की पत्ती, करंज की पत्ती, पपीता की पत्ती,
1: बकाइन है,
0: हाँ ये मतलब ये सब 10 तरह के पौधे, और नीम जरूर होनी चाहिए,
1: और
0: उसको गोबर गोमूत्र के साथ बढ़िया सा उसको आराम से उसको सड़ा लेते हैं, और रोज सुबह शाम उसको गोबर गोमूत्र के साथ करते हैं, तो करीब 1 महीने में तैयार होता है 10 पर्णी अर्क। लेकिन अगर आप उसी को गोबर के ये गोमूत्र में करीब 20 लीटर गोमूत्र में आप जो है मिर्च लहसुन और ये जो है क्या नाम, मिर्च लहसुन और ये क्या कहते हैं इसको, नीम की पत्ती और ये एक चीज़ और होती है
1: जी,
0: उसको जो है क्या नाम बॉयल कर लेते हैं, उसको बॉयल कर लेते,
1: यानी उसका भी अर्क बना कर
0: अर्क बना के स्प्रे करते हैं।
1: डॉक्टर साहब ये किसान भाई जुड़े हैं, हेलो,
0: अग्न्यास्त्र कहते हैं इसको, आप डालेंगे तो आ जाएगा।
1: हाँ सवाल पूछिए भैया।
3: नमस्ते,
1: कहाँ से?
3: हम सीतापुर जिले से, ग्राम गंदरिया पट्टी से बोल रहे हैं, लक्ष्मण प्रसाद तिवारी।
1: स्वागत है लक्ष्मण प्रसाद तिवारी भैया, क्या सवाल है?
3: आम के पेड़ डॉक्टर साहब ले भैया, हम तो अब है रजिस्ट्रेशन कुछ बताए तो हम समझ नहीं पाए, ना फिर से बता दे उनका।
0: सबसे बड़ी बात यह है, जैसे अभी आपको बताया था राय साहब ने बताया था कि मांग पत्र भर देते ऑनलाइन, जो लड़का कंप्यूटर जानता है वो हमारे डालेगा केंद्रीय उप बागवानी संस्थान, साइट खुल जाएगा, उसमें आएगा सीआईएसएस नर्सरी, उसमें आप जाके पौधों की बुकिंग कर सकते हैं
1: अपना नाम,
0: लेकिन लेकिन बाई चांस कोई दिक्कत नहीं, अगर बुकिंग उपलब्ध ना भी हो, कई बार क्या होता है जून तक बुकिंग करते हैं, फिर जुलाई से पौधे देते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप 15 जुलाई के बाद आप संपर्क करें, नंबर भी आपको बताया जाएगा, और जैसी उपलब्धता होगी आपको पौधे आके ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: डॉक्टर साहब का नंबर अभी कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, आप नोट करके और इनके संपर्क में रहिएगा, जरूर आपकी मदद करेंगे। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण प्रसाद तिवारी भैया सीतापुर से। और डॉक्टर साहब एक छोटा सा अंतराल और है, उसके बाद कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक बार फिर मिलते हैं कार्यक्रम हेलो किसान में।

0: इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। इफको

0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली।
0: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार, इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
4: कार्यक्रम हेलो किसान के अंतिम चरण में एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों बहनों आप सभी का। आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला साहब। डॉक्टर साहब, इस चरण में भी आपका स्वागत है। बातें बहुत कुछ हुई लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। ये बताएं कि जो नई नई प्रजातियां हैं, चाहे आम की, अमरूद की, जामुन की, बेल की, बेर की, आंवला की, नींबू की, उसके बारे में भी बागवान भाई जानना चाहिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई बगीचा हम लगाते हैं तो हमें ऐसी किस्में लगानी चाहिए जैसे आम में है,
4: और वो भी सघन बागवानी।
5: हाँ, जो शुरू से आपको जो है क्या नाम, जैसे बॉम्बे ग्रीन दशहरी सबसे पहले पकती है, उसके बाद लंगड़ा आती है, फिर चौसा, आम्रपाली, या फिर आजकल रंगीन आम की किस्मों का विशेष क्रेज है। आम्रपाली, ये आपकी अंबिका है, अरुणिका है, या पुषा अरुणिमा है, ये सब किस्में हैं। इसी तरह से अमरूद में भी कई तरह की किस्में होती हैं, जिसमें धवल और श्वेता इस समय खाने में सफ़ेद गूदे वाली बहुत अच्छी किस्में हैं।
4: हाँ।
5: जो कलर्ड में जो लोग लगाते हैं
4: ललित
5: ललित है। आजकल बाहर की भी कई किस्में आ रही हैं, ताइवान पिंक है, थाई पिंक है। बस एक चीज ध्यान रखना किसान भाइयों को, जहाँ से पौधे लें
4: विश्वसनीय जगह,
5: उसमें कहीं जो है निमेटोड नहीं होना चाहिए,
4: नहीं तो
5: उसमें निमेटोड का संक्रमण हो जाता
4: है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई लाइन पर हैं। हेलो
6: हेलो,
4: हाँ भैया नाम बताएं। हेलो सवाल पूछिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, घर के बाहर थोड़ा निकल लीजिए।
5: आवाज साफ नहीं आ
4: रही। हेलो, फिर से प्रयास कर लें, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। डॉक्टर साहब, सब्जियों की बात करें तो खरीफ की जो सब्जियां हैं उनका भी समय है, जैसे कद्दू वर्गी सब्जियां जहाँ लगाना है मचान पर, तो क्या करें किसान?
5: बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये अब आने वाला समय जुलाई में बहुत अच्छा, लौकी, कद्दू सब,
4: आज से जुलाई शुरू हो गया।
5: हाँ, इस समय सबसे ज़्यादा लगाने का समय शुरू हो गया है, मचान पर लगाएं। और ये इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, अभी अग्न्यास की बात कर रहा था, उसमें जो है एक तंबाकू भी पड़ती है
4: जी,
5: सस्ती,
4: जो बहुत सस्ती वाली मिल जाती है आप बाजार से
5: लेके,
4: आधा किलो तंबाकू का गर्दा है,
5: हाँ
4: चूरन है,
5: गर्दा बिल्कुल सही,
4: जो किसी काम का नहीं है उसका उपयोग,
5: आधा आधा किलो आपका जो है क्या नाम, लहसुन, मिर्च और ये तंबाकू गोबर गोमूत्र में अगर बॉयल कर लेते हैं,
4: और अगर किसी मंडी से मिर्चा का डंठल इकट्ठा कर लें उसको भी आप डाल सकते हैं आग्नेयास्त्र में, और वो जैविक कीटनाशक के रूप में काम करेगा,
5: बहुत अच्छा सब्जियों में भी काम आता है। इस समय इसके अलावा जो है विशेष रूप से इन चीजों को अपना किसान खुद तैयार करके अगर प्रयोग करे सबसे अच्छा रहता है।
4: डॉक्टर साहब, एक किसान भाई हैं। हेलो
7: हेलो सर, नमस्ते।
4: नमस्ते भैया, नाम बताएं, सवाल पूछें।
7: सर, हम दिनेश कुमार ग्राम जवान से बोल रहे हैं।
4: सवाल पूछिए भैया दिनेश भैया।
7: सर, हम बागवानी करना चाहते हैं, आम के पेड़ लगाना चाहते हैं, लगाए थे।
4: हाँ।
7: और
5: हम
7: तो आप
5: बताते
7: बता दीजिए।
5: हम अभी
4: डॉक्टर साहब अभी रंगीन प्रजातियों की बात कर रहे हैं कि आजकल रंगीन प्रजातियां काफी लोकप्रिय हो रही।
5: एक चीज हम और बता दें, किस्में तो अभी हम आपको बताए हैं और सुने होंगे, एक चीज ध्यान रखें, जो लोग नए बगीचा लगा रहे हैं, जो भी आप पौधा ले जाते हैं वो पॉलीथीन बंधी होती है, जहाँ कलमी पौधा होता है विशेष ध्यान रखें कि उसको पहली बार तो डंठल पकड़ के आप पौधे को ना उठाएं, नहीं तो बाद
4: नीचे से पिंडी से
5: उठाएं। दूसरी चीज ये है कि वो जो बंधी है उसको बंधी रहने दें, लेकिन जब आप पौधा लगा

0: जब आपका सेट हो जाए पौधा, उसके बाद पॉलीथीन काटना ना भूलें, उसको काटना जरूरी है। अगर आप छोड़ देंगे आसपास घास आएगी, आप भूल जाएंगे, पता लगा सग बगल से देसी वाला निकल जाएगा, बाद में आपको लगेगा हमारा कलमी पौधा देसी हो गया है। तो वो पॉलीथीन हटानी होती है जब पौधा आपका चल जाता है। और दूसरी बात जो है कहना, बाकी आप जो है उसका विशेष ध्यान रखें, अगर मान लो मौसम सूखा हो जाता है तो पानी देना भी ज़रूरी होता है, और नहीं तो जो है कहना बरसात है तो कोई दिक्कत नहीं, घास फूस से थाला साफ रखें। और जो किस्में हमने बताई जैसे शुरू में दशहरी और ये बॉम्बे ग्रीन जल्दी पकने वाली, बाद में लंगड़ा है, इसके बाद
1: बहुत धन्यवाद
0: आम्रपाली मल्लिका है
1: दिनेश भैया, और डॉक्टर साहब का नंबर भी होगा, अलग से भी आप उनसे संवाद कर सकते हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, एक किसान भाई जुड़े। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते डॉक्टर
1: साहब। नमस्ते, नाम बताएं भैया।
2: नाम राकेश रावत।
1: कहाँ से राकेश भैया?
2: राकेश हैदराबाद।
1: हाँ, सवाल पूछिए।
2: सवाल यही कि जो अरमूद के पेड़ आपने दिए थे,
0: हाँ,
2: लगाए थे,
1: हाँ,
2: तो उसमें अरमूद लग नहीं रहे।
0: कब आपने लगाए थे?
2: मान लो डेढ़ साल तक, तो दो साल हो गए।
0: कोई बात नहीं, डेढ़ दो साल हो गए। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या आप अपने पेड़ों का एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आपने कलम बांधी थी कलम के ऊपर से ही कल्ले आने चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं नीचे से देसी वाले आ गए। अभी भी आप चेक करके उनको हटा सकते हैं। दूसरी बात, उनका प्रॉपर ढांचा बनाएं शुरू डेढ़ साल में, बहुत ज्यादा फलत की चिंता न करें, प्रॉपर ढांचा बनाएं, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं नीचे से करीब 50-60 सेंटीमीटर का सिंगल रहे, फिर बढ़िया सा ढांचा बनाएं जिससे आगे चल के अधिक से अधिक फल ला दें उसमें। तो किस्म जो आपकी सुरक्षित रहे, इसलिए विशेष रूप से शुरू में इस चीज का ध्यान रखें। बाकी फलत दूसरे साल से थोड़ी बहुत फल आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए फल आएंगे, बट आप उसका केयर करें, ये प्रयास कीजिए कि देसी ना हो।
1: बहुत धन्यवाद राकेश भैया। डॉक्टर साहब, समय बिल्कुल कम है, और बहुत सारे किसान भाई जो आपसे संवाद नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा नाम आपको बताया, डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला, केंद्रीय उप बागवानी संस्थान जो रहमान खेड़ा में है। नंबर मेरा है 70544 19717।
1: अंग्रेजी में?
0: अब अंग्रेजी में बता देते हैं, 70544 19717।
1: एक बार और हिंदी में डॉक्टर साहब।
0: एक बार और सुनिए, 70544 19717।
1: चलते चलते आज क्या आह्वान करना चाहेंगे बागवान भाइयों बहनों का?
0: सभी भाई बहनों का आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो गया है, बागवानी का मौसम, वृक्षारोपण का मौसम, तो सब लोग कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। और अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जैसे सहजन है, केला है, इसके अलावा
1: पोषण वाटिका जरूर,
0: आंवला, बेल की छोटी छोटी किस्में आ गई हैं,
1: और
0: पोषण वाटिका में लगाएं।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला साहब, आपका आह्वान है कि एक पेड़, और हम तो कहेंगे कि एक बगीचा जरूर लगाएं। बहुत धन्यवाद। अब आज का मौसम क्या है और चार मंडियों का थोक बाजार भाव, इसको बता रहे हैं हिमांशु और ओम प्रकाश भैया। नमस्कार
3: हिमांशु भैया।
4: हाँ ओम प्रकाश भैया,
3: देखो बहुत बढ़िया बैठकी रही, और देखो विशेषज्ञ कितना बढ़िया बताएं कि जो उन्नत नर्सरी है कुआं से पौध जरूर लें।
4: हाँ भैया,
3: तो इसके लिए अपने जो विशेषज्ञ रहे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल भैया और संचालक डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, दोनों भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने हाथ में है मौसम के हाल और थोक मंडी भाव। तो पहले मौसम हाल बताए दी।
4: हाँ भैया,
3: तो पृथ्वी मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ आज यानी 31 तारीख से लेके और 6 जुलाई तक का देखो मानसून के आगमन होएगा है, तो गरज चमक के साथ बरछार पड़े की संभावना शुरू हो गई है। साथ ही साथ चेतावनी भी जारी की गई है कि आज से लेके 3 तारीख तक कहूँ कहूँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है झोंकेदार हवा चल सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ भी आज और कल के लिए चेतावनी जारी की गई है।
4: बिल्कुल भैया,
3: तो पंचन से निवेदन है कि भैया देखो अपनी जो खेती बारी है उनका भी देखे रहें, और साथ ही साथ अब जो है मौसम
4: की
3: बात करें बाजार के भाव बता दें।
4: बिल्कुल भैया, जो बाजार भाव है हमारे पास थोक मंडी भाव है, गेहूँ क्या रहे लखनऊ मंडी क्या 2590 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर है 2500 रुपया, गोंडा है 2598, अयोध्या है 2550 रुपये प्रति क्विंटल।
3: आलू के भाव लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 900 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में यहाँ रहा 800 रुपया, गोंडा में यहाँ रहा 960 और अयोध्या में यहाँ रहा 880 रुपये प्रति क्विंटल।
4: हाँ,
3: और प्याज के भाव?
4: प्याज क्या भैया लखनऊ मंडी का भाव है 1600 रुपया, कानपुर का है 2100 रुपया, गोंडा क्या रहे 2300

0: 300 रुपया और अयोध्या क्या रहा है 1,800 रुपया प्रति क्विंटल।
1: तो ये तो रहा थोक मंडी भाव लखनऊ कानपुर गोंडा और अयोध्या के। और अब देखो कार्यक्रम के समय समाप्त हो रहा है, तो पंचन से लीजिए आज्ञा।
0: जय हिंद।

0: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफ।

0: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 30% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपये है।
2: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
3: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की

0: कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVGRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजीलॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए

0: व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 7:31 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट हाईकोर्ट से कुंवर शशांक और भेंट करता हैं अतिश कुमार श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हम सभी ने देखा है कि जो भ्रष्टाचार है वो हमारे जड़ जड़ में समाया हुआ है। कहीं भी आप जाएं कोई काम कराने तो कुछ भ्रष्टाचार का सहारा या लेना पड़ता है तो हमारा काम होता है। तो इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है कुंवर शशांक को, जो कि एडवोकेट हैं यहाँ हाईकोर्ट लखनऊ में। और इनसे विषय जिस पर हम बातचीत करेंगे वो हमने रखा है भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, आम आदमी की क्या भूमिका है और कैसे वो इससे परेशान भी होता है और रोकने की इच्छा भी रखता है। कानून ऐसे हैं जो हमें मदद कर सकते हैं भ्रष्टाचार रोकने में। तो स्टूडियो में आपका स्वागत है शशांक।
2: धन्यवाद सर।
1: तो क्या आपके दिमाग में आता है कि भ्रष्टाचार में जो जन सहयोग है वो किस हद तक है, और इसको बातचीत हम बाद में करेंगे कि इन सब पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, कैसे रोका जा सकता, आप बताएं हमारे श्रोताओं।
2: धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत सालों से है और काफ़ी अंदर तक शामिल हो चुका है। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों के अंदर एक स्वाभाविक एक बात आती है कि हाँ चलता है, नहीं इतना तो पैसा देना पड़ेगा, इतना तो अगर जल्दी कराना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। ये जो यही चलता है का जो हम

0: एक एटीट्यूड है, इसे हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि आम जनता जब तक उस किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक उसे सरकार भी अनसुना ही मानेगी। हमारे पास कानून में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस या निवारण हैं जिसके द्वारा आम जनता भ्रष्टाचार को पूरी तरह तो नहीं पर किसी हद तक तो रोकने में सहयोग कर सकती है।
1: शशांक, उसमें जन सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है कि आदमी जब पैसा देने को तैयार नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने को तैयार नहीं होगा, तो दूसरा भी रुकेगा। क्या आप क्या समझते हैं?
0: जी, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है, अगर जनता ही मना करे कि नहीं, हम ये पैसा दे के काम नहीं करवाएंगे, हम इसको सही तरीके से ही ये काम करवाएंगे, तो सामने वाला भी मजबूर हो जाएगा कि हाँ, कि जब हमारे पैसे बार बार मांगने पे भी अगर आम जनता पैसे देने को तैयार नहीं हो रही, तो शायद उनके अंदर भी एक संकोच आएगा कि हाँ, अब शायद हमें अपने काम को, अब जिस जो काम हमें उन्हें सौंपा गया है, उसे वो बिना पैसे के द्वारा या बिना रिश्वत लिए करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जनता इसलिए जागरूक हो कि वो कैसे इसके लिए कंप्लेंट करें। कंप्लेंट मतलब कि वो कैसे इसके लिए आवाज़ उठाएं कि हाँ, उनके साथ पैसा मांगा गया है या रिश्वत की मांग रखी गई है।
1: लेकिन कभी कभी शशांक, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कभी अस्पताल में गया, उसको किसी को दिखाना है, कोई मरीज है, कोई तबीयत खराब है, ये भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो भ्रष्टाचार का सहारा लेता
0: जी सर,
1: है कि वो अलग से बिना नंबर के अपनी लाइन आगे बढ़ाता है, या किसी को कुछ थोड़ी सी रिश्वत दे के अपना काम आसान कराता है कि उसके जो जो उसका पेशेंट है उसको उसको सुविधा हो जाए, उसको दवा मिल जाए। तो इसको कैसे रोका जा सकता है?
0: सर इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप, मैं और जो भी आम जनता है, जब भी हम किसी भी दुविधा में पड़ते हैं, हमें ये लगता है कि हमारा काम पहले हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। जब भी कोई आम आदमी अस्पताल जाता है, मान लीजिए उसे अपने मरीज़ को दिखाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर मैंने पैसे दे के अपना नंबर पहले लगवाया है, इसका अर्थ ये है कि किसी और के नंबर, जिसका पहले मेरे से पहले नंबर आना था, उसके जगह पर मैं जाऊँगा। यदि आप अपना हक पहले रखना चाह रहे हैं, यानी आपके द्वारा किसी का हक मारा जा रहा है, इसे हम करप्शन में आप भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, इसके द्वारा अब आप भी उनमें शामिल होंगे, जिसके वजह से किसी आम आदमी की एक जो पर्सनल राइट है, उसका हनन हुआ है। हमें अगर इस बात को आम आदमी ध्यान रखेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका अंतर्मन ही आपको ये करने के लिए अनुमति देगा।
1: तो इस विषय में BNS हमारा जो है,
0: जी
1: IPC का जो नया
0: जी
1: रूप है, वो क्या कहता है?
0: सर, BNS में बहुत सारी चीज़ें हमारी दी गई हैं। सबसे पहले तो हमने यही बता रखा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, ताकि हमें ये पता रहे कि जो हमसे पैसे की मांग कर रहा है, क्या उसके ऊपर जो कानूनी रूप से हमारे पास जो निवारण दिए गए हैं, क्या उस पर लागू होंगे या नहीं होंगे। तो BNS में हमने पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया है, पर साथ साथ मान लीजिए कि आपसे कोई पैसे की मांग रखता है, तो आप इसमें FIR भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उससे कोई भी आपको निवारण नहीं मिलेगा, तो आप मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा उस जिस मैटर में आपसे पैसे की मांग करके जा रही थी, मान लीजिए कोई अफसर है जो कि आप कहीं काम करने के लिए, आप कहीं कोई एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए, जो कि इलीगल नहीं है, जो कि उसके पब्लिक ड्यूटी के अंदर आता था कि उसको वो काम करना ही था, परंतु उसमें आनाकानी कर रहा है वो, तो इसकी आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन भी कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। बाकी आपके पास इसके लिए अदर तरीके भी हैं कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं, पर वो आम जनता, मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी 2,000 5,000 के लिए कोर्ट जाना चाहेगी। परंतु मैं उनको ये सूचित करना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा कभी लगे, तो आपके पास कोर्ट जाने का भी उपाय हमेशा से अवेलेबल है।
1: तो क्या विजिलेंस कमीशन जो है वो भी कुछ मदद करता है?
0: विजिलेंस कमीशन आपकी इसमें बहुत मदद करता है। देश में सबसे प्रीमियर जो हमारे पास करप्शन को रोकने के लिए कमेटीज है, उनमें सेंट्रल विजिलेंस कमेटी सबसे आगे है। CVC ने हमारे एक सबसे अच्छा प्रोग्राम दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं PIDPI, जिसका अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। इसके तहत सबसे अच्छी बात क्या है कि आम नागरिक को क्या लगता है कि यदि हम इस जो हमसे रिश्वत की मांग की गई है, इसकी हम अगर आवाज़ उठाएंगे, तो क्योंकि जिनके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, तो हो सकता है कि सरकार की बाकी मशीनरी द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जाए, हमें किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए। इस डर की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आम जनता, आम नागरिक कभी की बार कंप्लेन नहीं करती है। इसी को देखते हुए CVC ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि 2004 में आया था। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो आप उसको PIDPI के नाम से फ्लैग कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो आपकी कंप्लेन होगी, उसकी कंप्लेन में

0: जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा।
1: तो फ्लैग करने का मतलब है कि हम कंप्लेन जिस कागज पे लिखी है उस पे ऊपर लिख दें,
0: हाँ, उस पे अगर आपने ऊपर लिख दिया
1: या
0: है
1: अगर हम मेल से कर रहे हैं तो?
0: तो हम आप उसकी टाइटल में अगर हम डाल देंगे ऊपर, जो सब्जेक्ट का हमारे पे ऑप्शन आता है उस मेल के अंदर, अगर हम उसके अंदर लिख देते हैं PIDPI, तो इसके द्वारा भी CVC को पता चल जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें इसमें जो हमारा जो कंप्लेनेंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं करनी
1: ये
0: है
1: नहीं पता चलेगा कि कंप्लेन किसने किया है।
0: किसी ने।
1: ये खैर इसका भी बहुत ज्यादा भय होता है लोगों में
0: लोगों में बहुत भय होता है इस बात का।
1: कि अगर हमने कर दिया तो मेरा जब काम आएगा तो फिर उस पर आनाकानी होगी या हमें
0: जी जी
1: दबाव बनाया
0: बस
1: जाएगा।
0: इसीलिए ये रखा गया है कि जो इन्फॉर्मेंट है, जो कि आदमी इस बारे में कंप्लेन कर रहा है, उसकी नाम पता किसी को भी पता ना चलने पाए, ताकि कभी भी वो उसको ये अभाव ना लगे कि भाई जब मेरे कोई काम आएगा तो वही अफसर मेरा काम कैसे करेगा जिसके खिलाफ मैंने कोई कंप्लेन डाल रखी है, जिस विभाग में मैंने कंप्लेन डाल रखी है उसमें मेरा
1: बहुत
0: काम
1: जरूरी
0: कैसे
1: चीज
0: होगा।
1: है ये।
0: ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम मंदिरों की बात करते हैं, जो मंदिरों में लाइनों में लगाने का जो भ्रष्टाचार है कि हम आपको एक स्पेशल एंट्री दिला देंगे, कानूनी रूप से हम इसमें कुछ रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कोई पब्लिक ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं है जिसके खिलाफ हम कंप्लेन के केस दर्ज करा सकें। यहाँ पे क्या है, इसमें आता है हम आप जो आम नागरिक हैं उनका अंतर्मन, उनकी जो खुद की कंप्लेन करने की जो वो है कि अगर आपसे कोई मंदिर के अंदर ये डिमांड करता है कि आप मुझे 500 रुपया दीजिए, हम आपको उधर स्पेशल लाइन में जाएंगे, तो आप उसको वहीं पे आपको क्वेश्चन करना है कि तुम ये काम कर क्यों रहे हो पे हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो उनको तो सारे दुख सारे चीज़ें पता हैं। आप उन्हीं के अगर मंदिर के अंदर जाने के लिए आप पैसे लेंगे, ये आम आदमी खुद ही रोक सकता है। इसके लिए जो मंदिरों में ऐसी जगहों पे जो भ्रष्टाचार है इसको रोकने के लिए जनता का खुद जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वो उसको ये समझना ज़रूरी है कि हमें अपने समय के लिए बार बार पैसे देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। एक फीलिंग रहनी चाहिए समानता कि हम सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर हम लाइन में लगे हैं तो हम सब समान हैं। बाकी जगहों पर क्यों नहीं
1: भी
0: लागू करा
1: अप्लाई
0: सकते
1: करने
0: हैं?
1: के, अगर किसी कंप्लेन करना हो तो आपने बताया कि FIR कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं या मजिस्ट्रेट पे आ सकते हैं, तो क्या जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है तो क्या इसका भी कोई ऑफिसर्स होते हैं?
0: सेंटर इनका जो ऑफिस है वो दिल्ली में भी है, लखनऊ के अंदर भी इनका ऑफिस अवेलेबल है, परंतु अगर आप ऑफिस पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पास इनके टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं कि आप उस पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दे सकते हैं।
1: टोल फ्री नंबर आप बता दीजिए लोगों
0: जी
1: को।
0: सर, मैं इसका टोल फ्री नंबर बताना चाहूँगा। इसका नंबर है 1800-110-180, 1800-110-180, 1800-180। इस पे फ़ोन करके
1: तो
0: आप
1: उस पे
0: अपनी कंप्लेंट
1: कार्रवाई
0: रजिस्टर
1: की
0: कर सकते हैं
1: जाएगी।
0: कि अगर आपको कंप्लेंट करनी, CVC हमेशा अपने कंप्लेंट्स को संज्ञान लेती है उसका, कि जब आप कंप्लेंट करेंगे तो आपसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आप जो कंप्लेंट कर रहे हैं आप
1: अच्छा, वो चेक करने के
0: चेक
1: बाद।
0: करेंगे। हाँ, पहले कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसमें चेक किया जाता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कि वो आदमी सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या तो किसी पब्लिक ऑफिशियल को बदनाम करने के लिए तो ये कंप्लेंट नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार देखा जाता
1: बहुत
0: है।
1: सोचते
0: सबसे
1: हैं
0: ज़रूरी ये होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसकी हमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है कि हाँ, जो आदमी कंप्लेन कर रहा है वो सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है,
1: कभी
0: ऐसा
1: कभी
0: आदमी है।
1: लोग फर्जी पतों से फेक आइडेंटिटी बनाते हैं फिर उससे कंप्लेन करते हैं।
0: यदि आप उससे कंप्लेंट करेंगे तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपकी कंप्लेंट को सुनवाई ना हो, क्योंकि जब ऐसा कोई आदमी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सर जो एजेंसीज है उनको भी लगेगा कि यहाँ पे जो कंप्लेन आई है क्या पता वो भी गलत हो। इसलिए जो हमने कहा कि अगर आपको डर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ना लीक हो जाए, कि आपके बारे में सरकारी लोगों को पता ना चल, सरकारी ऑफिसों में आपका नाम ना चला जाए कि इन्होंने कंप्लेन की थी, इसीलिए हमने PIDPI का जो हमारे पास प्रोग्राम है उसको
1: जो
0: हमने यूज़ किया
1: पब्लिक
0: है,
1: इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड
0: एंड
1: प्रोटेक्शन
0: प्रोटेक्शन
1: ऑफ
0: ऑफ इन्फॉर्मर्स, कि हम इन्फॉर्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर
1: बिल्कुल
0: आप
1: बिल्कुल
0: आपको ये डर है तो आप उसको फ्लैग करके कंप्लेन करिए, पर कंप्लेन ज़रूर करिए। हमारा कंप्लेन करना सबसे ज़रूरी है। अगर हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये करप्शन जो अभी तक चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा।
1: शशांक जी, हमने बहुत सी बातें करी और विषय इतना बड़ा है कि सारी बातें इसमें समेट नहीं सकते हैं, तो इस प्रोग्राम के अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे?
0: सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो कोई भी ऐसा कोई केस देखते हैं जहाँ पे उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिश्वत या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करी जा रही है जो
1: चाहे
0: कि
1: उनके साथ खुद भी इन्वॉल्व ना
0: चाहे वो
1: हो।
0: खुद चाहे वो उनके साथ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, अगर उनको पता भी चल रहा है किसी अन्य नागरिक के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आज जो दूसरे के साथ हो रहा है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसे कंप्लेन करें। और यदि जो मैंने बात कही कि आपको अगर डर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो जब आप PIDPI के तहत कंप्लेन करते

0: सीवीसी को, तो उसमें जो आपका लेटर रहता है, अगर आपने उसके ऊपर पीआई डीपीआई लिख दिया है, तो जो बाहर के लेटर पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ऑफिशियल मिलते ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपके जो अंदर की चीज़ें हैं उसको रख लिया जाता है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे कि आगे चल के भी कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो ही नहीं सकती है कि ये जो कंप्लेन करी गई थी ये किसके द्वारा करी गई थी। तो मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगी, डरने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हक है तो आपको वो हक मांगना चाहिए। देंगे कैसे कंप्लेन फाइल करनी है, आप ऑनलाइन थ्रू भी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं, मतलब कि उनके पोर्टल पे जाके आप पोस्ट भी कर सकते हैं उनको, और यदि आपको ईमेल करना है आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि डरे बिल्कुल भी नहीं, जहाँ आपको भ्रष्टाचार दिखे वहाँ उसकी कंप्लेन को रेज करें,
1: पीआई डीपीआई का उपयोग करें।
0: PIDPI का तुरंत उपयोग करें। अगर आपको जरा सा भी डर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, आप तुरंत PIDPI का यूज़ करें, डरें कभी भी नहीं। और यदि आपको बिल्कुल डर नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाए, तो आप अदर तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में आप कंप्लेन कर दीजिए कि मुझसे मांग रखी गई है। 7 दिन के अंदर आपको किसी भी अथॉरिटी को सूचित कर देना है कि मुझसे ये मांग रखी गई है। यदि आप 7 दिन के अंदर सूचित नहीं करते हैं तो आप भी उस करप्शन में शामिल हैं, ऐसा माना जाएगा।
1: रांग जी, बहुत सी बातें हम लोगों ने की हैं, उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं इस बात को सुनकर कुछ अमल करेंगे और वाकई किसी भ्रष्टाचार को देखेंगे तो डरेंगे नहीं और अपनी बात जरूर कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, इस विषय पर की गई भेंटवार्ता। जानकारी दे रहे थे एडवोकेट हाईकोर्ट से कुंवर शशांक और भेंटकर्ता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:45 हो गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम बातों बातों में और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आकांक्षा, आज आपके साथ। दोस्तों, आज के समय में एक सवाल बहुत दिलचस्प है, क्या सच में आज हम इतने व्यस्त हैं या फिर व्यस्त दिखना हमारी पहचान और प्रतिष्ठा का एक हिस्सा बन गया है। आजकल जब कोई पूछता है कि कैसे हो तो यही जवाब सुनने में आता है कि यार बहुत बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ऑफिस में बिजी, सोशल मीडिया पर बिजी, दोस्तों के बीच में बिजी और कभी कभी तो खुद के लिए भी इतना बिजी कि अपने मन की आवाज़ सुनने का भी समय नहीं है। क्या बिजी होना अब मेहनत की निशानी है या एक नया स्टेटस सिंबल बन चुका है? तो आज का जो मुद्दा है वो यही होगा और हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि बिजी होना आपका नया स्टेटस सिंबल है क्या? दोस्तों, एक समय था जब लोग अपनी उपलब्धियों की बात करते थे, आज लोग अपने व्यस्त होने की बात करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम कह दें कि हमारे पास थोड़ा सा खाली समय है तो लोग हमें शायद कम इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि आधुनिक समाज में मैं बहुत बिजी हूँ कहना कई बार अपनी अहमियत जताने का एक तरीका बन गया है। तो सवाल ये है कि क्या लगातार व्यस्त रहना सफलता की गारंटी है? यही सवाल लेकर के आज हम उतरे हैं जनता जनार्दन के बीच और हमने करी कई लोगों से बात और जाना क्या है उनका ओपिनियन। तो आइए सुनते हैं।
2: जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है आकांक्षा, कि बिजी होना आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और ऐसा कई बार मैंने भी महसूस किया है कि अगर किसी भी मित्र को फोन मिलाओ तो कई बार का कहना होता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन जब आप आमने सामने होते तो कई बार आप देखते हैं कि या तो कोई फिल्म देख रहा होता है या फिर अपने मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहा होता है। ऐसा कहना कि मतलब मैं बहुत बिजी हूँ मानो एक नया स्टेटस सिंबल बन गया है, लेकिन असली सफलता सिर्फ

0: व्यस्त रहने में नहीं है, बल्कि अपने समय का संतुलित और सार्थक उपयोग करने में। अगर व्यस्तता हमें परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से दूर कर दे, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम वास्तव में क्या हासिल कर रहे हैं। कई बार लोग ये बोलते हैं कि यार कपिल, तुम कैसे टाइम निकाल लेते हो इतना? तो मैं बोलता हूँ कि अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो किसी से भी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में अपने काम का पूरा खाका होना चाहिए कि हमें दिन भर में क्या क्या करना है। और उसको सही टाइम मैनेजमेंट से अगर आपने निपटा लिया तो आप फिर दोस्तों से भी मिल सकते हैं, आप फिर अगर कहीं पर कोई शो हो रहा है, नाटक हो रहा है, तो वो भी देखने जा सकते हैं, या फिर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, लोगों से फोन पर बात भी कर सकते हैं। तो लोग उतना बिजी हैं नहीं जितना कि वो अपने मन से हो गए। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको मन से लगता है मैं बहुत बिजी हूँ, अब वो कुछ देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, तो वो उसका तारतम्य तोड़ना नहीं चाहते तो कह देते हैं मैं बिजी हूँ, या फिर रील स्क्रॉल करने में। देखिए, मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों का समय कैसे निकल जाता है, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे, पता नहीं लगता, दो घंटे वो रील में बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपसे 5 मिनट बात करने के लिए वो कहेंगे कि मैं बिजी हूँ। तो शायद ये आदत में शुमार हो गया है। अब ये कहना तो मुश्किल है कि स्टेटस सिंबल हो सकता है, कुछ लोग अपने माइंड में लेके चलते हो, दिखाते हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा हमेशा काम चलता रहता है और मैं एक स्टेटस अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है।
1: दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि लगातार व्यस्त रहने का दबाव मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम हर समय काम में डूबे रहते हैं तो तनाव, चिंता और थकान बढ़ने लगती है। असल सफलता सिर्फ काम करने में नहीं बल्कि काम और जीवन के बीच में संतुलन बनाने में है। तो दोस्तों, बिजी होना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर व्यस्तता सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का माध्यम बन जाए तो हमें जरा रुक कर सोचना चाहिए।
2: आज के समय में मैं बहुत बिजी हूँ कहना एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है। पहले लोग अपनी उपलब्धियों या अनुभवों की बात करते थे, लेकिन अब अक्सर लोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनके पास समय नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि हम सच में जितने व्यस्त होते हैं उससे ज्यादा व्यस्त दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया हो या रोजमर्रा की बातचीत, लोग अपनी व्यस्तता को अपनी अहमियत से जोड़कर देखने लगे हैं। लेकिन मेरे विचार से सिर्फ बिजी होना कोई बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम किस काम में व्यस्त हैं और उस काम से हमें और समाज को क्या लाभ मिल रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन में काम जरूरी है, लेकिन परिवार, दोस्त और अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम दिन रात काम में लगे रहें और अपने रिश्तों तथा स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दें तो ऐसी व्यस्तता का क्या फायदा। मेरे अनुसार सफल व्यक्ति वही है जो हर समय यह कहे कि मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे अनुसार सफल व्यक्ति वह नहीं है जो हर समय यह कहे कि मैं बहुत बिजी हूँ, बल्कि वह है जो अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच अच्छा संतुलन बना सके। इसलिए हमें केवल व्यस्त रहने के बजाय सार्थक और संतुलित जीवन जीने पर ध्यान देना चाहिए।
3: हेलो, मेरा नाम मानसी है और आजकल अगर कोई पूछे कि कैसे हो तो अक्सर जवाब में यही मिलता है कि यार बहुत बिजी हूँ। ऐसा लगता है जैसे बिजी होना सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है बल्कि एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी व्यस्त लाइफस्टाइल दिखाना पसंद करते हैं, जैसे मीटिंग, डेडलाइन और लगातार फोन कॉल्स। तो कहीं ना कहीं ये सोच तो बन गई है कि जो जितना ज्यादा बिजी है वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर समय बिजी रहना सच में प्रोडक्टिव होना है, या कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी हमारे पास समय ही नहीं होता है। धीरे धीरे यही भागदौड़ स्ट्रेस और थकान का भी कारण बन जाती है। तो असल में सक्सेस सिर्फ इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि हमारी डायरी कितनी भरी हुई है, बल्कि इस बात से भी कि हमारी जिंदगी में बैलेंस कितना है। अगर काम के साथ थोड़ा सा सुकून, अपनों के साथ कुछ पल और खुद के लिए थोड़ा समय बचा रहे तो शायद वही असली उपलब्धि होगी। तो अगली बार जब कोई पूछे कि कैसे हो और आप सच में ठीक हैं तो बेझिझक कहिए कि मैं अच्छा हूँ और अपने लिए थोड़ा वक्त भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हर समय बिजी दिखना ज़रूरी नहीं है और खुश और बैलेंस रहना वो ज़्यादा ज़रूरी है।

0: याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने बिजी हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप अपने समय का उपयोग कितनी समझदारी से कर रहे हैं। तो वाकई में जब आप बिजी हों तब आप कहिए कि हाँ मैं बिजी हूँ, नहीं तो अपने लिए समय निकालिए, अपनों के लिए समय निकालिए और उस टाइम को खूब एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम बातों बातों में आज बस इतना ही। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी डॉक्टर शीबा राकेश की। आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, युद्ध का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर

0: घर बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा श्रोताओं, आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन से और DTH पर हमारा ये प्रसारण आप सुन रहे हैं।

0: रात्रि के 8 बज गए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आज का हिंदी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता की वार्ता, नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति चित्रण।
1: मिथिला में एक पुरानी कहावत है, जे माटी में जन्मल माटी ओकर माए, अर्थात जो इस धरती की मिट्टी में जन्मा है यही मिट्टी उसकी माँ है। नागार्जुन को समझने के लिए इस कहावत को केवल पढ़ना काफ़ी नहीं, इसे महसूस करना होगा। वैद्यनाथ मिश्र, जो साहित्य जगत में नागार्जुन नाम से जाने गए, नागार्जुन ने प्रकृति को किसी विश्वविद्यालय में नहीं सीखा, ना किसी पाठ्य पुस्तक से जाना, उन्होंने उसे जिया। नंगे पांव खेत की मेलों पर चलकर, नदी की कच्ची मिट्टी में पांव धंसाकर, बरसात में भीगते हुए, यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति किसी सजावटी तत्व की तरह नहीं आती, वह एक जीती जागती उपस्थिति बनकर आती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस संदर्भ में कहा है कि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति एक स्वतंत्र चेतना के रूप में आती है, वह केवल पृष्ठभूमि नहीं बनती बल्कि वह वही बिंदु है जहां नागार्जुन हिंदी काव्य परंपरा के अन्य कवियों से अलग हो जाते हैं। घर से दूर जाने पर जो पीड़ा होती है वह किसी भी कवि की कलम को धारदार बना देती है। नागार्जुन का जीवन बेहद घुमक्कड़ रहा, श्रीलंका, वर्मा, काशी, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत जगह घूमे, लेकिन उनका मन हमेशा तरौनी के उन खेतों में, उन लीचियों की छाह में, मिथिला के उस नम और उर्वर भूगोल में डूबा रहा। सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता में जब वे अपनी मातृभूमि को याद करते हैं तो वह स्मृति केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं रहती, वह एक पूरे भूगोल की जीवंत तस्वीर बन जाती है। वे उस प्रकृति को याद करते हैं जो आम लोगों की जिंदगी में घुली मिली है। नागार्जुन की यात्राएं जितनी भौतिक थी उतनी ही काव्यात्मक भी थी। जब भी वे हिमालय की ओर गए तो उन्होंने वहां देवताओं का निवास नहीं खोजा बल्कि एक ऐसी प्रकृति को खोजा और देखा जो अपनी भव्यता में भी बेहद यथार्थवादी और ठोस थी। उनकी बहुचर्चित कविता बादल को घिरते देखा है हिंदी काव्य में प्रकृति वर्णन का अद्वितीय उदाहरण है। यह कविता किसी पर्यटक के अनुभव की तरह नहीं लिखी गई है, इसमें वह व्यक्ति बोल रहा है जो वहां रुका है, जिसने उस एकांत को भोगा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती

जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल, यह केवल बर्फ का वर्णन नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो चित्र बनाती है। हिमालय की झीलों में तैरते हंसों का दृश्य कवि ने इस तरह उकेरा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यह प्रकृति के प्रति एक खोजी दृष्टि है जो रहस्य से ज्यादा सच की तलाश करती है। नागार्जुन जन कवि थे, उनकी प्रकृति केवल सौंदर्य की वाहक नहीं थी, वह जीवन के संघर्ष की भी गवाह थी। जब सूखा पड़ता है, जब बाढ़ आती है, जब अकाल के कारण खेत सूने हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तब प्रकृति का कौन सा चेहरा सामने आता है। नागार्जुन ने इसे बेहद मार्मिकता से, बड़ी गंभीरता से दर्शाया है। उनकी कविता अकाल और उसके बाद इस दृष्टि का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। इसमें प्रकृति और मनुष्य की भूख एकाकार हो जाती है, एक हो जाती है। यह एकमात्र कविता है जहां चूल्हा, चक्की, छिपकली और चूहा सब एक साथ पीड़ित हैं, सबकी वेदनाएं एक साथ हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। यहाँ प्रकृति और प्राणी जगत एक साथ भूखे हैं। चूल्हा रोना और चक्की का उदास होना ये केवल अलंकार नहीं है, ये उस गांव की वास्तविकता है जहाँ हर चीज एक दूसरी से जुड़ी हुई है। मनुष्य, जानवर और निर्जीव वस्तुएं भी। नागार्जुन की यही ताकत है कि वे जब प्रकृति को देखते हैं तो उसे मनुष्य के दुख से अलग नहीं करते हैं। वर्षा ऋतु नागार्जुन की प्रिय ऋतु थी। बिहार के मिथिलांचल में वर्षा का अर्थ केवल पानी नहीं, वह जीवन का पुनर्जन्म है। कदंब के फूल जो केवल सावन में खिलते हैं, नागार्जुन के लिए उस पूरी वर्षा चेतना का प्रतीक। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदंब, फूले कदंब, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम फूले कदम। कदम्ब के फूल टहनियों पर गेंद की तरह झूल रहे हैं। यह उपमा किसी काव्यशाला में नहीं मिल सकती, यह उन आँखों से आती है जिन्होंने सावन की बारिश में भीगते हुए कदम्ब के पेड़ को देखा है। बादल का कोप नहीं रीता, बारिश अभी थमी नहीं, इस पंक्ति में सावन की अनंत उपस्थिति है। नागार्जुन के हेमंती बादलों का यह चित्र भी अद्भुत है, जहां वे नवंबर के बादलों की तुलना बोनस पाए मजदूर से करते हैं। यह प्रकृति का लोकतंत्रीकरण है। प्रकृति के भाव को श्रमिक वर्ग की भाषा में कहना यह नागार्जुन ही कर सकते हैं। ओह कैसे मूड में इधर को निकल आए हैं हेमंती बादल। हिंदी कविता में प्रकृति चित्रण की समृद्ध परंपरा रही है। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को एक स्वप्निल कोमल सौंदर्य दिया। महादेवी वर्मा ने प्रकृति को अपनी वेदना का साझीदार बनाया। निराला ने प्रकृति में विद्रोह और शक्ति देखी, और नागार्जुन इन सब से बिल्कुल अलग खड़े हैं। उनकी प्रकृति में न स्वप्न है, न रहस्य है, न वेदना की ओट है। उनकी प्रकृति जमीन पर है, उसी जमीन पर जहाँ किसान हल चलाता है, जहाँ मजदूर स्त्री भोर में उठकर पानी लाती है, जहाँ बच्चे आंगन में धूप सेकते हुए गुड़ चाटते हैं। यह प्रकृति देखी हुई नहीं, जी हुई है। नागार्जुन ने एक बार कहा था कि वे कविता इसलिए नहीं लिखते कि कविता लिखनी है, वे इसलिए लिखते हैं क्योंकि भीतर से कुछ उमड़ता है, और जो भीतर उमड़ता है वह है मिट्टी, वह है नदियाँ, वह है पेड़, वे है पक्षी, वे किसान, वे मजदूर, वह पूरा जीवन संसार जो उन्होंने बचपन से अपनी आंखों में भरा था।

0: हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण के अनेक रूप मिलते हैं, लेकिन नागार्जुन का रास्ता सबसे अलग और सबसे ईमानदार है। उनकी प्रकृति में कोई मुखौटा नहीं है, वहाँ धूप असली है, बारिश असली है, ठंड असली है, और उस ठंड में ठुठुरता इंसान भी असली है। फूले कदम्ब हो या बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हो या सिंदूर तिलकित भाल, नागार्जुन की प्रत्येक प्रकृति कविता एक खिड़की है जिसे खोलते ही सामने आ जाती है वह धरती जिसने उन्हें जन्म दिया, जिसे उन्होंने जिया और जिसके लिए उन्होंने लिखा। यही उनकी प्रकृति चेतना की सबसे बड़ी ताकत है और यही कविता उन्हें सबसे अलग भी करती है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता की वार्ता, नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति चित्रण। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा, राग होगा जोग कौस।

मीडियम वेव 400.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:10 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं बेला सुलाखे की स्वर में गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस रचना के साथ।

इस भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना बेला सुलाखे के स्वर में भजन। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सनम तेरी कसम फिल्म के इस गीत के साथ, आवाज किशोर कुमार की है।

लोफर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप कार्यक्रम का ये गीत। आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाज़ों में सीता और गीता फिल्म से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर

0: पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे

0: के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Center notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a three-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a five-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुतालिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपये के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। यह शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफ़र के वक्त को कम करना और इकतसादी सरगर्मियों को फ़रोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत MG नरेगा के तहत 298 रुपए 80 पैसे यौमिया से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे यौमिया हो

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है, ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी। डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने

0: लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली, जब हमें डिजिटल पहचान मिली उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन्स हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी है अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पे जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा। और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं? आपने AI का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी AI को बड़ी तेजी से एडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है, वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है, तो

0: भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है
1: जी।
0: पूरे विश्व में वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहां ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूं। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इकोसिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी पुष्पम जी ने बात किया कि एआई कोषा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माईगोव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माईगोव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: सुन जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबल

0: डेवलपमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें अब आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल, यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे, जो कुछ भी करप्शन ये सब है, वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर है, तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन

0: एक सॉल्यूशन बनाए जो यूज हुआ वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड
1: हो रही है। कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब, और ये AI के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफ़ी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि OTP शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या SMS या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ

0: है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने MSME का जिक्र किया, तो जब MSME की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTAs साइन कर रहे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार एंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और AgriStack जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव है, हम लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और

0: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे साथ खास मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 46.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं। अब लीजिए सुनिए पुरानी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में पतंगा फिल्म के इस गीत के साथ।
6: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे फिल्म पतंगा से, आवाजें सी रामचंद्रा और शमशाद बेगम की थी। आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में आर पार फिल्म से।

कार्यक्रम में आगे बढ़ चलते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: मिस्टर एंड मिसेस 55, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में। आगे बढ़ चलते हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अधिकार से किशोर कुमार और गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत है।
1: कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर।

0: बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है।
1: अच्छा कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है, कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है।
2: क्या
1: लुटा देती

0: अरे जमफरों ने मार डाला है, तेरी दिवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है। मैं कड़का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। मैं कड़का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है।
1: बसें भी शहर में चलती हैं।
2: आ तो चलने तो क्या हुआ।
1: बसें भी शहर में चलती हैं। क्यों

पहन कर रेशमी सा, अरे मोरी सा, हमोरी सा, नखरबाली सुन ले मोरी सा, सारे गामा पाधानी सा, सानी धापा मागारे सा, इडी साड़ी, तू है निपट अनारी, पहने लेछमी छाली, पहन कर रेशमी साड़ी, तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे ए ए ए ए, मैं बात

0: बीजुना जाके कह जे हाथ मलू शो
1: दबा के मुंह में सिगरेट आप ऐसे ऐसे चलते हैं
0: है?

0: ही है।
1: भांडुना का नहीं दम नहीं दम नहीं दम नहीं दम भांडुना का नहीं दम नहीं दम भांडुना का नहीं दम मेरे पास दम नहीं है मेरे पास दम नहीं है।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब आगे बढ़ चलते हैं और आज का प्रोग्राम ओल्ड इज़ गोल्ड का जो आखिरी नगमा है ना, अब उसका समय हो

इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:00 बजकर

30 मिनट हो गए हैं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन, राग है जोग कौस।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन, राग था जोग कौस। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 400.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

10 मिनट हो गए हैं। अब मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी व अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी कल की पहली सभा के विविध कार्यक्रमों के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।